0: तो सुनने वालों, आपने सुना कि मेहनत हमारा जीवन और मेहनत ही है सब कुछ, तो चाहे कि हम लोगों को सबको मेहनत करना चाहिए। बढ़ते एक कहानी की ओर। कहानी लिखने वाले हैं डॉक्टर राव पी, यानी योग एवं चिकित्सा के डॉक्टर हैं और लाइफ और नेचर के उनका योगा सेंटर है। तो उसी विषय में एक कहानी है जो कि सब लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी, सुनार की तकदीर। एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते का सोने का बटन की झालन टूट गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि इस गांव में कौन सा सुनार है जो मेरे कुर्ते में नया बटन बना सके। उस गांव में सिर्फ एक ही सुनार था जो हर तरह के गहने बनाता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा, तुम मेरे कुर्ते का बटन बना सकते हो? सुनार ने कहा, यह कोई मुश्किल काम थोड़ी है। उसने कुर्तों को द्वारा बटन देखकर नया बना दिया। उसने कुर्ते का दूसरा बटन देखा और वैसे ही दूसरा बटन नया बना दिया और राजा ने कुर्ते में फिट कर दिया। राजा का जो कुर्ता था उसमें फिट कर दिया। राजा ने खुश होकर सुनार से पूछा कि कितने पैसा दूं? सुनार ने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। उसने मन में सोचा कि सोना राजा का था, उसने तो सिर्फ मजूरी की बात की है और राजा से क्या मजूरी लेनी। राजा ने फिर से सुनार को कहा कि नहीं नहीं, बोलो कितना दूं? सुनार ने सोचा कि 2 रुपए मांग लेता हूँ। तो सुनार ने यही सोचा कि जब ये राजा बार बार कह रहा है तो मैं 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में विचार आया कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि एक बटन बनाने का मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों में कितना लेता होगा और कोई सजा ना दे दे, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। सुनार ने क्या सोचा?
1: अब आप ही बताइए राजेंद्र जी, क्या सोचा? क्योंकि सुनार के पास तो मैं था ही नहीं। शमता साहब बैठे होंगे उसके पास।
0: सुनार ने फिर राजा से सोच विचार कर कहा कि महाराज जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। अब राजा तो राजा था
2: जी।
0: उसको अपने हिसाब से देना था
2: जी।
0: कहीं देने में उसकी इज्जत खराब ना हो जाए
2: जी।
0: और उसने अपने मंत्री को कहा कि इस सुनार को 2 गांव दे दो।
2: अच्छा,
0: यह हमारा हुक्म है
2: जी। यानी कि सुनार अपने तरफ से सोच रहा था कि वो कम ना दे दे, और जो बनाई बटन वो सोच रहा कि हम ज्यादा ना मांग ले।
0: नहीं, राजा ये सोच रहा था कि राजा का दिया हुआ तो क्या वो 2 रुपए थोड़ी देगा, वो तो कुछ बड़ा ही देगा ना। वो सुनार सोच रहा था कि मैं 2 रुपए मांगने से ये ना हो जाए कि राजा कहे ये इतना मेरे से ले रहा था और उसे कितना लेता होगा। कन्फ्यूजन था
2: जी।
0: यहाँ सिर्फ 2 रुपए की बात मांग सोच रहे थे, मगर राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है, और मांगते तो सिर्फ हम मांगने में ही कमी कर जाती। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है, लेकिन हम अपनी हैसियत से बड़ी तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पण कर दो, उससे कभी कुछ मत मांगो। जो वो आपने आपको दे दे, अपने आप में आपको दे दे, बस उसी से संतुष्ट रहो। फिर देखो इसकी लीला, वारे के न्यारे हो जाएंगे। जीवन में धन के साथ संतुष्टि का होना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने समझा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे संजय जी?
1: नहीं, कहने के तो ये है कि राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि उम्मीद भी उन्हीं से लगाइए।
0: हाँ,
1: उम्मीद भी उन्हीं से लगाइए, जाती है जहां से कुछ उम्मीद दिखती है। तो भगवान से भी उम्मीद लगाएंगे तो वहां से आपको, जैसे कि अभी संदेश द्वारा और सुनने को प्राप्त हुआ, तो जरूर बढ़िया। और इच्छा कुछ और था और देखो कितना ज्यादा को प्राप्त हुए। राजेंद्र जी, ऐसे हुआ तो आज तो हम सब कुछ ज्यादा ही बात कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सभी सुनने वालों के साथ हम सब जुड़े हुए हैं।
0: हाँ।
1: और ऐसा हुआ कि जैसे कि उम्मीद के बारे में बात हो रहा था, तो एक जंगल में तीन वृक्ष साथ साथ खड़े थे।
0: हाँ।
1: बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े वृक्ष थे और बगल बगल में खड़े थे और काफी समय से था। तो वो वृक्ष जो कि एक साथ में बगल बगल में खड़े होते थे, उसी में से एक वृक्ष ने अपना और ये रखे कि मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं जब एक ना एक दिन काटा जाऊं तो मेरे लकड़िये से और एक ऐसा चीज बनाया जाए जिसे हम संदूक कहते हैं, जिसमें सोना जवाहर यानी कि बढ़िया बढ़िया चीजें सी राद दोस बनाया जाए। तो एक एक के सुन करके दूसरा वृक्ष भी अपना और यानी कि अपना ख्वाहिश भी पेश किया, क्योंकि एक जो अपना सुनाते हैं तो दूसरा का भी सुनाने का इच्छा हो जाते हैं ना।
0: जरूर।
1: तो दूसरा कहते हैं कि मेरा ख्वाहिश ये है कि जब मैं काटा जाऊं तो मेरा लकड़ी से इतना बड़ा जहाज बनाया जाए जिसे हम इस देश से और देशों में जा सके। अब जब एक अपना ख्वाहिश पेश किया तो दूसरा भी अपना सुनाया, तो तीसरा जो बगल में खड़ा था तो उनका भी यही इच्छा हुआ कि मैं भी तो कुछ सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाहिश ये है कि मैं यहाँ खड़ा रहूँ और इतना ऊंचा हूँ, इतना लंबा हूँ कि हमें भगवान को प्राप्त हुए।
0: सीधा
1: सीधा
0: डायरेक्ट
1: डायरेक्ट। ऐसा हुआ राजेंद्र जी, एक दिन लकड़हारा आता है ना, लकड़हारा आता है तीनों पेड़ों को काट देता है, गिर जाता है। पेड़ों गिर जाता है तो पहला पेड़ के पेड़ों के अपने अलग अलग जगह ले जाते हैं और पहला पेड़ का वृक्ष का जो ख्वाहिश था उनके लकड़ियों से एक संदूक बनाया जाए। उन लकड़ी से बनाया गया एक गाय का घर में होता है जिसमें चारा रखा जाता है ना,
0: चरी
1: चरी, तो सरनाम में हम लोग कहते चरही बनावल जाता है ना शांता जी, चरही जिसमें गाय का और चारा
2: घास धरा धरा
1: जाता है, तो उससे बनाया गया गाय का चरही। राजेंद्र जी, अब ये लकड़ी सोचता है ये तो मेरा ख्वाहिश नहीं था, तो दूसरा लकड़ी को काट करके और बनाया दिया गया एक छोटा सा नाव, कोरियाला जो जी बोले ना,
2: बोट।
1: हाँ, छोटा सा बोट। तो उसे वो वृक्ष भी कहते कि ये तो भी मेरा ख्वाहिश नहीं था। और तीसरा वृक्ष जो जिसका इच्छा था मैं यहीं पर और काफी बड़ा हूं, इतना लंबा हूं कि हमें भगवान को प्राप्त हुए, तो उसने उसको काट करके एक अंधेरे कमरे में रख दिया गया था। अच्छा? तो उन्होंने भी ये सोचा कि ये भी मेरा ख्वाहिश नहीं है। पर ऐसा हुआ राजेंद्र जी,
0: जी
1: एक दिन ऐसा होता है वही और गाय के घर में और वो जो लकड़ियों बनाया गया था वो चरही उसी को काट करके एक पलना बनाया गया। पलना यानी कि अनस्कॉमल फॉर बेबी, तो उसी में एक बच्चा को रखा गया,
0: पलंग
1: पलंग। तो उसी पे एक नया जीव, उसी प्रकार से एक नया जीव को उसी लकड़ियों पे रखा गया। तो उन्होंने सोचा मेरा तो ख्वाहिश था एक संदूक बनने के लिए यानी कि जवाहर सोने आदि रखने के, पर उससे भी बड़ा देखो आज मेरे लकड़ियों पे एक नया जीव जो उस पे और लेट रहे है, तो अति प्रसन्न हुआ वो। इसी प्रकार से दूसरा को जो और बना दिया गया था एक छोटा सा नाव, एक छोटा सा बोट, कोरियाल ना।
2: हाँ।
1: तो एक दिन ऐसा होता है, तीन तीन राजा दौरा दौरा आता है और उस देश में बड़ा आक्रमण हो रहा था और राजा आते हैं, बस वो नाव में बैठ जाते हैं और नाव खेवने लगते हैं, पानी हल्फा काफ़ी ऊंचा हिल हिल करके, पर वो तीनों राजा इस ओर से और दूसरे ओर पार हो गए थे तीनों राजा का, और जा करके जान बच गया था। तो वो भी लकड़ी सोचे कि मेरा इच्छा था एक बड़ा सा नाव बनने के लिए, पर आज देखो मेरे छोटा से नाव में तीन तीन राजा का और जा करके और जान बच गया। और इसी प्रकार से तीसरा वाला जो पेड़ था, जिनका इच्छा था मैं यही खड़ा रहूं और मेरे लंबाई इतना ऊंचा होए जहां तक कि हमें भगवान को प्राप्त हो सके, तो उन्हें काट करके अंधेरे कमरे में रख दिया गया था। तो उन लकड़ियों को ऐसा हुआ एक दिन, और जा करके लोग लाते हैं लकड़ियों को खीले मार करके, और उसी पे जा करके एक व्यक्ति को और खीले से गाड़ देते हैं। वो कौन था शांता जी? अपन क्रॉस
2: यीशु क्रिस्टस।
1: हाँ, तो देखो उनका भी इच्छा वो था कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, और स्वयं भगवान को वो लकड़ियों पे और जा करके खिला के साथ उसे यीशु को उस पे क्रॉस किया गया। तो इसी प्रकार से हमारे संत मुनियों ऋषियों ने हम सब के लिए अच्छे अच्छे संदेशों जो बना बना कर हम सब के लिए छोड़े हैं, हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा इच्छा कभी कुछ और रहता है, पर भगवान हमें उससे भी अच्छा और जा करके अपना इच्छा को देते हैं। तो शांता जी आप कुछ कहने वाले हैं?
2: हाँ, हम अगर आपके विचार जो सुने ना, आपके कहानी भी जो इस पे जो लागू है ना, कि इसमें सोच अपना, अभी हम शुरुआत में करें ना ध्यान, कि ध्यान का पर्दा अपना हटाइए, अपना सोच अच्छे डायरेक्शन में ले जाओगे तो अच्छे चीज भी प्राप्त होगा।
1: जी जरूर जरूर। राजेंद्र हाँ। जी शांता जी भी सुना चुका है अपने ओर से, तो क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते,
0: क्यों ना एक सुंदर से नगमा की ओर बढ़ते हैं, और जिसके बोल हैं, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा,
1: दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा।
0: हाँ,
1: जीना पड़ेगा,
0: जरूर जीना पड़ेगा। ये फिल्म 1957 में बनी थी मदर इंडिया सिंगर के नाम से,
2: जीना नहीं पड़ेगा।
0: और इसमें लता मंगेशकर और उषा मीना जी ने बहुत ही सुंदर अपने स्वरों में उसको उद्गृत किया है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को ये सुंदर सा नगमा सुनाया जाए, जिससे कि वो प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए।
1: सभी सुनने वालों ये जानते हैं कहां से निकला है।
0: हाँ, ये निकला तो शांता जी के पिटारा से।
2: फिल्म का नाम मॉडर्न इंडिया।
0: हाँ,
1: तो चला।

0: दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, तो जीना तो सबको पड़ेगा ही। संजय जी, आप क्या बोलते हैं जीने के विषय में?
1: जीने के विषय में क्या कहूं मैं राजेंद्र जी, क्योंकि जीना तो सभी को पड़ेगा। और शांता जी, और आपने इतना सुंदर रूप से गीत में भी और भी जान डाल दिए, तो क्यों ना हम कार्यक्रम के थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि
2: क्योंकि जीवन सबको प्यारा है, सबको प्यारा है जीवन।
0: हाँ, जीवन तो है ही, बगैर जीवन तो कुछ भी नहीं है। तो अगला जो पड़ाव है ये कहानी का है, फिर दोबारा से क्यों ना हम एक गुड़ का भोग की कहानी सुने।
1: जी,
0: सुनते हैं कहानी, सुनिए। किसी गांव में छज्जू मल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था।
1: छज्जू मल उसका नाम। गुड़ बेचने, गुड़ कहते हैं किसको राजेंद्र जी?
0: शुगर, गुड़।
1: शुगर, शांता जी आपको पता?
0: शुगर वो
1: बोले तो
2: किन, किन?
1: हाँ,
2: किन?
1: तो छज्जीमल जी का वृतांत है।
0: हाँ, उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी
2: जी।
0: उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर फिर वह अपने काम वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप अब घर पर बैठे। परंतु छज्जूमल न माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी, उसको तो भोग लगाना आता ही नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोला ठीक है, तो उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी में भूल बस रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लगता।
1: राजेंद्र जी, अब थोड़ा अब इसको, ये वृतांत है कि इतना सुंदर वृतांत है, इसे थोड़ा हिंदुस्तानी, हमारे सरनामी, जैसे कि हमारे सरनामी भाषा अब ऑफिशियल भाषा होने वाले है ना।
0: हाँ,
1: तो थोड़ा से सरनामी में थोड़ा और इसे
0: हाँ, सरनामी में यही

0: छज्जू मलब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तभी छज्जू मल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ न दोगी।
1: ओहो।
0: छज्जू मल ने एक दो बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, अचानक वह उठा और देखता है कि 6-7 साल का बालक उसे कह रहा है कि बाबा आज गुड़ न दोगे। तो छज्जू मल मन में सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ न दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जू मल ने कहा कि हाँ बेटा ले लो, तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आह आह मीठा मीठा कहकर वहाँ से भाग गया। अब तो रोज ही वह बालक छज्जू मल को मिलता, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जू मल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जू मल अब गुड़ बेचने न गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब छज्जू मल वहाँ न आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली और ता ता थैया मचाने लगी। बोली, मुझे गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब लाकर दी, लेकिन वह तो कहते, मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन न हुआ और छज्जू मल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। घर जाकर कहती, बाबा मेरे बालक हो तो आपने गुड़ की आदत डाल दी। उन्होंने बोला कि मेरा बालक को आपने गुड़ की आदत डाल दिया, आज आप आए नहीं, ना आए तो गुड़ खाए बिना वह मान नहीं रहा। छज्जू मल का उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगे। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जू मल की आंखों में अश्रुधारा बहे निकली। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया।
2: राजेंद्र जी, इस पे तो बस एक गाना चलाना चाहिए, चलाना ही चलाना चाहिए, क्योंकि ये वृतांत अभी बहुत मिठास की ओर जाने वाला है।
0: हाँ जरूर, इस पे एक
2: दोस्तों ये वृतांत मिठास की ओर बढ़ने से पहले जरूर मैं एक छोटा सा वृतांत और सुना देता। जिंदगी की दास्तान भी कितना अधूरा है ना राजेंद्र जी।
0: हाँ,
2: कि खुशी देखना खुश होने से और ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो खुशी क्या करवाने वाले है। अभी पहले हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वो वृतांत हम सब आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों सुनते रहना, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ जो कार्यक्रम लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, ज्योति का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश जो 188 देशों में सुना जा सकता है, इसमें हर बार कुछ ना कुछ हमारे विशेषज्ञ लोग और हम सब के लिए सुंदर सुंदर संदेश रखते हैं और हम सब ये आपके लिए और यहाँ से ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो अभी आपके लिए आगे कार्यक्रम सुनाया जाएगा, पहले हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: जरूर

0: प्रेम जाल है, प्रेम नगर है, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। कहानी थोड़ा सा रह गई थी कहानी की ओर, बढ़ते हैं आगे की तरफ।
1: क्योंकि वो जो गुड़ बेचने वाला का नाम कैसे था राजेंद्र जी?
0: गुड़ बेचने वाले का नाम छज्जूमल।
1: छज्जूमल, शांता जी, छज्जूमल जी जो गुड़ बेचते थे,
2: छज्जूमल।
1: हाँ,
0: तो छज्जूमल जी ने हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चले गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक का गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु वह बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते, जो उसका मन बहुत बेचैन था कि वो बालक क्यों नहीं आया, कि कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा तो सब ने कहा, ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुँचा। घर पहुँचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे कह रहे हों, बाबा जी, मैं वही बालक हूँ। छज्जूमल का माथा ठनका कि वह सोचने लगी, यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगी, गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देख के उसकी आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। इस प्रकार की कहानी बड़ी।
1: तो कहने के बाद ये है राजेंद्र जी कि विश्वास एक बड़ा गंभीरता चीज हो जाता है ना,
0: गंभीरता चीज है।
1: ताकि क्यों विश्वास था उनके पत्नी और जा करके रोज और ठाकुर के भोग लगाते थे।
0: हाँ।
1: उसके बाद में जजुमल भी लगाने लगे और जजुमल जब वो
0: छज्जूमल
1: यानी घर के मरम्मत के लिए और जा करके मूर्ति अलमारी में रखने से और भगवान अपना अंश तो लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। और फिर बाद में जा कर के और जो ये पता चला कि वो स्वयं भगवान था और बालक के रूप में जा कर के और वो और गुड़ को और लेते थे। तो दोस्तों, सुंदर संदेश जो राजेंद्र जी हम सब के लिए रखे। और कार्यक्रम में पता नहीं कौन सा गीत अभी और शांता ने अपने पिटारा से भर के लाए हैं, पर शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं।
0: जरूर।
2: हाँ, ये कहानी सुनकर मेरी आंख भी नम हो गई है।
1: नम हो गई है शांता जी। हाँ, सही बात, क्योंकि
2: विश्वास और लगन के साथ कुछ करो तो उस पर जरूर से परिणाम होता है।
1: परिणाम जरूर होता है,
2: परिणाम के परिणाम ऐसे ही होता है। और इसके बारे में मैं कुछ धन के बारे में कहूँगी, महिमा कुछ धन के बारे में। तो वो ऐसा है संजय जी,
1: बता दो शांता जी।
2: धन से पुस्तक मिलती है ना
1: जी,
2: पर ज्ञान नहीं मिलती। और धन से आभूषण मिलती है पर रूप नहीं मिलते। और ऐसे भी कहते हैं कि धन से सुख मिलता है पर आनंद नहीं मिलता। धन से सुख मिलता है
1: पर आनंद नहीं मिलता है।
2: सुख और आनंद में फर्क है।
1: हाँ, क्योंकि राजा कंस, उसके पास सब कुछ था, सब प्रकार से सुख था, पर जब उन्होंने इस बात को सुन लिए थे कि राजन, तुम्हारी बहन के 8वां पुत्र आपका वध करेंगे, तो उसका आनंद भाग गया था उसे छोड़ के
2: सब कुछ। हाँ, और आगे में है कि धन से साथी मिलती है किंतु सच्चा मित्र नहीं मिलता। धन से भोजन भी मिलता है किंतु भूख नहीं मिलता। धन से आप सब कुछ खरीद कर रख लो पर भूख नहीं लगे तो आप भोजन खा नहीं पाओगे। धन से दवा मिलती है किंतु स्वास्थ्य नहीं मिलती। खसों थे इतनी मिलती, दवा मिल जाते हैं पर खसों थे इतनी मिलता। धन से एकांत मिलता है किंतु शांति नहीं मिलती। धन से बिस्तर मिलता है किंतु नींद नहीं मिलती। ऐसा है कुछ धन के बारे में जो हमने कहा कि धन भला ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके प्रयोग कुछ अच्छे तरह से करना, ताकि धन भी रहे और धन से किया हुआ जो उससे हम की उससे भी हमें हासिल होवे। तो इतने था मेरे धन के बारे में।
1: अच्छी रूप से संदेश दिए शांता जी, क्योंकि राजेंद्र जी भी गीत के ओर बढ़ने वाले हैं। तो राजेंद्र जी पहले गीत चला देते, फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि हम सब क्या और रखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम बाकी है ना।
0: हाँ

0: दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुना कि राजेंद्र जी ने कौन सा गीत चलाए, और राजेंद्र जी मैं देख रहा हूँ कि दूसरा गीत की ओर बढ़ने वाले हैं, तो अब लगातार हमें समय पे ध्यान देना है। तो राजेंद्र जी चला देते हैं और देखते हैं कौन सा गीत आप रखने वाले हैं।
1: हर बार की भांति इस बार भी लागी छूटे ना अब तो सनम, क्योंकि जैसे ही हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर आने लगता है, वैसे ही इस गाने से पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे पहुंचे
0: और समय पे हमें ध्यान देना है। तो राजेंद्र जी चला दो
1: जरूर।

इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों की चिराग। आपकी सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम स्वीकार करे इस ज्योति का प्रकाश। ज्योति का प्रकाश के प्रोग्राम में सुनने वाले जो आज यहाँ से हम आपके लिए पेश किए साथी में

रागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जिया चाहे तेरी कसम। तो जो जैसे ही हमने आपको बताया कि हम लोग इस तरफ आते हैं, तो आते आते यहाँ पे जब ये गाना चलता है तो इसी से पता चलता है कि हम कहाँ पहुँच गए। तो आज का जो संदेश है वो ये है कि इफ़ यू सक्सीड इन चीटिंग समवन, डोंट थिंक दैट द पर्सन इज फूल, रियलाइज दैट द पर्सन ट्रस्टेड मोर मच देन यू डिजर्व। अगर आप अपनी चालाकी से या चतुराई से किसी व्यक्ति से जीत भी जाएं, लेकिन ये मत सोचना कि वह व्यक्ति मूर्ख है या मूर्ख था। रियलाइज करना कि आप उस व्यक्ति वो व्यक्ति आप पर विश्वास ज़्यादा करता था, इतना ज़्यादा करता था कि जिसके कि आप लायक नहीं थे। तो रेडियो फाहुन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, और फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: इधरें बदंग फॉर लास्ट
1: आज का कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश यहाँ पर अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंच चुके हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों आज के कार्यक्रम जो हम सब यहाँ साथ में मिल करके और किए हैं, हमारे साथ देने वाले शांता खिमाई और पनील के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी हमारे साथी और विमान भगवंत जो साथ दिए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आपके पास जरूर पहुँचे होंगे। फिर सभी को एक शुभ रात्रि, नमस्कार।

आज भी आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी से सेवा करेंगे और पुरानों गीतों की भान प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि वो शमा ही महफिली क्या, वो शमा ही महफिले क्या, वो शमा ही महफिले क्या जिसमें दिल खाक ना होए, वो शमा की महफिले क्या जिसमें दिल खाक ना होए। मजा तो तब है चाहत का जब जब दिल तो जले पर राख ना होए। हमारे यारो ये कहते हैं मुस्कुराना सिखाना पढ़ा है, मुस्कुराना सीखना पड़ा है, रोना तो लोग सिखा देते हैं। हमारे सुनने वालों तो हम चलते हैं गीत की ओर, वो है शंकर जयकिशन का ये जोंग है और यहाँ बताए गए है हसरत जयपुरी का और परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है। मूवी के नाम है राजी कुमार।

ते ही तुमने पुकारा और हम चले आए प्यार भरी मस्त भरी और लवली सॉन्ग आप सबके लिए हम चलाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा नहीं है कि अब तेरी मुझको जरूरत नहीं रही, ऐसा नहीं है कि अब तेरी मुझको जरूरत नहीं और जरूरत नहीं, बस टूट टूट कर अब बिखरने की हिम्मत नहीं रही, ऐसा नहीं है कि तेरे पीछे, ऐसा नहीं है कि तेरे पीछे तेरी याद आती नहीं, बस अब फूट फूट कर रोने की हिम्मत हिम्मत ही नहीं रही। हमारे यारों की कहते हैं कि याद ऐसे करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतनी करो कि शक ना हो, इंतजार इतनी करो जोनी को कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसे करो कि नफरत और नफरत ना हो हमारे यारो, और जब नफरत नहीं होगा तो पल भर के लिए तो थोड़ा हमसे प्यार कर लो ना। और किशोर कुमार का रोमांटिक फॉल सॉन्ग और देवानंद हेमामालिनी का जॉनी मेरा नाम फिल्म का नाम है, वैसे तो जॉनी हमारा नाम भी है लेकिन यहां फिल्म के नाम है जॉनी मेरा नाम का ये सॉन्ग किशोर दादा, और ये गीत को यहां से हम चलाते हैं।

करी। तो दोस्तों पल भर के लिए जॉनी से आपको भी प्यार करना तो चाहिए ना, कि कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि कहते हैं कुछ अलग ही करना है, कुछ कहते हैं कि अलग ही करना है। तो वफा करो मेरी यारो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करो मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफाई तो हर कोई कर देते हैं ना हमारे यारो। और कहते हैं कि दर्द जो तूने दिया वो गहरा दिया, दर्द जो तूने दिया वो गहरा दिया, करके वादा तूने हमको करके वादा, जी हाँ दोस्तों करके वादा तूने हमको भुला दिया, जख्म देने वाले तेरे भी शुक्रिया, जो जिंदगी का तूने मतलब सिखा दिया। तो यारो उसके बाद तो हम चलते हैं मैथी मुकेश पद्मराज श्री मोहम्मद रफी और नैथी गिल लता जी के साथ साथ किशोर दादा की ओर भी। फिल्म के नाम है अमर अकबर एंथनी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक डायरेक्टर है। आओ सुना जाए।

और हमको तुझसे और प्यारे, हमको तुमसे कितना प्यार है। नाइटिंगेल लता जी, परमा श्री मोहम्मद रफी जी और यानी कि और माइती मुकेश इस गीत को गाया है और फिल्म के नाम है अकबर, अमर अकबर एंथनी का ये निकाला हुआ जोंग है। तो कहते हैं हमारे यारो कुछ अलग ही करना है ना, अभी तो कहा है। और उसके बाद कहते हैं काश वो मुझे जीने से लगा कर मेरी सारी शिकायत दूर करते, काश वो मुझे सीने से लगा कर मेरी सारी शिकायत दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हुआ है वो और मुझे वो इतना मजबूर कर देते। और कहते यारो कि हम तो समझते थे कि सखाए हैं पर जगाएगा, क्या खबर थी कि रोज दिल में उतर जाएगा। ठीक लेकिन और ठीक लिखा था मेरी हाथ की लकीरों में कि तू अगर प्यार करेगी तो बेकार जाएंगे। तो उसके बाद हम जाते हैं कि ओ मेरे क्या दोस्तों, ओ मेरे राजा के बात है। और जो राजा जो है तो रानी तो राजा को जरूर बुलाएगी। फिल्म के नाम है वादा तो निभाया करो ना, जहां भी हो आपको वादा जो है कभी तोड़ना नहीं। आशा जी किशोर दादा ने इस गीत को गाया है, देवानंद हेमामालिनी ने काम किया है। और एक बार फिर जॉनी मेरा नाम, वो तो मेरा नाम है लेकिन यहां फिल्म के नाम है जॉनी मेरा नाम का ये गीत है जो आपको हम यहां से और सुनाते हैं, जिसमें देवानंद हेमामालिनी ने काम किया है हमारे यारो।

और अगर वादा करना है तो वादा निभाना भी जरूर करना, क्योंकि वादा तोड़ना वो तो जरूर कुछ नहीं बहुत बुरी बात है। कि कहते हैं ये खुशबू ये हवा आपकी हुई, ये खुशबू ये हवा आपकी हुई, मौसम की हर एक अदा आपकी हुई, दिल की चाहा दिल ने चाहा कुछ खास तोहफा दो आपको, चलो आज से मेरी हर दुआ आपकी हुई। हमारे यारो और प्यार भरी गीतों का प्रोग्राम यहाँ से हमारा चलते हैं कि एक बार और कहते हैं कि हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता है, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता है, सिखवा करो तो उन्हें मजाक लगता है। कितनी जिद्दत से हूँ हम उन्हें याद करते हैं, कितनी जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। हमारे यारो और वादा के बाद हम चलते हैं, हम बने हैं और तुम किसके लिए ये बने हैं, अगर हम आपके लिए बने हैं तो आप किसके लिए बने हैं, जरूर एक दूजे के लिए बना होगा। और ये गीतों का मौसम और प्यार भरी गीतों का प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं, फिल्म के नाम है एक दूजे के लिए और नैतिल गिल लता जी और एसपी बे यहाँ पे लिखा हुआ भाई जो इस गीत को गाया है।

और हमने और तुमने और किसके लिए हम बने हैं और किसके लिए हम बने हैं। और ये बांध जरूर अपने आप को सोचना कि आप किसके लिए बने हैं। एक दूजे के लिए तो जरूर बना होगा कि कहते हैं कि दुनिया को हकीकत, दोस्तों दुनिया को हकीकत मेरी, दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं है। जॉनी कहते हैं कि दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है, इल्जाम हजारों है और खता कुछ भी नहीं, मेरे दिल में क्या है पता ना सकोई, सारी सारी पाने भरी है और लिखे ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। हमारे यारो कि कहते हैं दर्द क्या होता है, दर्द दर्द क्या होता है बताएंगे किसी रोज, अपनी दिल की गजल सुनाएंगे भी हम किसी रोज, उड़ेंगे उठने दो परिंदों को खुली फिजाओं में, उड़ेंगे तो परिंदों को खुली फिजाओं में, हमारे होंगे तो लौट करे, लौट करे जरूर आएंगे किसी रोज। हमारे यारो तो हम चलते हैं जिस देश में, कौन देश में गंगा बहते हैं दोस्तों, हम उस देश के बांध करते हैं जो जिस देश में गंगा बहती है। जी हाँ दोस्तों, और मूवी का भी नाम है जिस देश में गंगा बहते हैं। तो आशा भोसले, लता मंगेशकर इस गीत को साथ में गाए हैं। और एक लड़की एक दूसरे लड़की के साथ क्या कहते हैं आओ सुना जाए।

क्या हुआ और तुझे, मुझे क्या हुआ और क्या हुआ दोस्तों। और अगर दिल मचलते हैं, दिल मचलते हैं तो प्यार तो होता ही है। कि कहते हैं मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने की आखिरी उम्मीद बाकी है। कि कहते हैं होंगे लाखों महफिले दुनिया में, होंगे लाखों महफिल दुनिया में, मगर तेरी दिलदार जैसा सुकून कहीं नहीं है। और जो गीत हम आप लोग को सुनाएंगे वो क्या है, तो कहते हैं कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यूं रूठा न करो हमसे, यूं रूठा न करो हमसे। पागल सा बच्चा हूँ, पागल सा बच्चा हूँ, मगर दिल का सच्चा हूँ। थोड़ा सा आवारा हूँ मगर, मगर तेरा ही दीवाना हूँ। बहुत प्यार से इस गीत को आओ सुना जाए।

और दौर दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, बोले चली कहीं और दूर जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, है जो पास उसे संभाल कर रखना, को खोकर भो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। हमारे और कुछ गन यानी कि गीतों की बहार प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं कि भरोसा इतना करो कि याद ऐसा करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतजार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि नफरत ना हो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करना मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफा तो हर कोई करता है, तो हम चलते हैं, हमको तुम तो हो गया है क्या। नैतिक लता जी और मोहम्मद रफी जी, परमा श्री मोहम्मद रफी जी, और यानी कि करोड़ों का दिल चुराने वाला, और वो कौन है, हमारे मुकेश जी है।

और ओ हमसे तो हमारे लेस्टरार से प्यार हो गया है, और अगर आपको भी प्यार होगा तो हमें जरूर बताना कि आपको क्या और किससे प्यार हुआ है। अगर यह हो सके तो हमसे बता देना कि कहते हैं काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायत दूर कर देते, काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायतें दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हो जाऊं, मुझे वो इतना मजबूर कर दे कि हकीकत कहो उनकी ख्वाब लगता हूँ, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता हूँ, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, कितने जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। अगर जो शादी करना है तो जॉनी को याद कर लेना और मेहनी लगा कर बढ़ जाना, कल हो ना हो और कल हो ना हो लेकिन जॉनी को याद कर लेना। फिल्म के नाम है कल हो न हो और मेहनी लगा करे मेरा तलाश।

और माही कल हो ना, कल हो ना हो हमारे प्यारी जनता की कहते ही दर्द क्या होता है, ये जो दर्द जो है ना वो क्या होता है बताएंगे किसी रोज अपनी अपनी दिल के गजल जॉनी सुनाएंगे किसी रोज, दर्द क्या होता है जॉनी बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल सुनाएंगी किसी रोज, उन दिनों उन्हें दो परिंदों के खुली फिजाओं में हमारे होंगे तो लौट कर आएंगे एक रोज जरूर मेरी कब्र की मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पे और मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने की आखिरी उम्मीद अभी तक बाकी है हमारे दोस्त, तो हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना, मूवी के नाम है दिल का क्या कसूर और कुमार शानू आशा जी का ये गाया हुआ बेमिसाल लवली प्यार भरी गीत है।

टूट उड़ जाता है, कभी कभी वादा जो लोग करते हैं वो टूट डालता है, कि कहते हैं कोई गलती हो जाए तो दांत लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यो रूठा ना करो हमसे, क्यों रूठा न करो हमसे, पागल सा पागल सा बच्चा हूँ, मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरे ही दीवाना हूँ, कि कल हो न हो लेकिन जोनी का प्यार आपके साथ हो।

और बड़ी गुमान प्रति वोमन कहो ना कल हो न हो, शरुक का ये विलम है। और उसके बाद हम और आगे को अपना अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं, सुनाते हैं। हमारे यारो नखमाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो के जरिए आपको हम और कुछ मिली जुली गीत से सेवा करते हैं कि कहते हैं, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। बस इतनी सी है चाहत तुमसे, बस इतनी सी है चाहत तुमसे, कभी दूर जाओ तुम जोनी के नजरे से, तेरे बिना हो जीना ऐसा दिन कभी न आए, मेरे यारो न जाने मेरे ये दिल कहाँ खो गया, तुझे पहली दफा देखा और तेरी हो गया, और तेरे दर से दिल आबाद रहा। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना मूवी का नाम है, जिसमें शाहरुख खान ऋषि कपूर, देविया भारती ने काम किया है, और एक दर्द भरी प्यार का सॉन्ग जो कुमार शानू आपको यहां से सुनाते हैं।

और तेरी दर से ये दिल आमाद हुआ हमारी दोस्तों, तो कहते हैं बिन तेरे अधूरा हूं मैं, तू मिल जाए तो जॉनी पूरा है। और कहते हैं दो चार दिन का इश्क हम नहीं किया करते हैं, और गए का इश्क हूँ यूं ही किसी से प्यार नहीं करते हैं, और गए का घर का और इश्क हूँ और कोई यूं ही किसी से प्यार नहीं करते हैं। तू मेरी सबसे खूबसूरत भूल है, तू मेरी सबसे सबसे खूबसूरत भूल है, तेरे हर खुशी और गम मुझसे कबूल है। अलका यागनी और शंकर महादेवन की ओर हम चलते हैं हमारे यारों।

पूरे छम्मा ही छम्मा है, और छम्मा के बाद कौनची होता है, हम वो आशिक है जो स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक तो को नहीं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक को नहीं, तो मेरे जिंदगी के वो खुशी है जिसे मैंने अपनी दुआ में मांगा है। हमारे यारो, तो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम है। हम यही कहते हैं हमारे यारो कि प्यार करना कोई छोटा बात नहीं है। कैसी छोड़ दूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे बस चाहत ही नहीं, और जरूरत हो तो मेरी, जरूरत हो तो मेरी, प्यार मोहब्बत आशिक ये सब बस अल्फाज ही थी, लेकिन जब तू मिली मुझे जिंदगी में इन अल्फाजों की मजा ही बदल गई। तो और है दोस्तों प्यार भरी नगमों का बहार प्रोग्राम, यहाँ से हम चलाते हैं कि दुख की शाम हो, दुख की शाम हो या हो सुख की सवारे, और सब कुछ अच्छा लगता है जब साथ हो तेरा। तो ये बात सच है कि तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे ये दिल है जो तेरे सिवा कहीं और नहीं होता है। हमारे यारो, तो ये गीत है, फिल्म के नाम है अप्रैल फुल, और हम चलते हैं एक मस्त भरी, प्यार भरी, मोहब्बत भरी गीत की ओर।

और आ गली लग जा, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल का ये, और ये प्यार भरी गीत फिल्म के नाम है यहूदी सॉन्ग, ये मेरा दीवाना है। दिलीप कुमार, मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए, सिंगरेश मैथी मुकेश।

दीवानापन है। और ये है नैतिगिल मुकेश जी के आवाज में इस गीत को हमने चलाए है। हमारे दोस्तों परियारों क्या कहते हैं कि कहते हैं कि मेरे दिल की यही है दुआ, कभी दूर तुम ना जाना, तेरे बिन हो जीना, वो दिन कभी ना आए। तो हम सुनते हैं।

और मैं सोनिया और परमाशीन मोहम्मद रफी का और नतिल गेल लता जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं कि तेरी और मेरी रातों में बस इतना फर्क है, तेरी रातों को नाक बजता है और मेरी रातें रो कर

दोस्तों, तुम्हारी असली सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है मित्रों। और यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है मित्रों। और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वे होती है मित्रों जब व्यक्ति के पास खाने को हो। ध्यान करना, जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए और पैसा हो लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। वाह, क्या बात है मित्रों। ये तीन का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है मित्रों। और जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप अपने गलतियों को स्वीकार कीजिए मित्रों।

दोस्तों, महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है। आप ऐसे करते हो? खुले मन से भूल को स्वीकार करते हो? तुम तो कसूर दूसरों पे ठोप देते हो। आपका बात नहीं है, वो आपके पीछे वाला जो वहाँ खड़े हुए हैं ना, उनकी बात हम बता रहे हैं, उनके बात है। और उसमें सुधार करता है, गलती को स्वीकार किया और आगे में चलकर सुधार भी किया। मित्रों, तो ये सही व्यक्ति होते हैं। और यारदास का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता है। मित्रों, बुरा नहीं होता है। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है। सब बतिया सोच के बैठल रहिए तो खोपड़िया खराब हो जाएगा मित्रों। तो इसलिए जो जरूरी बातें नहीं है उसे भूल जाओ, फेंक दो, गोतरों में फेंक दो। और सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्मा पीरा को बढ़ाता है। बोले हियाँ पीरा महुआ पिराई, सोच के बैठिए जरूर पिराएगा मित्रों। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है। इसीलिए ये सीखा जाए कि क्या सहजना है और क्या छोड़ देना है। छोड़ दियो तो आपका भलाई होगा मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत भलाई होगा।

0: दोस्तों, मोहब्बत खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। मित्रों, ये उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है, जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। जैसे आपके धोखा मिलल एकदम गड़बड़ा गए लो, आपका बात नहीं, वो पीछे वाला जो आपके पीछे खड़े हो उनकी बात। मित्रों, तो आत्मा भी कांप जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं है जो तुम्हारे सामने कही जाती है मित्रों, बल्कि वे है जो तुम्हारे पीछे कही जाती है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। तोरिया कैसे है वो समय बतलावे है, और ना कोई और। मित्रों, ना कोई और।
1: इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चले जाते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन भी मिल गया होगा। यही रीत है ये संसार की।

दोस्तों, टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। मित्रों, कभी कभी वे केवल समझौता रह जाता है। दुई पति पत्नी बिछड़ गए ने, फिर सलाह कर ले लें, मैं फिर से संगे रहो, पहले जैसा नहीं हो पाएगा। खबरदार खबरदार मित्रों, प्रेम वहाँ नहीं है, वहाँ समझौता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जो ठीक लगे वैसे ही दूसरों से किया करो मित्रों।

मित्रों, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। आप समय को रोक नहीं सकते, काम असंभव बात है, इतोरिया ना चलेगा। मित्रों, रोक नहीं सकते हो समय को आप। जो समय एक बार निकल गया मित्रों, वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो जीवन का हर क्षण ध्यान करो, जीवन का हर क्षण हर पल एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं, तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है, बहुत बड़का पेड़। तो आप समय का कदर करो, समय आपका भी कदर करे, बड़ा इंसान बनो मित्रों। और जो व्यक्ति समय का आदर करता है, वो ही जीवन में उन्नति करता है। और समय की कीमत वही समझता है मित्रों, जिसने उसे गंवा दिया हो। जैसे तुम नहीं, तो ठीक बात, बहुत ठीक बात, आपने समय को नहीं गंवाया, सही उपयोग करो मित्रों। और ये नक्षत्रों से भी तेज है ये समय, और क्षणों में एक पल में जीवन की दिशा बदल सकता है, एकदम बदल देंगे जीवन की दिशा मित्रों। सौंदर्य सा भी

मित्रों, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय ही, समय का आदर करना मित्रों स्वयं का आदर करना है। आपने समय का कदर किया, समय ने आपका कदर भी किया। उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा आपके साथ भी मित्रों। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। और समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है मित्रों, बिल्कुल आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति, ध्यान करिए, दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसीलिए जीवन को सफल बनाना है मित्रों तो समय को व्यर्थ ना गंवाए। सोमा समय को ना फेंक दे बेकार को। दिन भर सूतल लगिए बोलिए हम कुछ ना हासिल कर पाएगा, खबरदार पास हो गए। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती है मित्रों। अन्य स्टॉप गियू, घड़िया के टिक टिक टिक टिक चलते हैं, तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे। इसीलिए उसे पहचानिए, सराहिए मित्रों, और सही दिशा में उपयोग कीजिए। सही दिशा में उपयोग कीजिए मतलब सही ओर अपने जीवन को ले जाइए मित्रों, सही ओर।

अमृत और जहर दोनों है सागर में एक साथ, मंथन का अधिकार है सबको, फल प्रभु।

शरतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम्, नमः विद्या प्रदायकम्, दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे, वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज सुबह के कार्यक्रम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार है, लाचार है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। सभी जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है और आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। जिसका घर पे आज कार्य है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके कार्य शुभ शुभ और मंगलमय हो। जो अपने काम के तैयारी में है, अभी निकलने वाले हैं, तो ये मत भूलना गांधी जी का संदेश कि मेरा जो देश हमारे लिए क्या कर सकता है, इस पे चिंता मत करना। चिंता ये करना कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। जो अभी स्कूल के लिए यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे, तो उनको ये कहूँगा कि सरस्वती माता को भूलना मत। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती जो बुद्धि और ज्ञान का देने वाले हैं, जो हमारे देश में सफर से आए हैं, तो यही कहूंगा कि आपको हार्दिक से स्वागत है हमारे सुंदर सा देश में। और जो सफर पे जाने वाले हैं, यानी कि कहीं और जाने वाले हैं, तो उनको फैन फकांसी तू एंसर किया जाता है। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है, यानी कि एक नया परिवार आया है, उनको बहुत बहुत सा बधाई देना चाहता हूं।

मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। और खास करके पहला भाग में शंकर महादेवा जी की आवाज में आप सुनेंगे सुंदर सुंदर भजनों। एक दंताए वक्र तुंडाए, ये गीत से हम शुरू करते हैं।

शंकर महादेवा जी के आवाज में हम सब ये सुंदर सा गीत सुना। सुनने वालों, एक ऐसा कलाकार जो 7000 से ज्यादा गीतों को गा चुके हैं, अलग अलग भाषाएं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने जीवन में शायद इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा था पर जाकर के कलाकार बने और इतना सुंदर सुंदर गीतों को गाए। कहते हैं

कहते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आई जाते हैं। आज अपना एक दिन बनाइए जहां आप शायद संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें जो कभी ना कभी आप सुने होंगे शायद आज काम में आई जाए।

सुनल हम शंकर महादेवा जी का जो शिव तांडव स्तोत्रम है उनके आवाज में सुनेंगे।

शिव तांडव स्तोत्रम जो रावण रची, शिव तांडव स्तोत्रम जो जाकर के शंकर महादेवा जी के आवाज में हम सब सुने सुने वाले। कहते हैं कि अजीब से रिश्ता है मेरा ऊपर वाले से, कहते हैं कि अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सिर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सिर उठा देता है।

सुनने वालों, आपको एक शुभ दिन प्रस्तुत है। और कहते हैं कि मेरे साथ वो खड़ा है मेरा साथ वो खड़ा है जो जगत में सबसे बड़ा है।

देखते हैं जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, इसे गुस्सा, पछतावा, शिकायत और चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मा रहे। जरूर इन बातों पे ध्यान देना सुनने वालों कि जीवन बहुत छोटा है, गुस्सा, पछतावा और शिकायत कहते हैं कि चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहे। सुनने वालों हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे और शंकर महादेवा जी कृष्ण महामंत्र के और संदेश हम सबको सुनाने वाले हैं।

जी रहे हैं सरकार तेरे मेहरबानियां में, जी रहे सरकार तेरे मेहरबानियां में, पल रहे परिवार कान्हा तेरे पहरेदारी में।

कहते हैं कि यू ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यू ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यू ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, लिख लेना मेरा नाम तेरी खातिरदारी में।

किसी ने अच्छा कहा है। दिए हुए जुबान और काम आया इंसान, ये दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसे जुबान दिए हुए हो तो ये बात को ध्यान देना चाहिए, और जो तुम्हारे काम आए हैं ऐसा इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दो चीज है कभी नहीं भूलना चाहिए।

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम, जय हनुमान। शंकर महादेवा जी के आवाज में हम सब हनुमान चालीसा का सुने सुने वालों, आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

और ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिंदगी की राह चुनते समय अपने माता पिता के राय अवश्य ले, क्योंकि क्योंकि कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है। तो सुनने वालों जरूर इस बात पे ध्यान दे कि जिंदगी के राह चुनते समय अपने माता पिता की राय अवश्य ले, क्योंकि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है।

संदेश जरूर आपके लिए रखना चाहूँगा कि उम्मीद हमारी वो शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए माता पिता के साथ बिताए हुए पल, माता पिता के साथ बिताए हुए पल संभाल कर रखना, क्योंकि ये पल आपको याद तो आएंगे पर वापस नहीं आएंगे। तो जरूर इस बात पे ध्यान देते हुए आज समय निकालिए अपने माता या पिता के अंतर्गत। एक संत ने अच्छा ही कहा है कि चाहे आप सुबह पूजा मत करो पर अपने माता पिता के साथ बिताए हुए पल वो पूजा के समान हो जाता है।

सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय ये कार्यक्रम को सुनते हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है। जो इंटरनेट द्वारा अपने घर पे सुनते हैं, बहुत बहुत सा और अभिनंदन। जो अपने मोबाइल से सुनते हैं, उन्हें भी इंटरनेट द्वारा हार्दिक से अभिनंदन। और जो इस समय अपने गाड़ी से सफर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सा और शुभ दिवस। कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगे। कहते हैं अपने माता पिता, जो माता पिता के चरणों में स्वर्ग कहलाते हैं,

माता पिता को सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और किसी ने अच्छे कहा है कि माता पिता के बात सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाती है और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं।

अल्लाह के लिए उनके बच्चे भी सब दिन कितना प्यारे होते हैं, ये तो हम मेरा राजा मेरा लाल ये सुंदर सा गीत से पता चलेगा।

किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही एक जगह है जहां पैसों से घर नहीं बनते।

सुनो लो, आज के लिए हम अपने माता पिता पे और जरूर ध्यान देते हुए माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है।

तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है माँ। ये सुंदर सा गीत हम सुने और सुनो वालों, आज ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि पाप और पुण्य क्या है, मुझे पता नहीं है कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी हुए वह पुण्य है।

घर से जब शिशु जन्म लेता है तो माता पिता कितना खुश होता है, उस अंतर्गत में हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे।

सूरज कहो या चंदा, ये सुंदर सा गीत एक फूल दो माली से निकाला गया फिल्म जो मन्ना दे के आवाज में और हम सब सुने। तो आपको इस बात को भी पता चल गया होगा कि जब हमारा जन्म होते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं, समस्त परिवार कितना खुश होते हैं और प्रकृति क्या करते हैं। जैसे पंछियों अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह से हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं और समय आने पे हम अपना अपना घर बसा लेते हैं ना। तो हम शायद इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव और हमारे रूप, ये तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है। कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव, हमारे रूप, यही वो तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है।

औलाद वालों फूलो फलो, कहते हैं कि ना सुख खरीदने पता हो ना दुख बेचने पता हो, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने निकल जाता हूँ।

जरूर इन गीतों को सुन करके आज समय जरूर निकालना, अपने माता पिता के लिए, कि वो नहीं होते तो हम कैसे होते।

आदमी मुसाफिर है, आते जाते कुछ यादें भी छोड़ जाते हैं। सुनने वालों, कहते हैं कि हम मुसाफिर है और मुसाफिरी जब पूरी होंगी तो जाने के भी मजबूरी होंगी, और जाने का समय जब आ जाता है ना तो कोई रोकने वाला भी नहीं होते है। आज का संदेश में ये संदेश भी मैं रखना चाहता हूं, बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर होते हैं। लिखने वाले तो अच्छा लिखते हैं कि बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर होते हैं।

ये सुंदर सा गीत जो हम सुने कि पप्पा जल्दी आ जाना, और ज्यादा ख्वाहिशें नहीं बस जिंदगी का अगला लम्हा पिछले से बेहतर हो काफी है।

बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। यही संदेश होते हैं हमारे माता पिता के।

कभी किसी को दगा नहीं देता है, और पाप किसी का सगा नहीं होता है।

जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसा है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें बहुत स्नेह कर रखिए। यहाँ तक जो मैं आपके साथ जुड़े रहे, आशा रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। और हमारे कार्यक्रम जो आगे हमारे कोलेखा साथी लेकर बढ़ाएंगे।

पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये जो विश्वास है एक बहुत कठिन चीज है हमारे प्यारे सुनने वालों, प्यारे दोस्तों, विश्वास करना चाहिए। विश्वास में भगवान है और भगवान में हम हैं। हम नहीं, भगवान नहीं तो हम नहीं, विश्वास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप सुने थे, आप अभी सुने थे जुबिन नौदियाल की आवाज़, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाते। सही बात है, सही गाना है, सही बात है। चलो आगे ले चलते ही एक भजन से, एक घंटा का प्रोग्राम है भजन के हमारे सुनने वालों।

कहते हैं जय जुन करिए आराम आएगी, सच में आराम आएगी अगर आप दिल से दुआ करते, दिल से प्रार्थना करते ही तो ज़रूर आराम आएगा। आराम नाए तौर के आई यार, सुबह का प्रोग्राम है, आज मंगलवार है। चलो आप लोग के लिए चलते ही एक रिस्खंत गायत्री मंत्र आपके सुनाते, ओम भूर भुव श्व, इतना जी दिल खुश हो जाएगी इसको सुनकर। मैंने कहा है आज मंगलवार है, काफ़ी लोग हैं जो पूजा पाठ पे बैठे, उन सब पूजा पाठ करने वाले के लिए ओम भूर्भुवः श्वः, मिलके सुनते हैं गायत्री मंत्र।

ज्ञातस्तु ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव सभीमहि धियो यो न प्रचोदया। इसे बड़ा मंत्र कुछ नहीं है, गायत्री मंत्र से बड़ा और एक मंत्र नहीं है। एक बार दिन में कह दे आपका दिन सफल हो जाएगी। क्या दिन हो जाएगी? मन खुश हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा और आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। ये था गायत्री मंत्र। दोस्तों हम चलते ही एक भजन रखेंगे दुर्गा माँ के लिए, क्योंकि मैं भी दुर्गा माँ का भक्त हूँ और हम हर एक एक माँ है। हम एक माँ के लिए आज जितने माँ इस प्रोग्राम को सुनते हैं और जितने माँ इस वक्त पूजा पे, हर एक माँ के लिए मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है। सच्ची बात है, ये सच है, इसमें एक झूठ नहीं है, सच्ची बात है। माँ से बड़ा कोई नहीं है।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे मेरी माँ की बराबर कोई नहीं, दुर्गा माता के भजन था जो मैंने आप लोग को सुनाया है। चलो दोस्तों, हम फिर से रखते एक भजन, कौन कहता है कि भगवान आता नहीं, ये हमारा बहुत ही फलिंग भजन है, इसलिए मैं इसे आप लोग को सुनाता हूँ।

जी हाँ, हमारे सुनने वालों, क्या भजन है हम आप लोग के लिए चलते ही शिव जी की एक भजन है। और उससे पहले मैं आप लोग के सुनाने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे लाचार है लोग, बीमार है, या जहाँ पे मातम है, उनके दुख में हमारा पूरा टीम फोन रेडियो का शामिल है। जहाँ सुख है वहाँ भी शामिल है हम सब, हर एक के दुख में सुख में हम सब शामिल है। और यही हम कह सकते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, हर एक दूर, हर एक दुख हर एक दूर कर दे मालिक, यही प्रार्थना है। और ये जो भजन मैं चलाना चाहता हूँ, ये महादेव के भजन है, यानी कि शिव भगवान के एक भजन है, और अरिजीत सिंह ने इसे प्यार से सजा करके गाया है। हम मिलकर सुनेंगे दोस्तों, हर एक के लिए ये गाना है। आज ये जो प्रोग्राम जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, लोग सुनते हैं, जो अपना पूजा करते हैं और अपने पूजा पाठ पे है, हर एक के लिए ये भजन मैं पेश करता हूँ। नामन सही लतीम फाहौन हिंदुस्तान रेडियो हमालोक के जो कोलेखा है, सबके तरफ से आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरिओम। हम चलाते हैं प्रोग्राम को आगे। बहुत ही अच्छा भजन है, हम आप सबके लिए इस भजन को चलाते हैं। सुबह का प्रोग्राम है और मंगलवार है। घड़ी की तरफ देखा जाए तो अभी आधा घंटा बचा है जो प्रोग्राम में भजन चलेंगे।

जी हाँ दोस्तों, पवन सुत बिनती बार बार अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से भगवान से मांगेंगे, तो क्यों भगवान आपको नहीं देगा? हर एक को देते हैं, हमें क्यों नहीं देगा? इस गाने में, इस भजन में यही गाते हैं, दिल से मांगना तो सभी कुछ मिल जाते हैं, ढूंढने से हर एक चीज मिल जाते हैं, क्यों हमारा भगवान नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा दोस्तों। चलो हम आगे ले चलते हैं, श्री रामचंद्र कृपा, क्या भजन है, अच्छी भगन है, अच्छे अच्छे भजन हम आप लोग के सुनाते हैं। आज मंगलवार है, काफ़ी लोग हैं जो आज मंगल के दिन भगवान को याद करते, उन सब याद करने वाले के लिए

0: पवन सुत बिनती बार बार, यहाँ तक थी हमारा भजन का प्रोग्राम जो एक घंटा पूरा हो चुका है हमारे दोस्तों। और ये मैं कहना चाहता हूँ अगले मंगलवार के फिर से रहेंगे भजन का प्रोग्राम और ऐसे कुछ ही मिले जुले गीत है। आप जानते ही हमारा प्रोग्राम में एक सवाल है जिसे हल जो हल कर देगा उसे हक बनता है एक गाना मांगने के लिए। वो मैंने सवाल को किया था, ऐसा कौन सा चीज़ है जो ऊपर से नीचे आता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाता है। सही जवाब आ गया है, 3-4 सही जवाब आया है। अभी उसके फरमाइशें हम ज़रूर सुनाएंगे। तब तक के लिए मैं ये कहना चाहता, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा प्यार दुलार और बहुत बहुत पैगाम पहुँचे। आप सब चुन है बुरकाश है द एफ अगेन लव द लव फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पे हम सब चून है। और अब हम चलेंगे कुछ न्यूज़ से कुछ रिक्लाम की तरफ, उसके बाद हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। और आज का प्रोग्राम ही 11:15 बजे हम चलाएंगे मौत का खबर, एक पलवार का मौत खबर है जो हमारा भाई गंगा उसे चलाएंगे, उसे वो इस जगह पर रहेंगे और इस मौत की खबर को वो अपने आवाज़ से बयान करेंगे आप सबके लिए। एक परिवार का मृत्यु समाचार है, उसके घर में दुख है, हम सभी आपके दुख में शामिल है जहाँ पे दुख है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम चलते हैं न्यूज़ और कुछ रिक्लामों की तरफ।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0765 32 2047। Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ रिकलामा और न्यूज़ अभी आप सुन रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि आप सब चुन हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे, और हम सवाल किया था ऐसा कौन सा चीज़ है जो ऊपर से आते हैं और नीचे से नहीं जाते हैं, धरती से ऊपर से आते हैं धरती से ऊपर नहीं जाते हैं। सही जवाब आ चुका है, लेकिन आधा घंटे के बाद हमारा ऐप खुल जाएगी। हमारा तार का नंबर है 0643 8 0 8 3 3 2। आप इसे इस पे तार कीजिए और तार कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और ऐप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आप लोग के लिए चलते हैं अरिजीत सिंह और श्रिया घोषाल, रोमांटिक सॉन्ग है और हम सुनेंगे। आज मंगलवार है ना, हम सब रोमांटिक मूड में है, मौसम को जैसे है थोड़ा धुआं धुआं है, बंद बंद है, थोड़ा अंधियार है, इसलिए हम चलाएंगे कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स।

कमड़िया श्रिया घोषाल और रोमांटिक सॉन्ग है अरिजीत सिंह। अभी हम पूरा पूरा कलेक्शन चलाएंगे जहाँ पे श्रिया घोषाल ने भी गाया है, तब तक के लिए हम चलते अरिजीत सिंह और श्रिया घोषाल।

जी हाँ दोस्तों, सच में तो कहा है अरिजीत सिंह ने, सच बात बोली तो आपके बिना हम कुछ नहीं है। इस दुनिया में हम सब जीते हैं, एक संग जीते हैं, कोई कोई के बिना नहीं रह सकता है। हर एक मोमेंट पे इंसान के हम लोग के जरूर काम लगी, इसलिए कहा है हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में और क्या है अरिजीत सिंह।

जी दोस्तों, ये था श्रिया घोषाल की आवाज। चलो फिर चले चलते श्रिया की ओर, मिलके सुनेंगे। आप सब जानते हैं, आप चुने तो केपी ब्रॉडकास्ट से दफा हूं हिंदुस्तानी रेडियो पे दोस्तों।

आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं, इसी का नाम है श्रिया घोषाल। क्या आवाज में, क्या अंदाज में ये गीत को गाकर ऐसे रख दे इस कि जैसे कुछ ना है। दम मकलक हेल मकलक हेल मुल्क नंबर अपन हेल मकलक मनीर खसोमदोर श्रिया घोषाल। आगे चलते हैं तो देखा जाए फिर से

हाँ दोस्तों, आज आधे घंटा मैंने चलाया है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह। एक बार फिर से हम चलते हैं श्रेया घोषाल की तरफ। आधा घंटा हो रहा है। सवाल सवाल सवाल जो मैंने किया था, ऐसा कौन सी बात जो ऊपर से नीचे आवे है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाते है। काफी लोग है जो सही जवाब को दिया भी। सरे 9 बजे से हम फरमाई से शुरू करेंगे। तब तक के लिए एक गाना, एक गीत और है श्रेया घोषाल का, मिलके हम सब सुनेंगे।

जी, हमारे सुनने वाले वादा के मुताबिक हम अपना प्रोग्राम को चलाएंगे 10:15 से। मैंने कहा था कि हम चलाएंगे और फरमाई से जो सही जवाब को दिया है हक बनता है एक गाने मांगने के लिए, ऐसे हमारा रूल्स है हमारा प्रोग्राम में, ऐसे ही जो सही जवाब देगा हक बनती है गाना मांगने के लिए। क्योंकि काफ़ी सोच था कि अंतर तो कौन ची बा पाई गले अंतर फिज लेते तो कभी रखते एगो गाना मांगे खातिन। यहाँ हम लोग फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पे बाटिया हमारा पूरा टीम ऐसे बा, हम ना करें हमारी टीम में से जोर एक जने आपके लिए इस गाने को फरमाइश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो मेरा सवाल था ऐसा कौन सा चीज़ है जो ऊपर से आता है नीचे तक लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पे हमारा रीनिया भाऊजी है जो पहले जो अंतर दे सगा रेहन पानी। सच बात है भाऊजी, और मोय अंतर तो देले बटे पानी है। पहला पर्सन जो ई अंतर दे सगा वो रहा रीनिया भाऊजी, यानी कि हमारा भाई बड़ा भाई बीरबल के तहत फरौबा बीरबल कौर थे जो हमारा कोलेखा है, हमारा रेडियो कोलेखा है और रेडियो करता वो भी भाई सुरिन बीरबल, लोगों से बीरबल के नाम से जानते हैं। और भौजी है जो सही जवाब को दिया है और मांग क्या है, गाता रहे मेरा दिल किशोर कुमार लता मंगेशकर की गाई से लाई दिख से शैलेंद्रा, और ये गाना हम आपके नाम करते हैं। भौजी सही जवाब दिया है और आपको हक बनता है, आपने सही गाने को मांगा है। सुबह का प्रोग्राम है, अवेर तक ये और ये गाना तक ये तो बहुत मोह लगी सुनत। अभी काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब को दिया है, हर एक की फरमाइशें पूरा करेंगे, आज नहीं तो शुक्रवार के हम आगे चलेंगे फरमाइश से। ठीक है भौजी, आपका नाम आपके घर तक आपके कानों तक हम पहुँचाते हैं। नामंस द एवरग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं एकदम घर तक।

जी दोस्तों, गाता रहे मेरा दिल, हमारा भौजी रिनिया के नाम चला गया था क्योंकि सही जवाब को दिया है। ऐसे प्रोग्राम को आगे चलाते हैं का वक्त कम है क्योंकि काफी लोग हैं जो सही जवाब को दिया है और हम सभी को सभी के फरमाइश हम पूरा करेंगे जरूर। आज नहीं तो शुक्रवार के प्रोग्राम फरमाइश जरूर पूरा करेंगे। देखा जाए तो सुनीता बुधाई ने भी सही जवाब को दिया है। इसमें लिखा है अनिल रेखन, ठीक है बात है, पानी है रेखन, पानी आता है बरसता है नीचे और नीचे से ऊपर नहीं जाता है। कोई तार कर रहा है, अभी मैं तार को नहीं ले सकता हूँ। जो भी है प्रोग्राम को सुनते हैं हमारा नंबर पे कॉल कीजिए, 9 0 3 8 0 8 3 3 3। ठीक है दोस्तों, और सुनीता जी मांग क्या है, कभी यादों में देखा जाए अभिजीत भट्टाचार्य, भट्टाचार्य है ना, ठीक है, उसके नाम कभी यादों में

कभी यादों में आओ कभी यादों में जाओ। अभिजीत भट्टाचार्य से भी आप सुन रहे थे और सुनीता बुधाए जो सही जवाब को दिया है आपके नाम ये गाना मैंने कर दिया। सुनीता आपको प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम सुनते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। हर एक जो हमारा साथ देते हैं सभी को हम धन्यवाद कहते हैं। चलो दोस्तों हम देखते हैं राबिया जी हम लाइन पे ले फॉलो करते से राबिया जी भी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है रेखन। रेखन कौन सा चीज़ जो ऊपर से नीचे आता है नीचे से ऊपर नहीं जाता है वो पानी है। हम लोग दिन के ना देख पा रहे शायद रात के नीचे से ऊपर जाते ही पानी हम लोग ना देखी ना। ठीक बात है राबिया ने भी मांग किया है के यादो या मिल के सुनते क्या गाना मांग किया है राबिया। बहुत अच्छा गाना मांगा है और आपके नाम हम करते ही आप घर पे ही आपके घर तक हम इस गाने को पहुँचाते ही नामस द एफ अगेन लव फहून FM, FM.

जी हाँ दोस्तों, के कई जो अब इस दुनिया में नहीं है अपना आवाज छोड़ गया भी जीता है। और ये गाना तो राबिया ने मांग किया और सही जवाब को दिया था। राबिया, आपका फरमाइश मैंने पूरा कर दिया। चलो दोस्तों, हम देखते हैं हमारा भाई आंद्रे और भाऊजी है जो सही जवाब भी दिया है और क्या गाना मांग किया है। भाई आपने इशारों इशारों में दिल ले गया। फिल्म कश्मीर की कली है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले ने गाया है, शर्मिला टैगोर शमी कपूर ने इसमें काम किया है और म्यूजिक बजाए है ओपे नायर। भाई आंद्रे हमारा ये जो कराओके ग्रुप में हमारा साथ देते, हमारा गाना गाते हैं, काफ़ी अच्छे गाते हैं। उसका नाम हम करते हैं भाई, आप सुनिए, भौजी भी है तो लोगों ये गाना बहुत प्यार से सुनिए, बहुत प्यार वाला गाना मांग लिया है। क्या गाना, क्या अंदाज में शमी कपूर इसमें डांस किया है, अख्तियार किया है। आपके नाम भाई?

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ना सुलेना अरित खान्स अखेंदा रेमन मेट फुल बैन। ये था कुछ रिक्लाम और न्यूज। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, प्रोग्राम आगे ले जाते हैं। जैसे वादा मैंने किया था, वादा निभाना चाहिए। और देखा जाए तो रॉय मंगली है हमारा टेक द चांस कारो को फार्मेसी का एक बहुत ही अच्छा मैम सांगर है जो हमारा साथ देते हैं। हर हफ्ते ये प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं हमारा साथ। और आज भी गाने को मांग किया है, तुम ही मेरी मीत हो। और ये मांग किया है पूरा परिवार है सुरिनाम में, अशोक मंगली है, किदत मंगली है, माँ है, हर एक के लिए ये। और जय यहाँ पे प्रोग्राम सुनते ही हमारा पूरा टीम मेंबर के लिए, पूरा फाहुन टीम के लिए, हर एक के लिए इस गीत को वो मांग किया है। दोस्तों हम आप लोग सुनाते हैं, भाई रॉय हमारा भाई जैसा है, भाई से बड़ा है भाई रॉय, बहुत बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप हर हफ्ते प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने मांगते हैं। यहाँ से सुरिनाम तक मांगा है हर एक परिवार मंगली के लिए और जितना लोग यहाँ पे सुनते हैं रेडियो हमारा कारो का ग्रुप के लिए, मेंबर के लिए, हर एक के लिए ये गाने को मांग किया है। और मुझसे पूछा भाई अनिल एक गाना और, ठीक है हम आपके नाम जरूर गाना करेंगे, एक और गाना हम आपके नाम करेंगे। दो तीन गाने के बाद हम आपको फरमाइश पूरा करेंगे भाई रॉय मंगली, तब तक के लिए ये तुम ही मेरी मीत हो।
2: अद्वकातन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है, इनक्रेवन एनफेस्टेशन।
1: जी हाँ दोस्तों, थोड़ा से कुछ गड़बड़ इसमें मुझे लग रहा है, देखा जाए तो यही तो है जो यहाँ पे इस वक्त बज रहा है। अब नहीं होगा भाई रॉय मंगली, आपका गीत आ रहा है, देखा जाए तो आपका ये गीत आ रहा है।

0: जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा भाई रॉय मंगली के लिए जो प्रोग्राम सुन रहे थे और सही जवाब को दिया था। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे और देखा जाए तो ब्रिजदा से हमारा भाई मामिन प्रोग्राम को सुनते अपना काम पे है, नौकरी पे हम सोचते हैं, प्रोग्राम को सुनते ही अच्छे लगते हैं, हर हफ्ते प्रोग्राम को सुनते हैं। ये भी हमारा कारो को फरमाशी का एक मेंबर है जो काफ़ी अच्छे गाते हैं और सही जवाब को दिया है। रेन पानी पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी ऊपर से आते हैं नीचे लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, ये मांग किया है। बहुत बहुत अच्छा गाना है, सर जो तेरा टकराए, जॉनी वर्कर इसमें काम किया, पद्मश्री मोहम्मद रफी का गाना है और मूवी पैसा नहीं खरीदी सेफ रन फाइफ तक का है। तो लीजिए भाई मामिन, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, आपके नाम हम करते हैं एकदम ब्रिजदा पहुंच जाए यार, मिलके सुनते हैं मामिन के जो ये गीत है, काफ़ी अच्छे गीत है, काफ़ी पुराने पुराने गीत है।
1: Malish, tell Malish.

ठीक है दोस्तों, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। अभी ब्रीदा की तरफ चला गया है और हमारा मुन्ना मामिन की तरफ चला गया है, जो सही जवाब को दिया और काफी अच्छा गाना को मांग किया मुन्ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और फैनदाख इधर सा एक फैनदाख वंश, अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, आप सुनते रहना। तो चलिए दोस्तों, वक्त कम है और काफ़ी लोग हैं, हम बहुत वक्त नहीं लेंगे। अब आप सब चून है द एफरग्रीन लव द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे चून है। तो चलिए, सही जवाब को भी दिया है, देखा जाए। भाई यूसुफ सतू सही जवाब को दिया है, लिखा है रेखन वातर। हाँ, रेखन रेखन है, वातर भी है, सही बात है भाई यूसुफ। और अपने प्यारे प्यारे माँ सुका के लिए मांग किया है, एक पुत्र बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। ए यूसुफ भाई, सच में पूजा करना यार, गाना मंगले तो पूजा भी करिए। ठीक, हम जान लो तू पूजा भी करे है, मामू है और यूसुफ मामू सच में पूजा करेंगे। चलो, सही जवाब को दिया है जही, गाने को मांगा है अपने प्यारे प्यारे माँ शुका के लिए।

जिया दोस्ता मर जाऊंगा यार मगर एक दूजा करूंगा, एक पुत्र बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। यूसुफ यूसुफ इब्बरक से अपने प्यारे प्यारे माँ शुका के लिए मांग किया था। जिया यूसुफ मामू आपका गीत आपके घर तक आपके प्यारे प्यारे माँ शुका के लिए चला चुका हूँ। चलिए दोस्तों हम प्रोग्राम को आगे लेते हैं, काफ़ी वक्त नहीं लेंगे। फुसकोतन शहर से शांता साहब जिस प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिए हैं और मांग किया है फिल्म केसरी के एक गाना, एक नए गाना है और क्या अच्छा अच्छा गाना है। जो भी गाना आप मांगते हैं अगर सही जवाब को दिया है, सही गाने को मांगने का आपका पूरा हक है। जो भी गाना आप चाहते हैं हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे, वादा करके वादा से नहीं मुड़ेंगे हम। इसलिए शांता को शांता साहब जी को हबीर ने सही जवाब को दिया है, कहते हैं रेखन। सच बात है, ऊपर से पानी आते हैं लेकिन नीचे से पानी ऊपर नहीं बरसते ना, सिर्फ ऊपर से नीचे बरसते पानी। यही था मेरा सवाल और सही जवाब दिया है। चलो हम ले चलते हैं इस गाने फोर्स कोतन की तरफ।

जी हाँ दोस्तों, क्या गाना है, इमोशन गाना है, और ये गाने सुनते ही जी बिगड़ जाते हैं। और क्या गाना मांग किया है शांता सर्ज कोहबीन ने फोर्स कोटन से, और सही जवाब दिया था। और क्या गाने को मांगा है कि दिल में ऐसे चोट लग जाती है। सब गाने जो है, क्या आवाज़ में गाया, क्या अंदाज में गाया है। ये आर्मी का गाना है जो मर चुका था और सच बात हुआ था। ये सच्ची कहानी है इंडिया का, और इसलिए इस गाने को गाया गया है। ठीक है, हम गाने को चल दिया था फोर्स को उतरने की तरफ। और देखा जाए तो हमारा बड़ा बहन दीदी जो है ब्रेदा से, बिश्ना दीदी जो ब्रेदा से प्रोग्राम को सुनते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, कहते बुरुच एक गाना हम लोग खतीन राय कर दे, और सही जवाब को दिया है। ज़रूर हम करेंगे, अगर जवाब सही है तो गाना भी सही होगा। दीदी जहाँ से प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पैच ऑफ। और हम एक बार सलाम करते हैं आपको भी, राम राम कहते नमस्कार, और सोनी सुहागरी का भी, वो भी साथ है। और हम चलाते हैं मेरा प्यार की उम्र हो इतनी जन्म। देखा जाए तो राज बब्बर, अमृता सिंह, सुमिता पटेल ने इसमें काम किया है, और लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह इस गाने को गाया है। म्यूजिक बजाया है उत्तम जगदीश ने, और लायरिक से वर्मा मलिक इसको हाथ और कमल हाथ और जो सिहाई चलाया गया है वो वर्मा मलिक है। तो लीजिए हम ब्रेदा के ओर चलते ही बिश्ना दीदी की तरफ, आपके नाम।

जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी थी, ये चला गया था बुरीदा की तरफ, जहाँ पे हमारा बड़ा बहन प्रोग्राम को सुनते ही सही जवाब को दिया है और मांग किया था मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। ठीक है दोस्तों, दीदी आपके नाम चला गया गाना। ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना, फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहना। आप लाइक करते हैं, हरदम कहते हैं बहुत अच्छा है भाई बुरुच, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी को हमारा राम राम कह देना, सुखर के भी हर एक सभी को हमारा नमस्कार राम राम कर देना। नाम फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से दोस्तों। चलो हम चलते हैं ईदन के तरफ, जहां से शकुंतला जी प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। और देखा जाए, देखिए तो कौन सी लिखे से, या पानी वाटर सही जवाब है। और मफरो शकुंतला सही जवाब है और मांग किया है, देखा जाए फिल्म मोहरा से एक गाना है और टिप टिप बरसा पानी, जिसमें अक्षय कुमार रवीना टंडन ने काम किया है। चलो हम सुनते हैं, आपको भी सुनाते, आपके घर तक जाते हैं, आपके कानों तक हम इस आवाज को लाते हैं।

0: टिप टिप बरसा पानी, अक्षय कुमार रविनाथ टंडन फिल्म मोहरा आल कायग्नी उदित नारायण की आवाज अभी सुने थे। इदम से सही जवाब दिया था शकुंतला। शकुंतला जी आपके नाम चला गया गाना गीत, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी प्रोग्राम को सुनते रहना, हमसे हमसे जरूर जुड़ा रहना, हम भी आपसे है, आप हमसे है, अगर आप है तो हम है, हम है तो आप है, और ऐसे हम लोगों चलतेंगे प्यार मोहब्बत से। मुफ्रो शकुंतला बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हम आगे चलते हैं। रॉय मंगली ने फरसुक किया था कि मेरे लिए एक गाना और चला दे। ठीक है रॉय मंगली, हम जरूर चलाएंगे, इतना प्यार से आप पूछते हैं मांगते हैं तो क्यों नहीं। आप फाहौन रेडियो को सुनते पसंद करते हैं, आप तो मेरे आदमी हैं सांबा, तो क्यों नहीं आपके नाम हम गाना करते हैं। ठीक है चलो देखते जाए, अभी ना जाऊँ छोड़कर, पद्मश्री मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज है। चलो हम देखते हैं म्यूजिक, जयदेव ने बजाया है, हम आपको सुनाते हैं मूवी हम दोनों ने लिखी थी एनन शस्त्र के। रॉय मंगली आपके नाम।
1: अभी न जाऊं छोड़ कर।

जी दोस्तों, ये गाना रॉय मंगली के नाम चलाया था और क्या गाना मांग किया है रॉय मंगली। इस फिल्म में देवानंद और शादना ने काम किया है, क्या अख्तियार किया है और क्या गाने को मांग किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हर एक को धन्यवाद देते जो जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, गाने को मांगते, सही जवाब को भी देते हैं। तो चलते हैं जर्मन की तरफ, जहाँ से सनी प्रोग्राम को सुनते हैं, ऐप पे क्या है, पानी पानी पानी है जो ऊपर से आता है और नीचे से नहीं जाता है, और मांग क्या है, एक पंजाबी गाना, तनी पंजाबी है यार, मैं निकला गड्डी लेके, जोनी दियोल और अमीषा पटेल, उदित राय ने इस गाने को गाया है और फिल्म गदर से निकाला हुआ गाना है। चलो भाई सनी, जर्मन की जर्मनी जर्मनी जर्मनी के नाम करते हैं, जहाँ से सनी प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं।

जहाँ जब से कमोर आया मैं उत्थ दिल छोड़ आया, हे तारा सिंह हे पुत्र पंजाबी पुत्र, जो शनि है वो भी पंजाब से आया है, पंजाबी पुत्र है और मांग किया था। मैं निकला गद्दी लेके फिल्म गदर के निकाला गाना है और सही जवाब को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हो भाई शनि जो आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तो हम चलते हैं जर्मन की तरफ जहाँ से ममता प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया सही जवाब को दिया है और मांग किया मेरा चांद मुझे आया है नजर, कुमार शानू की आवाज़।

0: जी हाँ दोस्तों, मेरा चांद मुझे आया है नजर, चला गया था जर्मन की तरफ, जहाँ ममता प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और सही जवाब को दिया है। यहाँ तक था हमारा जो फरमाइशे थे, अब हम अगले हफ्ते फरमाइश भी सुनाएंगे। काफ़ी लोग हैं जिसके फरमाइशें अभी मुझे सुनाना है, चलाना है। चलो हम चलते हैं न्यूज़ और कुछ रिक्लाम, उसके बाद हम सवाल करेंगे। एक नया सवाल है और हम जो भी सवाल के जवाब जानते हैं मुझे ऐप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐप का नंबर खुला है। तब तक के लिए हम चलते हैं न्यूज़ और रिक्लाम की तरफ।
1: अधिकारियों का तौर आन तराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar
5: Hindustani
4: Radio.
5: Radio Fahon. Digitale radio. Fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 euro nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: जैसे भी आप सुन रहे थे न्यूज और रेखलम। ठीक है दोस्तों, हम प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे, क्योंकि अब बेल और ऐप के प्रोग्राम अब नहीं चलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मुझे अभी सुनाना है। शुक्रवार के हम सुनाएंगे और नया सवाल है जो मैं अभी करूँगा। ठीक से सुनिए, ठीक से सुनिए, कान खुल के सुनिए, कुछ गलत ना सुनिए और ना सोचिए भी। ऐसा कौन सा चीज है दुनिया में जिसमें ढेर सारे होल है? सैन हेल फिल खातुन, बाकी इतना पानी पकड़ ले हुए है, जब होल बा जिसमें ढेर सारे तो पानी में ना पकड़ी सब तो नीचे गिर जाए। बाकी ऐसा कौन सा चीज है जिसमें ढेर सारी होल है लेकिन पानी बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं? कौन सी बात? एक बार फिर से हम पूछे पे, ऐसा कौन सी बा जिसमें ढेर के होल बा लेकिन इतना पानी पकड़ ले है कि बहुत बहुत सोच वाला बात है कि इतना होल है और इतना पानी पकड़ ले है, कौन सी बा? एकर अंतवर्त आज दे सके ध्यान दे सके सुख तलक दे सके और जे मुझे अंतवर्त दे ओके रेख्त बने है एगो गाना मांगे कतील ठीक है। तो चलो दोस्तों हम अपने तरफ से एक दो गाने आप लोग सुनाएंगे क्योंकि सरे 11 बजे मौत का खबर है, एक परिवार का मौत खबर है जो हमारा भाई गंगा उसे पढ़ेगा मौत खबर को आप लोग आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हम कुछ गाने आप लोग को सुनाना चाहते हैं, कुछ हिले मिले जिले गीत है जो हम आप लोग के साथ देंगे। पहला गाना जो हम लोग के सुनाते हैं यहाँ से, मैं पल दो पल का शायर हूँ, फिल्म कभी कभी की जिसमें अमिताभ बच्चन रेखा ने काम किया है और मुकेश की आवाज़ है हमारे प्यारे दोस्तों, मुकेश ने इस गाने को गाया है, सजा कर आवाज़ लेकर गाया है, म्यूजिक है कयामत और लाहिदिक से शरी लुफानसी जिसका लाहिदिक से जिसका कलम चलाया गया है बहुत अच्छी तरफ से इस गाने को लिखा है और कयामत इसका म्यूजिक बजाया है। चलो हम सब मिलके सुनते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ।

अच्छा दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मूवी कभी कभी, अमिताभ बच्चन रेखा इसमें काम किया है, सॉन्ग मुकेश। चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं उस जमाने में जब फिल्म ब्लैकमेल बना ले, ब्लैकमेल जिसमें धर्मेंद्र काम किया है, किशोर कुमार की आवाज है, पल पल दिल के पास, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है और किशोर कुमार ने इसे सजा करके आवाज क्या आवाज में गाया है, ये मैं आप लोग के भी सुनाने वाला हूँ। चलिए मिलके सुनते हैं।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो, क्या गाना है, क्या अंदाज में किशोर दा ने इस गाने को गाया है, और मूवी ब्लैकमेल जिसमें धर्मेंद्र रेखा ने काम किया है। चलो दोस्तों हमने चलते हैं, एक दिन बिक जाएगा माती के मोल, मुकेश की आवाज है, फिल्म धर्म करम, राज कपूर रेखा ने काम किया है। चलो हम देते हैं म्यूजिक एर दे बिरमन के है, मजरूत सुल्तानपुरी का लाइरिक से दोस्तों सुनते हैं। आप सब चुने थे एफ अगेन लव फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म धर्म क्रम से निकाला हुआ गाना है एक दिन बिक जाएगा माती के मोल, सच्ची बात कहाँ है, जिसमें राजकपूर रेखा ने काम किया। दोस्तों देखा जाए तो हमारा एक भाई है, भाई से बड़ा है भाई रूदी गोली, जो सही जवाब को दे दिया है जो सवाल मैंने भी किया था। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें ढेर सारे होल है लेकिन इतना पानी पकड़ ले हुए है कि हम मुँह न बताए पहले इतना होल में कैसे इतना पानी पकड़े। हम अब अंतर न देवे और भाई गोली ने इसको इसका जवाब दे चुका है और अगले सवाल को भी जवाब दिया था, रेखन हमने भूल गया था, इसलिए उसके लिए मैं एक गाना बोले अनिल बोले अपन कंधे से मांग एक गाना बचा दे अपन स्मक के। ठीक है भाई गोली, हम बहुत बहुत पसंद है आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके कि आप ऐसे लिखते हैं, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, इतना प्यार से सुनते हैं और इतना प्यार से मुझे ऐप करते हैं। मैं एक गाना सेलेक्ट कर लिया आपके खातिर, तो कहते हो गाना मुझे गाना रख लिए, हम सोचे लो कहते जोहर मुझे लगी मूवी जख्म जख्म जख्म नहीं खनती आख तक के सॉन्ग्स, गले में आ चांद निकला जिंगर आल का यग्नी। चल हम आपके नाम करते हैं भाई रूदी गोली और ऐसे ही सदा प्रोग्राम को सुनते हैं ना, हमारा तरीका चेंज कर को फार्मासी के एक मेंबर है जो आते हैं गाने के लिए, हमारा ग्रुप के हमारा ग्रुप के बाद हम लोगों ने ग्रुप के बाटी और काफ़ी अच्छा स्वभाव के है भाई रूदी, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, हर एक जो प्रोग्राम को सुना है सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ऐसे ही सुनते रहना द एफग्री लव फाउन हिंदुस्तानी दिल पे चुन रहना, हम लोग के प्रोग्राम सुनते रहना।

जी हाँ प्यारे दोस्तों, जी हाँ प्यारे दोस्तों, भाई रुधि गोली के नाम मैंने इस गाने को कर दिया है। उम्मीद है आप ज़रूर पसंद करते हैं, पसंद किया है भाई रुधि। और फिल्म जख्म का है, नई खनतीन आख्तन नई खन तक का है, जिस आपके नाम मैंने कर दिया था। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे। जैसे आप जानते हैं, 11:30 मौत की खबर पड़ा जाएगा एक परिवार का ही। इसलिए मैं एक दो गाने और चलाऊंगा, उसके बाद मौत की खबर है, उसके बाद हम फिर से प्रोग्राम चलाएंगे 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ है। आप सब जानते हैं जहां वो चला गया है, बहुत दूर के रास्ते है, हजारों मील लंबे रास्ते हैं, वहाँ से आज तक वापस आने के नाम नहीं लेते लोग, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे वो है, हम सब एक दिन वहीं पे जाएंगे दोस्तों। और अभी 11:30 उस परिवार का मौत की खबर पड़ा जाएगा, जो हम सब आपके दुख में है। अगर आप प्रोग्राम को सुनते हैं, हम सब आपके दुख में है, हम सब दुख में शामिल है, हम समझते हैं ये दुख। कोई के घर पे ना आए और आ गया तो हम लोगों ने यही मांग करते हैं भगवान से, आप लोग सहन शक्ति दे के इस दुख को आप सह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं चल अकेला मुकी इसकी आवाज़ में, और हम आप लोग के नाम करते हैं चल अकेला

जी हाँ दोस्तों, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला मुकेश का आवाज़ थे दोस्तों। हमने चलते ही एक आखिरी गाना भी, अब आखिरी वहाँ नहीं है, उसके बाद मौत की खबर का बात, हम आपसे फिर मिलेंगे।

जी हाँ हमारे प्यारे सुनने वाले, हम ले चलते हैं आपको मौत खबर की तरफ, जो हमारा भाई गंगा हमारा को लिखा। गंगा की सुबह से आप सुनेंगे मौत के समाचार, जो एक परिवार का है।

वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। सूरीनाम और नीदरलैंड से, सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन, परिवार बिरजा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई को सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में बेटा जीवन अधीन की माँ पतो इंदिरा की सास पोती अनवीती की आजी बेटी उषा की माँ दामाद अमर बिरजा के सास नाती और नातिन युवराज और वर्षा बिरजा के नानी नद्दमाद और नदपतो प्रशान और संगीता की ननिया सास दो लड़के की परनानी बेटी मालती की माँ नाती शायर की नानी देनहाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली बहन स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी सूरीनाम परमारिबो के रहने वाली मोहिनी महाराज जी अधीन कल्लू के स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर, जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस के नाम से भी जानते थे। सूरीनाम में अपने दिनों में वो खरीफीर थी। सूरीनाम में अर्थी आने वाला दिन जुलाई शाम 2 बजे सूरीनाम में सूरीनाम से तहत वेखनर से ही उदय राज सिंह वर्मा क्रमासी ओर्त में दाह क्रिया किया जाएगा।

सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन और परिवार बिरजा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में इंदलीफ एक्फन तुन तक यार बेटा जीवन अधीन की माँ पतो इंदिरा की सास पोतिन अनवीति की आजी बेटी उषा की माँ दामाद अमर बिरजा के सास नाती और नातिन युवराज और वर्षा के नानी नतदमाद और नतपतो प्रशांत और संगीता के ननिया सास दो लड़के की परनानी बेटी मालती की माँ नाती शायर के नानी दनहाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली बहन स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी सूरीनाम परमारिवो के रहने वाली मोहिनी महाराजी अधीन कल्लु का स्वर्गवास स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस

के नाम से जानते थे। अपने दिनों में वो सूरीनाम में खरीफीर थी। अर्थी आने वाला दिन दख एन तुंदख यूली को शाम 2 बजे सूरीनाम से तहत वखनर से ही समुद्र के किनारे उदयराज सिंह फर्मा क्रिमासी ओर्ट में दाह क्रिया किया जाएगा।

यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। सुनने वालों से निवेदन है कि ये खबर को और लोगों तक पहुँचा देने को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार गंगा, सभी परिवार अधीन और सभी परिवार गिरजा और बाकी परिवार को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला। मित्र समाचार जो हमारा भाई गंगा ने अभी उसके अपनी आवाज़ से पढ़ा है और उसके परिवार में दुख में हम सब शामिल है और यही मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, उसके हम सब शामिल है। जी हाँ दोस्तों, हम प्रोग्राम को आगे चलाते हैं और देखा जाए तो हम 20 मिनट और है हमारा तुम्हारा साथ और उसके बाद हम भी विदाई देंगे आपसे। आने और जाने के एक वक्त होता है और मैं मुझे भी जाना है अभी। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला। और यहाँ कहता है किसका रास्ता देखूं, किशोर दा की आवाज़ हम आपको सुनाएंगे। और किसका रास्ता देखूं, हर एक के रास्ता देखते हैं लेकिन आता नहीं, आएगा नहीं। महसूस कर सकते हैं जो चला गया है कि वो चला गया है लेकिन आएगा वापस लौट के नहीं। किसका रास्ता देखूं,

इसका रास्ता देखूं ऐ दिल ऐ सौदा। ये किशोर दा की आवाज़ अभी आप सुने थे जीवन ज्योति मूवी जीवन ज्योति से। तो चलो दोस्तों हम आगे चलते हैं, दो तीन नगमा और चलेगा और काफ़ी फरमाइशें हैं, काफ़ी मांग है जो हम फ्रेदाह आप लोग के सुनाऊँगा। और अब तब तक के लिए मुझे दो तीन गाना और आप लोग के तलक सुनाना है। हम चलते हैं, जो चला गया उसे भूल जा मूवी साथी नेकदीन अख्तन जस्त का गाना है। देखा जाए म्यूजिक है नवजात अली और लाइरिक्स कलम स्याही जो हाथ चलाया गया है मजरूत सुल्तानपुरी। चलो दोस्तों जो चला गया उसे छूल भूल जा मुकी इसकी आवाज़ आप लोग के हम सुनाते हैं। सुन के हम सब जरूर सोचते हैं जो चला गया उसे भूल जा।

जी हाँ दोस्तों, कुछ बात ऐसे हो चुकी है, कुछ देखा जाए तो कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम कुछ अंदाज में दूसरा गाना, दूसरे गीत में आप लोग के बीच करने वाला हूँ।

मौजो की डोली चली रही जीवन ज्योति मूवी। चलो आप लोग के लिए चलते हैं किशोर दा की आवाज़, फिर से किशोर दा और लता मंगेशकर की आवाज़, दो चोर नेगेटिव ट्वीन ज़ैफ़न तक का गाना है।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जदसो यहाँ तक थे हमारा तुम्हारा साथ, जैसे मैंने कहा था 8 बजे से 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे। यहाँ से मुझे विदाई दीजिए, शुक्रवार को फिर रहेंगे। यहाँ से हमारा कोलिखा द किंग द लायर आ चुका है, हमारा भाई जॉनी नंबर वन प्रोग्राम को लेंगे और आगे आप जॉनी नंबर वन से सुनेंगे। यहाँ से विदाई लेते हैं, बाय बाय, स्वाई स्वाई, फिर मिलेंगे शुक्रवार को।

अब तेरे दिल में हम फिल्म के नाम है आरजू अकायांगनी कुमार शानू और इस गीत फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित। दोस्तों जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होते हैं नजरों से पर उनके एहसास दिल के पास होते हैं। कुछ लवली प्यार भरी सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और परमाश्री मोहम्मद रफी का गीत है और नैतिगेल लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

और चला भी आजा रसिया, मन के आंखी फिल्म का नाम है। हमारे दोस्तों कहते हैं यू आप सॉरी कहकर हमें शर्मिंदा न किया करो, यू आप सॉरी कहकर हमें शर्मिंदा ना किया करो, हम तो बस आपकी है हमें यू गैर ना करा करो। तो कुछ शायर व शरी हो जाए हमारे सुनने वालों की, जन्नत में रहने वाली परी हो तुम, जन्नत में रहने वाली परी हो तुम, मेरी जान मेरी जिंदगी हो तुम, यारो मैं बैठ कर यू सोना चाहता है, मेरे जान वो कहीं नहीं होता है। तो कुछ प्यार भरी गीत आप लोग को हम सुनाते हैं, तो हम चलते हैं एक गीत का और, तेरा नाम लिया तुझको याद किया, फिल्म के नाम है झनकार, राम लखन और मनहर उदास, अरुणा पैरवाल का अनुराधा पौधवाल का ये सॉन्ग है यहां से।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहून की सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। अच्छा दोस्तों, इन अंतिम तक यूली हो चुका है मंगलवार की सुबह का प्रोग्राम, नहीं शाम का प्रोग्राम, यानी कि क्वार्टर ऊपर 12 हो चुका है। घड़ी की ओर देखा जाए अभी आप लोग सवेरे से सुबह से 8 बजे से 12 बजे तक हमारा कोलिखा साथी जो लंदूरक भाई जलान पे थे वो आ गया है, आपको सुबह यानी कि भजन प्रोग्राम से स्वागत किया है। और अभी 12 बजे तक चेन्नई में थे वो है अनिल जर्जू के प्रोग्राम, अभी आप लोग सुना है, अभी आपको हम यहां से देश और विदेश के समाचार को सुनाएंगे। 6 बजे ये समाचार को हम हर हाल करेंगे, कारण कि शाम को नौकरी पे जाना है तो हम लाइव नहीं रहेंगे, इसीलिए अब हम प्रोग्राम को लाइव प्रस्तुत करके और बना देते हैं, यानी कि शाम को 6 बजे आप सबके लिए हम चला सके।

तो दोस्तों हम एक ही दम बढ़ते हैं अपना समाचार की ओर, और हमारे नानी नाना मौजी मौसा जी आजा काका काकी सबके यहां से जॉनी के यानी कि प्यार अब तक पहुंचे हम चलते भैया एक बार ना 14 बार फिर 3 केरमेन से 14 बार हमारे यारो 14 बार यहाँ पे भैया चोर लोन चोरी करी से 14 बार उस सब जहल काटी से और निकर के आवे है तो फिर अपन धंधा चोरी के शुरू कर देवे भैया सलेर नीत अफ दुई आदमी भैया बताए गए है 14 बार फर और दिल करी से सिपाही ओके फर देंकिंग फॉर दीप स्टाल के बारे में इन्हें औतन वर्द फर मुडलक भैया इन बा इन इन ब्राक और राडिया तोर एर मेरदर अल्मुनियम अंदर दीलन आन खतरोफन और एगो फैफन दर तक यार के गो नीघन फिर तक यार कितना सोचे भैया लोन और नीमर है बदराई फना इस सब के काम है चोरी करके 14 दाई ये देखो कपड़ी भैया सिपाही के पकड़ चुकल है और बतावे हैगा सिर्फ यार में होते इनमें फिन एक पकड़ी से और बोले एगो मार्टिन लिकलन लुथर किंग वेक में पकड़े रहा तेन हुक तो फन अन बद्रेव मेदर स्मा के बारे में और इस सब के सिपाही 14 बार जहल काटी जाने पकड़ी से और फिर से 15 बार पकड़ाई गई है और बताए द फर दख्तर को द नीड फील आतर ऑफ द सेल्फ द वे फॉर द स्टाद द खाउदर बे दोर सुकिंग ओकर ओतो बे तरा दिया तोर पाई से कर कोफर बाग में अल्मुनियम पाई से अंदर तेल पाई से सब इसे चोरी कर ले रहा भैया तो बोले हैगा सेस फोनस ऑफ से नाम इन 8 keer veroordeeld beide zijn eerder schuldig bevonden. De mannen zijn overgebracht naar het politiebureau Houtenke. Bakkie Toejane, hoe heb ik haar tikse jahalhal mile he. Dus deze mensen leren zich nooit af, mensen. तो 14 बार ई अदमियन के दुगो की सिपाही पकड़ी से और इस सब तरी मनी बन हुए निकल जा फिर शुरू कर दे वही कमवा कर खम जाए भैया मारेंगो के ओर मारेंगो के ओर तो ये बात बोलिए जोनी मारेंगो को मारेंगो बोले ट्रैक ऑन बरे एक बार ख्रोंदन इन एंड हीव द मेंशन बाउ रही पखरोंदन बोलेगा जितना ख्रोंदन है बोले जोन जोन ऑन बरे एक बार जे पर आदमी काम ना करे जंगल बोले सब इन ट्रैकर एनडीपी के पार्लियामेंटारियन रहेगा माइकल मोरेंगो बोले है रखेरिंग के बोले हैगा अफखलोपन यारन बोले बीते हुए सालों में जितना पर्सील बोले सबन बाटी से जहां पे जंगल है स्वाम्पू है बोले सब इन ट्रैकर फॉर फेलेंस इन ऑन बार एक बार बोले हुआ तो ना जाई पाइए है दो दारों बरूप बोले उस सब जगह ये स्वाम्पू जंगल हूँ बड़े एक बार ना है और बोले चाहेगा खी बी बी के और देश खरोड़ लीफर बोले इन ट्रैक कर ले और बोले इन रेल दार फोर खरोंदन ऐते खी फवार में से वेल द मोगलक है इधर बन और डायरेक्ट बोवन बोले स्वाम्पू जंगल तो आदमी के बांध डेले बाटे और बोले हुआ आदमी जा ही ना पावे बोले ओके इन ट्रैक करके बोले उस सब के साथ बोले दूसरा जगह दे जहाँ पे आदमी अपन घर द्वार बनाई सके है बोले इंटेंटिविजेर ऐ एक्त बोखरोंदन फॉर मेंशन वार से एक कुनन खान बोवन बोले दत लातन दत दून से मोरिंगो इंटरव्यू में बताई से और बोले है ही अन रीगल मातक में योगन तो स्प्रेकन दी एम पर्सील है बन तू कवीशन गक्रीक है फॉर फॉर फर्स्किलन लांड मीटर है बनादर मा नरकंस द मनोदक हेल्प क्राइकन तो एक बारे में बोले है जनता अन ई भैया बोले है ओम रेल करो के और ये पार्लियामेंटारी बोले हैगा दैसन द हजार गो जगह है बोले हिलास इस हिल खरो दिल फन खरोंतन अफकलोपन यारन से uitgegeven maar nog steeds niet ontwikkeld hij pleit ervoor dat er goed voor onderzoek moet worden alvorens gronden worden uitgegeven hij vindt het daarom goed dat de huidige regering aan de andere kant gestart is met een woningbouwproject और ये बात बोले मोरेंगो दोस्तों तो हम और आगे जाते हैं
अपना समाचार की ओर। भैया गायाना में एक बोट बुड़ल है हमारी जनता, गायाना में एक बोट बुड़ल है। हाँ फिर बहुत प्रेम गायाना तीन तालन फरमेश न सिंकन फन एम फी बा रीमा के बातचीत हुए है हमारे जनता, हमारे सुनने वालों, हमारे प्यारे प्यारे जनता। बोट बुड़ल है भैया गायाना में, तो यहाँ बतावे गए है शनिचर और अतवार के रात के एगो पशाशीर्ष फेर बहुत है एम फी बारीमा रात के बुड़ल है रेडिस वेरकन से मसाल इन से तरवेल तीन तालन और फारन दन नौख वार्दन फरमेश जेक लाइक से बना पाई से सातरदाग मेदाग के क्वाट ओवर थ्री जॉर्ज टोन में बोले हैगा मेर बस्टेमिंग naar Port Kaituma mee, het noordwesten van Guyana. Aan de boot bevonden zich volgens de autoriteiten 116 passagiers, 17 kamkarten, over totaal 133 admiraal, 11 bij raad ke i boot boedel hai, aur bolega सब खोजे है रेडिंग्स ऑपरेशन भइल हैगा बोले जेमा सेफनन सस्तक आदमी बोले है पर्सन लीफन एडेड वादर खरे सेफनन सस्तक आदमी के लीफन मिल गए है अंदर वी किंदरन के भी पाई से फॉर द ओवरक ऑफ फारन वर्ड नो खसो बोले द सुक एक्सिस टेरक्स आउट ओवर गबीत फॉर मोर देन 1000 4,000 किलोमीटर में सबन ओके खोजे है बोट खोजे है फ्लिक्टाइट खोजे हेलीकॉप्टर्स खोजे डाइकर्स खोजे है हेल फॉर फिशर्स एंड पर्टिकुलर फॉर टाइकन सब गले सब के खोजे है फॉल्सन गायाना के अथॉरिटी इतन हुआ बोले हैगा बोले फेल एक्सरसाइज मिडलन वार अंडर ऑन कफे 52 रेडिंग्स फेस्टन एंड मेरदर रेडिंग स्लोटन द एग्जैक्ट ओरसाक फॉर द सिंकन एयर बिना बरेक है अन बकेंट है अब बोले हैगा getijd omstandigheden juist zijn van de passagierslijst en mogelijke nalatigheid. De kapitein en enkele bemanningsleden zijn aangehouden voor verhoor. Volgens de autoriteit testen de kapiteinen en de eerste machine positief op marijuana. John Botia Chalau trouwens op Gaja Pilera Bhaya sabke eerste test pe milal hai. Overleden de spreker van angstige taferelen. Velen brachten uren door in het water voordat ze werden gered, terwijl familieleden wanhopig wachten op nieuws over de vermiste dierbaren. Op de Guyana-regering wordt toegewezen een diepgaande onderzoek instellen naar de ramp. Premier Mark Phillips, minister van OW, Euro, is het verklaard gekregen dat iedereen die verantwoordelijk blijkt te zijn voor de nalatigheid of overtredingen ter verantwoording zal worden geroepen. Op de kapitein Lungaja Ajapi और चलावत राबोटिया भैया एक बारे में सरनाम जो है मेदलीफ बताई करी से गायाना के और बोले है ब्यूरलान गायाना इस कप्स एस में पसाचीज एवं मानस लेडन अनबोर्ड में से और बोले एक बारे में मिनिस्टर बाउफा बैतलांस साक के और हंडल इंडस्ट्री के बोले गायाना के अमतनार स्कूल हिंदू तोत के भविष्यवाण हीर बै नोडिक अंडरस्टैंडिंग टू हवेजन तो बड़ा दुख के बात है कि इतना जनता गायाना में पानी में बुड़ के मर गए है बहुत अफसोस के बात है मारे एक फिर जो एरक मेंस दादी कैप्टन सो फिल मेंस aan boord hadden en dan gaat ze nog met marijuana rokende oezebe chich geel he kare bhaiya sarnaam me eind examen ke tijd he aur eind examen uitstel hoige bhai uitstel hoige he school me omdat fuck leerkrachten na hai bhai bara dukh ke baat hu he eind examen jo school ke he bole tekort aan fuck leerkrachten और बोले हैगा उस सबके चाहे अष्टस्थालक जो लेस चाहे अफरोंद करे के एंड एग्जाम जो है बोले लात्र मोमेंट पे हुई और ये बात हुए है खमीस का मोंगो टापू के
eindexamenkandidaten nog bezig met lessen voor het vak adreskunde. De school heeft pas onlangs een leerkracht gevonden die bereid is de leerlingen te begeleiden. We hebben niet zo lang geleden een collega gehad, gevonden om de kinderen te helpen, mensen. De Jebi Socho Suriname, die is mee. Eindexamen, Junhe, Aruk Hasakgeheer. Omdat tekort aan vakleerkrachten, mensen. Oh ja, wat hij bij honderden geloven kan, bhaiya, toen je aan het Krishna Janam Astami hai. Aur Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Yahan pe resideer kare hai. Sawan go gelovigen.

संग दखल ओफक भैया हिया बताए गए है हमारे मौसी लोन बतावे अतवार के रेस फॉर सीर द कार एगो कार है सब फॉर सील कर ले रहा श्री जगन्नाथ श्री बालादेव एन श्री सुभद्रा जी दूर दस्त्राफन कसाबा होलो में और बोले है रथ यात्रा रहा बेहतर बकेन आस्कार फेस्टिवल वेर फॉर द एल्फ द केर इन सुरीनाम गहोदन तो उसे खूब मोई से रथ यात्रा रथ फरसीर करके और श्री जगन्नाथ के श्री बालादेव ए श्री सुभद्रा जी के ओमा धर के अवसर यद रथ यात्रा निकाली से और बोले द डेल नेम इज लेफ्ट द रूट जो 5 किलोमीटर से बन गया एन बस टाइमिंग रहा इस्कॉन खबाओ जो द इंटरनेशनल सोसाइट फॉर कृष्णा कॉन्सनेस इन वेलखली लेकिन मेंसे हुआ वेल खलीखन के हुक पे हम जाने ला और उस सब खाई को एक सब बांटे भैया तुलन जानो है ये हैगा इस्कॉन के हरे रामा हरे कृष्णा के और बोले दार वेर्डर बिल्डर फन द्री खोदन बोले फेस्टिक फॉर वेलकम मेट खबीदन फन द फीड वर्क शो एन ब्लूमन हिल वार बे फनाइट एन हेस्क्रार ब्लूमन ओवर द हॉट हेडन वर्डन uitgestrooid mensen dat is zeker heel heel mooi de eeuwen oude traditie uit India die inmiddels taal van landen dunia bhar pe hui ge hai aur 2016 mein Suriname mein bhi hui ge hai aur bole sab gana bhajan kare hai nache hai aur bole prasad baate hai offer kare van voedsel dat binnen in de hinduisme als gezegend wordt beschouwd uitgedeeld aan de deelnemers en omstanders sabke सब बांटे है हमारी जनता और रथ यात्रा इतना समारोह के साथ में सब निकारी से एगो ग्रुप स्टर्क यंगर मानन दी ग्रोस्ट डील फॉर द कार वर्ट्रोकन नामन ओक अंदर गेलोवकन ओम बूर्टन प्लस अन द डिक

दोस्तों एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, तो पूरा घंटा हमारा हो चुका। तो हम जाते हैं भैया एक दुख भरी समाचार यहाँ पे। बहिन बिचारी गुजर गए सुरीनाम देश में और सब गए उसका मट्टी लेने को मर्तेवारियों में। तो बहुत दुख की बात है, जब उसका लाश वहाँ से लेकर अब जाना चाहते थे लोग, बस उसके भाई जो है, उसके भाई भैया ग्लेन जो है इस्तीदार नाम लिखा सख्त में से गिर गए वहाँ पर सख्त में से दूर खाई नतीलक। अब जैसे ओके एम्बुलेंस पे ले गए है, एम्बुलेंस आयल है, तो ब्लैक भाई के ओकर भाई भी गुजर गए भैया। तो अब जब भाई भी मर गए और बहन तो मर गए रहा, तो ओकर लाइक रानू के फिन सफर मारतवारियो में धर दे से, कारण कि अब वो जा ही ना सके है, भाई भी गुजर गए है, तो फैमिली बहुत दुख में है। बोले साहब बस लो तन ओम द इरफान फॉर रानू एंड ग्लेन लातर दी से भी खसाम लगते हौदन परिवार की। ये परिवार जो जिसमें जिसके घर में इतना बड़ा दुख है, रेडियो फाहन के तमाम टीम आपके दुख में शामिल है फैमिली। तो ये बात है ईरान में भैया और अमेरिका के लड़ाई हुए देर तक, दो दिन अमेरिका से अनफॉलन में से और ये बातचीत हो रहा है। ईरान और अमेरिका के लड़ाइया बहुत जबर है दोस्तों, कब इमोई हुई भाई पता ना है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। अब देखो भाई देना बहंदल काल्पनिक वैत ओम क्रिमिनल फरमोखन अफ्त पकन देना बहंदल करे है, जितना आदमी क्रिमिनल से पैसा बनाई से सन्नाम में सब चाहिए उस सबके बसलाख करे के है वैत फोर्स तेल मुद ओफर है मेल मोकल कहीं इवन ओम फरमोखन दौर क्रिमिनलिटेट इस फरक्रेकन अफ्तनीमन ओन खदाख वार है शेख बफिन। बोले एक बारे में एनडीपी के बोले इंग्रिड कार्ता बिंग बोले फोर दिल रपर्ट्यूस बोले बाकी भैया इबतिया तो हम में टड़ी डड़े लगे वैत निकारिम इस टप्ला से मैं वैतवा तुलन चलाई पर यो मिस दाद खर्चलन मेरकन किस तरह बार हंदलन निटलोन द फर ओर दिल खान व काल प्लिकन से कार्ता ब्रिंग ते द बहंदलिंग और बोले फॉल्स कमीसी बिद द हैडिक वैतकेवी अनफोल्डोन द फर मुकलकहेड फोर्स इन एन सिस्टमैटिक फाइनेंशियल इतना ढेर ड्रग्स डीलर्स भैया इतना ढेर आदमी क्रिमिनलिटी से धनी भइल है। देखियो कितना भारी भारी घर है भैया हाँ सुरीनाम में और ओकल गए जइयो भैया तो के सुना दे एक दस बजार 10,000 15,000 डाला जितना सकवड़ हैगा सब वही बिल में घुस जाए जहां से निकल रहा। सुरीनाम के करप्शन के बारे में हैप्पी खीन हुई वोट में से वन सुरीनाम में हैवस करप्शन वेत नामलिक एंटी करप्शन वेखदार मा है वेर खीन मीटर में से जुड़ वेत अलमाल हू एन वाट इट इस ओवर वन द ग्रोटे क्रिप्टलिंगर वाट इट इस दी हैव यू ओवरऑल इन सुरीनाम। टॉट वंडाग हैव यू गेन एन वन से इन द अखतर द ट्राली गेजीन मेंसे दिस आई हैव नेचुरली गेन गुड वर्ड एर वन। मनोरथ बोले है यूसीसी फरलिस खीन ग्रिप ऑफ फेलक मनोरथ बोले यूसीसी फरलिस खीन ग्रिप ऑफ फेलक है। तो भैया मनोरथ जोन हनीस मनोरथ बोले है बोले ग्रिप ना लाज भाई वो ही के आदमी लोन इतना चोरी करे है भैया ओकर बतिया बितरे हम ना बताई सुंदर फॉर हो के वन मिनिमम लोन बीट ब्रोकमास वेन फॉर लिफ्टिंग मिनिमम लोन वा समान चढ़ाई से सलाम में 2 years 5 to 47 ना 61 to 25 41 से मिनिमम लोन वा सलाम में चढ़ी का आदमी लोग के मैं बोले एक को फॉर लिफ्टिंग ना देखा अब इफर हुकिंग वाक बारे में सुंदर बोले हैगा हमारे जनता खैर फ्लाइट के सिपाही पुलिसी गायाना के भैया ना खैर फ्लाइट के गायाना के सिपाही पकड़ी से आसीसी भैया बसलाख जो सुरीनाम से वास्कस मोकल दर गायाना आसीसी गैला सरनाम से गायाना में तो हुआ पकड़ा ने इन 20 ग्राम फरमुडलक आसीसी हैवन आन खतरोफन इंसेंट क्लीडिंग द फरदाख्त वास कोरदार फॉर पेस्पीड बूथ सुरीनाम खारिफेर Volgens de politie vond de ontdekking plaats bij de quarantaine Berwisch mee.
तो नो है क्या स्प्रिंगलैंड में दोस्तों, तो यहाँ पे बताया है वाशिंगटन, पाकिस्तान, कतार, इजिप्त मांगे है क्या बमेदल करे फिनोस्टाक फिर जो अमेरिका से फेस और ईरान से हुए, बोले 10 रोज के चीज बंद कर, बोले एक बारे में हम लोग बतियाइया। तो 3 देश बोले पाकिस्तान, कतार और इजिप्त बोले है स्टाक हेड फिर फॉर 3 दिन तो वर्कस्टेलिंग जैसे ईरान एंड अमेरिका। न्यू साइड बोले हैगा बोले अनोनिम ब्रॉन्स आयले चिजुआ बोले अफकूलिंग प्रयोग तेजन जैसे प्रयोग सऊदन लंदन फेरदन मुते प्रातन ओवर द परमानेंट अकॉर्ड अमेरिका सऊदन फोर्स्टेल ओवर वीकन दत voorzitter heropening van de straat van Hormuz, maar er is er ook rekening mee houden dat de onderhandelingen mislukken. Het alternatief is een verdere escalatie van de oorlog in samenwerking met Israël. Bolle de Amerikaanse president Donald Trump zou nog geen keuze hebben gemaakt. VS stuurde de afgelopen dagen om grote schaal tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio en ook Israëlse leger bereid zich voor op een nieuwe uitbreiding van een conflict. तो ये बात है भैया, और रूसलैंड हुआ पे इंग्लैंड के मोंडिंग पे सबन उफन करे के शुरू करी से और रूसी से मारीनेस के भीव इन हीव एन आर्टिलर उफनिंग खदान फॉर द ब्रिस कस्ट। और बोले हैगा ब्रिस मिनिस्टर फॉर डिफेंसी बोले है स्किप वेर स्कैड्यू डू द ब्रिस मारनीर बोले है स्किप फूड जोन 40 Notice een mijl 74 kilometer ten zuiden van de Zuid-Engelse staat Bollega Plymouth tijdens de oefening. Die zou 30 minuten duren. Het gebeurde niet in de territoriale watering van een Amerikaan. Ik kan maar mee. Engeland Bollega. Kijk je wat kijzen. Hij kijzen na. Ik ouder bij jij kijken een bos. Brug pas ik goed gehega. Politie. Vind lege fles gramazoon in de auto. Blijkbaar je hoort je gramazoon wat pieken te koedelen. Ja, je hebt zekerheid hoe maar jij. Ik hoort het atwaarke. Weidenbosbrug maar ze. Gramazoon pieken hoe goed je hebt. 4:45 in de ochtend mensen. Een bericht bij zeggen. School toe ik er waar niet mee. Toen betekent hij dat voertuigen stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurszijde. Uit het voertuig. Ze rende vervolgens naar de vangrail voordat hij kon aanspreken. Zag hij dat zij zich achterover liet vallen en van de brug sprong. De getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw afhankelijk in de richting van de havenbeheer probeerde nog te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween zijn echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. De 32-jarige, ik ouderd heb, ja, John Marge natuurlijk, de Tugirgele Bate. Bolle passagiers zeiden ze, lege flesmiddel hega, gramazoon keer. तो ये बातचीत है हमारी प्यारी प्यारी जनता।

इसी गीत से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरिया।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: तो आज हम आप लोग को पूरा एक घंटा कुछ हिंदी रिमिक्स सॉन्ग भी सुनाएंगे और बीच बीच में और कुछ सुनाएंगे। आओ चला जाए, सुना जाए ये कौन सा गीत है।

और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर तुम लगती हो, के बाद समझाते हैं कि मेरे नसीब में क्या है यारो।

थी नहीं दोस्तों, कुछ रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को भी सुनाएंगे। ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक्स में कैसे लोग गाए हैं और मिसी को बजाए हैं, तो हम और अगला गीत की ओर चलते हैं।

0: पुष्पेंद्र इटावा।
1: और दोस्तों रीमेक सॉन्ग के मूड में आज है, तो हम चलते हैं तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। और अरे भैया तू तू है वही जो वही दिल से जिसे अपना कहा। तो ये गीत तो हम प्लेयर पे रख चुके थे, लेकिन अब पता है कि कुछ और चलेंगे। जैसे हमने यहाँ देखते हैं कि ये गीत में कुछ तरी से कुछ आ गया है, लेकिन हम जहाँ काम होता है वहाँ तो कुछ होता है। सुना जाए।
2: 0 8 9 5।
3: हेलो,
2: अकेले हो? दोस्ती करोगे?

जिसे अपना कहा हमारे यारो और कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को ये घंटा हम सुनाएंगे। तो यारो इसके बाद हम चलते हैं एक और दिए यानी कि रीमेक सॉन्ग की ओर।

0: ठाणी बाजार, ठाणी बाजार, ठाणी बाजार, ठाणी बाजार।
1: और उड़नी उड़ के जनचियो तो माँ कुछ और मजा है कि सजना है मुझे।

औड़ी जो भी हो दोस्तों, आंची आपको झुमाएंगे और नचाएंगे भी हम और जगाएंगे भी हम।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए, हम यार है तुम्हारा कि यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ दोस्तों, हम यार है तुम्हारे।

प्यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों। उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहरी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में, तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों। हर एक फिल्म में उसका गीत होता था, लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलीला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी बोल उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

जा रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। पप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज में आप सॉन्ग सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ, लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, happy station Fahorn Hindustan Radio, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, मैं सोचता हूँ दुनिया में हर एक इंसान को धोखा जो एक बार होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान धोखा दुनिया में जरूर एक बार खाया होगा। तो एस डी बर्मन का सॉन्ग है, रजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार रजेश खन्ना, उन दोनों में एक रजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से यहाँ पर फिल्म पेश करते थे। अब मुमताज जब वो कदम रखा फिल्मी दुनिया में, तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता, लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था, सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरे अलहदा तरह के फिल्म है। फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में। रजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था।

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाजों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, यह पागल रखा, पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को, तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया, जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा जाओ किशोरदा से बातचीत करो कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के, तो किशोर कुमार ने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्रा से कहा, जितेंद्रा 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दो। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता है, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तो ही माल जैसे तो चाहता है एंकल तो ही माल फिर दर्शन आंख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ में आप सुनेंगे।

खुशनुमा पति है फरियाद करने वाले और अपनी जिंदगानी बर्बाद करने वाले नालों से खुश दिलों को नाशाद करने वाले माशूक बेवफा को वो याद करने वाले मैं भी तेरे साथ क्यों क्यों रचूंगी मैं भी तेरे साथ क्यों क्यों रचूंगी

नगर नगर और डगर डगर इश्क की आग लगाती चली। मेरा देश गयो, मेरा पेश गयो, मेरा चैन गयो, मेरी नींद गई। मत तो इश्क की आग मैं पूरी जली और दिन की बीनी को कांधे धरी। कल में कि भभूति को मुंह पे मली और तौबे की चुंबी को हाथ मिली। यही कहती चली मैं तुझसे मिलूंगी

गुड़िया में हर किए की मैंने सजा उठा ली, आकाश की नजर कुछ अंजाम पर न डाली। अब क्या मैं हुई हूँ दर पर तेरे सवारी, डबाली और क्या अब भी रहेगा खाली। चालो

सिवा किसी की तब मुझको जुस्तजू है, हर दम मेरी जबां पर तेरे ही गुफ्तगू है। हो जाएगी वो पूरी जो मेरी आरज़ू है, तुझसे ही मांगने में अब मेरी आबरू है। चाले से अब मैं

दरबार सुस्ता पाकर क्या जाऊँ हाथ खाली, मायूस हो हवा कर क्या जाऊँ हाथ खाली, अब शेर दर पे आकर क्या जाऊँ हाथ खाली, उम्मीद दिल में लाकर क्या जाऊँ हाथ खाली, अपनी मुरादें लेके चलूंगी

भारत बशर की बिगड़ी हुई बलाई बट्टी हथेर दर से मफलूक को भलाई अब मजेब कुदरत आशान किबरियाई किस्मत से हो गई है दर्शक तेरे रिसाई खाली नहीं तेरे दर्शक फिरूंगी खाली नहीं तेरे दर्शक फिरूंगी।

रसूल अपना रसूल मदनी हिजर में आपके हैं अब तो मेरे जी पे बनी जेरुआ भेष किया तन से रवाई है भभूत ढूंढने निकली हूँ मैं डाल गले में कफनी।

वही लोगों की शिरकत है, वही तर्ज़े अदालत है, वही रंगे मोहब्बत है, वही अगली जिहालत है, वही हर गम की सोबत

दो घड़ी के वास्ते हैरत में खो जाता है वो, तू खुदा जाने एकाएक नर में हो जाता है वो। इस संभल कर बोला है नादान, तुझको खौफ क्या, उस बयानी से तू क्या पढ़ती थी मुझको भी बता। भाई के इकरार पर बोली कलामुल्लाह था, मैं मुसलमान हो गई, इस्लाम में मुझको भाग गया। बेजरर और आंख कुरानी को लाई निकाल, भाई ने देखा नजर से दीन अहमद का कमाल, अपने दी तौफीक उसके दिल की आंखें

करके हो के तायर पहुँचे जब हजरत के पास, हम जलीसाने मोहम्मद को हुआ पैदा हिरात, खौफ था सबको न पहुँचाए मोहम्मद को जरर, अब गए शमशीर पर हर एक ने डाली नजर। आपने फरमाया हंस कर आओ ऐ भाई उमर, हर तरह तैयार हूँ मेरी जरूरत हो अगर, कोसा देकर पाए हजरत को उमर ने ये कहा, मैं मुसलमान होने आया।

से देखा उसने कलमा पढ़ लिया, खौफ था बेदीन से जितना वो सारा मिट गया। बोले फिर हजरत उमर दीजिए अजाया आवाज से, आज ही आगाह हो जाए हर इस्लाम से, कुछ फिकर है आज से इस्लाम का हामी उमर, आज से है खास पैगंबर का पैगामी उमर। मोहम्मद मुस्तफा के नाम में बाला वो पत्थर है अंजुम मर्तबा इस्लाम का, इससे एक मौजूद नुमा

यात्रा में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ चटनी सॉन्ग, तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए, क्या बात है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग। सर तो तैयारियां कर दिया है, उतार के बिग दिया है दोस्तों। डांस कर रहा, लेट्स डांस।

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ, साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नादिया सिंह, दोनों के आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

आपकी बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग सॉन्ग फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहरी सीवन सेस्ट के बात है जब ये सिनांदिस आया और उसी समय पर एक बार बना था जिसे पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पता पता।

को गिराते हो किस लिए, जिले को मुझसे आँख चुराते हो किस लिए, अब हसरतों का खून बहाते हो किस लिए, पहलू से उठ के तुम चले जाते हो किस लिए, मेरे हाथ

कर चले हाँ खुला कर चले रे खुला कर चले हाँ खुला कर चले नानी गाहे चुला।

फरमाया खुद को परवाह नहीं गम की हो कोई या खुश दी से दम नहीं ये तेरे सारे कातिल निगह लाल से हर एक हुआ है बिस्मिल डाल से अपनी मैशन बपा कर चले दिल की नानी गाह हाथ ला कर

अच्छा न किया आपने अच्छा न हुआ मैं। अब जब कहा ढूंढ जब उल्फत की दवा मैं, क्यों कर न सहज पीलू सितम गार बता मैं, रस में उल्फत

मोहब्बत में जान खोता हूँ, दिल के अरमान किसी के न निकलते देखा, जिसको देखा कफे अफसोस ही मलते देखा, मुफ्त में जा।

इसमें एक फरहाद ने जान अपनी गवाई इसमें, इश्क ने कर दिया हर सैकड़ों घर को वीरा, रस्म उल्फत का निभाना नहीं जाकिर रास, सोची अगर है दा।

मुझको ये शर्मी आई के शर्मा के पी गया।

फाफ और हिल स्टाइल जो पर आप चुन है दोस्तों, और मिस्टर सानू टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू पद्मश्री कुमार सानू नेखजी सीफ ने तख तक में शुरुआत किया है गीत गाने को, और ये लगभग 1000 डिवीजन से ज़्यादा गाना ये गाया है, और इसका एक न्यू सॉन्ग है यार तुई जैसी फिर तक में ये सॉन्ग गाया है, और लगभग ये गीत एक महीना पुराना है। तो एक डुएट है मिस कुमार सानू और साथ ही साथ सर भरीस दोनों के साथ ये गीत, दोनों के आवाज़ों में, दोनों की मीठी आवाज़ों में आप ये गीत सुनेंगे, मिस्टर सानू एंड सर भरीस।

तुम्हें देते एक और रोमांटिक हॉट सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ, मिस्टर सानू और साधना सरगम दोनों के आवाज में आप सुनेंगे। कुमार सानू दोस्तों एक सांगर एक कलाकार है जो 5 साल लगातार अवार्ड पाया, ट्वेडिशन नहीं नहीं नीखंती इन नीखंतक से लेकर फैफन नीखंत लोग 5 साल लगातार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और बात यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी है, इसलिए कि एक

कुमार सानू एंड साधना सरगम, आज आप चांदनी हो और तू मेरे साथ हो। उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण। उदित नारायण ने लगभग 67 तक दर्जन गाना गाया है दोस्तों, और 36 तक भाषा ताल में। आप जानते हैं इंडिया में लगभग 415 ताल है, भाषा है। तो उदित नारायण ने 67 तक 36 भाषा में अपन गीत पेश किया है, और सब गीत में से एक गीत है, ये एक नया सॉन्ग है, एक दो महीना पुरानी है दोस्तों, और गाना के बोल है इंडिया से आया हो। उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण के आवाज़ में आपने।

एंड सो और उदित नारायण के साथ साथ ये द्वैत आपने सुना। और दोस्तों मित्रा जी, डालिया मित्रा जी ने उदित नारायण के साथ ये द्वैत पेश किया आप सभी के लिए। उदित नारायण ने ही तक ने शुरुआत किया गाना गाने के और लगभग 14 ऑन द स्काई देंगे उदित नारायण के मिला। एक नया सॉन्ग और मैं चॉइस करके रखा उदित नारायण का। मैं सोचता हूँ कि ये गीत फिल्मों में अभी नहीं आया या फिल्मों में नहीं आएगा। मिस्टर उदित नारायण या पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में आप सुनेंगे।

माफी, कल तो छोड़ दूंगा, कल जब आएगा तो देखा जाएगा दोस्तों, कल आएगा तो देखा जाएगा। मिस्टर सानू, पद्मश्री मिस्टर सानू को, नहीं नहीं सानू नहीं, उदित नारायण होना चाहिए। माफी किए दोस्तों, आपसे माफी चाहता हूँ। उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण के आवाज में एक और सॉन्ग आप सुनेंगे, थोड़ा वक्त और।

उदित नारायण के बाद में भी आप गीत को सुने। श्रिया घोषाल, श्रिया घोषाल कई तरह के गीत भी गाया है दोस्तों। और श्रिया घोषाल जब 6 साल के था तभी से ये म्यूजिक में, म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और आज तलुक के म्यूजिक की दुनिया में है। शुरुआत किया अपन सॉन्ग से तुई दर्शन तुई में, और कई तरह से इन्हें लोग अजमायर किए, एक गायकी निकलेंगे। फिर भी जाकर सारे गामा पा का प्रोग्राम में इन्हें लोग टेस्ट किया और पता लगा कि ये प्लेबैक सिंगर का काबिल है। तो श्रिया घोषाल और साथ ही साथ शकील फर्नांडस दोनों की आवाज़ में आप एक गीत सुनेंगे।

सिया साल का न्यू सॉन्ग दोस्तों जैकलिन फर्नांडिस के साथ अभी आपने सुना। एक दूसरा गीत और है साध लॉन्जेरेड गुली माटा। ये एक अरबी मिक्स, इंडियन अरबी मिक्स आप सुनेंगे।

0: I love you.
1: Diafa 2023 Saad Nam Jarat performing Guli Mata song abhi aap sune the Afrika Happy Station Fahon Hindustani Radio aur aap sune program Gito ka Sangam Sonu Nigam Padma Shri Sonu Nigam aur ek baar phir Shriya Ghoshal dono ki meethi awazon mein कुछ कहा अपने मूवी का नाम है सॉन्ग का बोल है पहले ना देखता था यू मेरा दिल

सोनू निगम एंड श्रिया घोषाल दोनों के मीठी आवाज में इस सॉन्ग आप सुन रहे थे। सोनू निगम दोस्तों, सोनू निगम प्रोग्राम आज और कल में लगभग 100, जी हाँ दोस्तों 100 गाना रिकॉर्ड किया है पद्मश्री स्वर्गीय पद्मश्री मोहम्मद रफी का। और वैसे तो सोनू निगम गजल क्लासिक भजन और 13 भाषा में भी अपन गीत पेश किया है। एक बार फिर मिस्टर सोनू निगम या पद्मश्री सोनू निगम के आवाज में आप गीत सुनेंगे।

जाओ या जीलो जरा। दोस्तों आपकी बार सोनू निगम एक बार फिर, लेकिन उसका साथ देंगी अलका याग्निक। बिन अलका के दोस्तों ये गीत संगीत जो है इन दिनों में भी पूरी नहीं होते हैं। और अलका याग्निक एक गायकी है जो 3000 से ज़्यादा सॉन्ग पेश किया है। तो मेरी मोहब्बत का जाने क्या होता है, मेरी मोहब्बत को क्या जाने क्या होता है, सोनू एंड

ओहो जब तू मेरा नाम ना हमारा नाम ना जाने। एक बार फिर कहते हैं जॉनी है हमारा नाम और सॉन्ग है रामदेव चैतू का। आते हॉट सॉन्ग मोख जल्दी वो कमेटी का डांस मेंस।

हो जा राम नाम का पक्का लो भी और क्या मनाए मायामी और रखा रामदेव चैत्य के कुछ रीमेक सॉन्ग आपको हम और सुनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं पारी करो रेवती राम रूप का गाया हुआ ये और सॉन्ग है आओ मिलकर लातवे में चखान घूमे घूमे।

पारी करो और पारी करो ना वोट के पारी करो, ये गाना के नाम है रेवती राम रूप का और ये गाना है पारी करो चटनी रीमेक सॉन्ग है। तो हम फिर चलते हैं रेवती राम रूप की एक और हो जाए और वो भी एक चटनी जोगा शोगा।

और रेवती राम रूप के आवाज में आप लोग सुने हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम भी चलते हैं अपना देश की रामदेव जय दू रे में इस बैठक गाना।

0: और मैं रमता जोगी राम के बाद में, दोस्तों हम चलते हैं और फिर एक बार कहाँ चलते हैं, और वो है राधिका की ओर। राधिका दिन बयाल हॉट चटनी जोंग जल मोहो कमेज का दान जमीन से अमेज खान ज्विंग है और राल वार ये ओक बैंड मख वेल अलमाल अलेन बे रेडियो फाहों
1: दिनवा कहा गवायो ना,
0: ओहो कहा दिनवा गवाईले है
1: नवा कहा गवा
0: फुसूर फुसूर फुसूर
1: रतिया।

हे रसिक रसिक रसिका दीनदयाल हॉट चटनी हमारे यारो, जो आपको हम आज सुनाते हैं उसके बाद फिर चलते हैं लोकल रामदेव चैत।

और दोस्तों जैसे बताए गए आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन की सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों हम एक ही दम बढ़ते हैं अपना समाचार की ओर, और हमारे नानी नाना मौजी मौसा जी आजा काका काकी सबके यहां से जॉनी के यानी कि प्यार अब तक पहुंचे हम चलते भैया एक बार ना 14 बार फिर 3 केरमेन से 14 बार हमारे यारो 14 बार 14 बार ही यहाँ पे भैया चोर लोन चोरी करी से 14 बार उस जहल काटी से और निकल के आवे है तो फिर अपन धंधा चोरी के शुरू कर देवे भैया सलेर नीत ऑफ दुई आदमी भैया बताए गए है 14 बार फॉर और डील करी से सिपाही ओके फॉर डेंकिंग फॉर दीप स्टाल के बारे में इन आउट काम है चोरी करके 14 दाई कपड़ी भैया सिपाही के पकड़ चुकल है और बतावे हैगा सिर्फ यार में हो तो इनमें फिन एक पकड़ी से और बोले एगो मार्टिन लिकलन लुथर्स किंग वेक में पकड़े रहा तन हुक्त फन अन बद्रेव मेदर स्मा के बारे में और इस सब के सिपाही 14 बार जहल काटी जाने पकड़ी से और फिर से 15 बार पकड़ाई गई है और बताया द फॉर डॉक्टर को द नीड फील लेटर ऑफ द सेल ऑफ द वेक फॉर द स्टार द हाउडर बे दोर सुकिंग ओकर ऑटो में तरादिया तोर पाइस ओकर कोफर बाग में अल्मुनियम पाइस ऑन द पाइल से सब इसे चोरी कर ले रहा भैया तो बोले हैगा 6 फोनस ऑफ से नाम इन 8 केर फरोर्डील बेजन से एर्डर स्कुल्लग बफोंदन द मन से ओवरगेब्रक नर पुलिसी ब्यूरो होते हैं कि बाकी तू जाने हुआ पे कहां ठीक से जहल हल मिले हैं तो दे इसे मेंस ले रहे से नोइड ऑफ मेंस 14 बार ई अदमियन के दीगो की सिपाही पकड़ी से और ये सब तरी मनी बन हुए निकल जा फिर शुरू कर दे ओही कमवा कर खम जा ले भैया मारेंगो के ओर मारेंगो के ओर तो ये बात बोली जोनी मारेंगो को मारेंगो बोले ट्रैक ऑन बरे एक बार ख्रोंदन इन एंड हीव द मेंशन बाउ रेप ख्रोंदन बोलेगा जितना ख्रोंदन है बोले जोन जोन ऑन बरे एक बार जे पर आदमी काम ना करे जंगल बोले सब इन ट्रैकर एनडीपी के पार्लियामेंटारियन हैगा माइकल मोरेंगो बोले है रखेरिंग के बोले हैगा अफखलोपन यार एंड बोले बीते हुए सालों में जितना पर्सील बोले सबन बाटी से जहां पे जंगल है स्वाम्पू है बोले सब इन ट्रैकर फॉर फेलेंस इन ऑन बार एक बार बोले हुआ तू ना जाई पिए है दो दारों बरूप बोले उस सब जगह ये स्वाम्पू जंगल हूँ बार एक बार ना है और बोले चाहेगा खेबी बी के और दे से खरोड लीफर बोले इन ट्रैक कर ले और बोले इन रेल दार फॉर खरोंदन ऐत के फवार में से वेल द मोगलगाइड हैवन ऑन डायरेक्ट बोवन बोले स्वाम्पू जंगल तो आदमी के बांध डले बाटे और बोले हुआ आदमी जाई ना पावे बोले ओके इन ट्रैक करके बोले उस सब के खात बोले दूसरा जगह दे जहाँ पे आदमी अपन घर द्वार बनाई सके है बोले इंटेंटिविजेर ए एक्ट बोखरोंदन फॉर मेंशन वार से एक कुनन खान बोवन बोले दैट लातन दैट दून से मोरिंगो इंटरव्यू में बताई से और बोले है ही अन रीगल मातक में योगन तो स्प्रीकन दी एम पर्सील हैवन टू कमीशन गक्रीकन फॉर फर्स्किलन लांड मीटर हैवन बनादर मा नरकंस द मनोदगे हेल्प क्राइगन तो एकर बारे में बोले है जनता अन ये भैया बोले है ओम रेल करो के और ये पार्लियामेंटारी बोले हैगा दैसन द हजार को जगह है बोले हिलास इस हिल खरो डील फॉर खरोंटन अफकलोपर यारन से uitgegeven maar nog steeds niet ontwikkeld hij pleit ervoor dat er goed voor onderzoek moet worden alvorens gronden worden uitgegeven hij vindt het daarom goed dat de huidige regering aan de andere kant gestart is met een woningbouwproject और ये बात बोले मोरेंगो दोस्तों तो हम और आगे जाते हैं अपन
अपना समाचार की ओर। भैया गायाना में एक बोट बुड़ल है हमारी जनता, गायाना में एक बोट बुड़ल है। हाँ फिर बहुत रेम गायाना तीन तालन फरमेश न सिंकन फना एमफी बा रीमा के बातचीत हुए है हमारे जनता, हमारे सुनने वालों, हमारे प्यारे प्यारे जनता। बोट बुड़ल है भैया गायाना में, तो यहाँ बतावे गए है शनिचर और अतवार के रात के एगो पशाशीर्ष फेर बहुत है एमफी बारीमा रात के बुड़ल है रेडिश वर्कर से मसाल इन खसे तरवल तीन तालन और फारन दन नौख वार्दन फरमेश जेकर लाइक से बना पाई से सातरदाख मेदाख के क्वाट ओवर थ्री जॉर्ज स्टोन में बोले हैगा मेरे बस्ते में naar Port Kaituma mee, het noordwesten van Guyana. Aan de boot bevonden zich volgens de autoriteiten 116 passagiers, 17 kamkarten, over totaal 133 admiraal, 11 bij je raad ke, die boot boedel he, en bolehega सब खोजे है रेडिंग्स ऑपरेशन भेल हैगा बोले जेमा सेफनन सस्तक आदमी बोले है परसोन लीफन एडेड वादर खरे सेफनन सस्तक आदमी के लीफन मिल गए है अंदर वी किंदरन के भी पाई से फॉर द ओवरक ऑफ फारन वर्ड नो खसोग बोले द सुक एक्सी स्टर्क से आउट ओवर खबीत फॉर मोर देन 1000 4 किलोमीटर में सबन ओके खोजे है बोट खोजे है फ्लिक्टर खोजे हेलीकॉप्टर खोजे दुकर्स खोजे है हुल फॉर फिशर्स एर पर्टिकुलर फार्टाइकन सब गले सब के खोजे है फॉल्सन गायाना के अथॉरिटीटन हुआ बोले हैगा बोले फेलिक्स साइज मिडलन वार अंडर ऑनकफेयर 52 रेडिंग्स फेस्टन ए मेरदर रेडिंग स्लोटन द एग्जैक्ट ओरसाक फॉर द सिंकन ए बिना बरेक है माने बकेंट है अब बोले हैगा getijd omstandigheden juist zijn van de passagierslijst en mogelijke nalatigheid. De kapitein en enkele bemanningsleden zijn aangehouden voor verhoor. Volgens de autoriteit testen de kapiteinen en de eerste machine positief op marijuana. John Botia Chalau trouwens op Gaja Pilera Bhaya sabke eerste test bij Milal hai. Overleden de spreker van angstige taferelen. Velen brachten uren door in het water voordat zij werden gered, terwijl familieleden wanhopig wachten op nieuws over de vermiste dierbaren. Op de Guyanese regering wordt toegewezen een diepgaande onderzoek instellen naar de ramp. Premier Mark Phillips, minister van OE, Euro, is op verklaard gekregen dat iedereen die verantwoordelijk blijkt te zijn voor de nalatigheid of overtredingen ter verantwoording zal worden geroepen. Op de kapitein Lungaja Haja Pike और चलावत राबोटिया भैया एक बारे में सरनाम जोन है मीडलीफ बताइक करिसेगा गायाना के और बोले है ब्यूरलांग गायाना इस कप्स एस में पसाचीज एवं मानस लेदन अनबोर्ड में से और बोले एक बारे में मिनिस्टर बाउफा बैतलांस साक के और हंडल इंडस्ट्री के बोले गायाना के अमतनार्स खोद हुक दो तोत के भविष्यवान हीर बै नोडिक अंडरस्टैंडिंग टू खवीजन। बड़ा दुख के बात है कि इतना जनता गयाना में पानी में बूढ़ के मर गए है, बहुत अफसोस के बात है। मारे एक फिर जो एरक मैं से दी कैप्टन सो फिल मैं से aan boord hadden en daar gaat ze nog met marijuana rokende en hoe ze precies geel heeft. Bij jou zijn naam mee eindexamen ke tijd he en eindexamen uitstel hoeige bhai uitstel hoeige he school mee omdat vakleerkrachten na he bhai bara dukke baat he hoe he eindexamen de school ke he bole tekort aan vakleerkrachten. और बोले हैगा उस सबके चाहे अष्टस्थालक जो लेस चाहे अफरोंद करे के एन एग्जाम जो है बोले लात्र मोमेंट पे हुई और ये बात हुए है खमीस का मोंगो टापू के
eindexamenkandidaten nog bezig met lessen voor het vak adreskunde. De school heeft pas onlangs een leerkracht gevonden die bereid is de leerlingen te begeleiden. We hebben niet zo lang geleden een collega gehad gevonden om de kinderen te helpen, mensen. De Jebi Socho Suriname, die is mee eindexamen doen. En ook gesegeerd. Omdat tekort aan vakken, leerkrachten, mensen. En ja, wat hij bij honderden gelovigen bij jou toen je Krishna Janam Astami hey. Aur Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ja, per resideer kreeg hij. Zo'n go gelovigen.

onder de gelovigen bijeen betaalde je hee maarre mausiloon betaalde atwaar ke reis versierde kar ego kar he ze versier kleren Sri Jagannath Sri Baladev en Sri Subhadra ji door de straat van Kasaba Holome en bole he rath yatra raha beter bekend als kar festival waar voor de 11e keer in Suriname gehouden. De Oesap Koep Moise Ratyatra Rat Versierker ke Sri Jagannath ke Sri Baladev en Sri Subhadra ji ke Oma Dhar ke Avsabar Yat Ratyatra Nikari se Abole de deelnemers legden een route door 5 kilometer Saban Gela eindbestemming ra Iskon gebouw door de internationale Societ voor Krishna Consonants in de welgelegen mensen, hoe wel gelegen ke hoek pe hem janela aur sab khai ko sab baante bhaiya tulun jano hai ye hai ga iskon ke hare rama hare krishna ke obole daar werden beelden van drie goden bole feestelijk verwelkom met gebieden van de vuurwerkshow en een bloemenhulde waarbij vanuit een heiskraar bloemen over de godheden werden uitgestrooid mensen dat is zeker heel heel mooi de eeuwenoude traditie uit India die inmiddels taal van landen dunia bhar pe hoi ge hai aur 2016 mein Suriname mein bhi hoi ge hai aur bole sab gana bhajan kare hai nache hai aur bole prasad baate hai offer kare van voedsel dat binnen in de hindoeïsme als gezegend wordt beschouwd uitgedeeld aan de deelnemers en omstanders sab ke sab baate hai hamari janta aur rath yatra itra samaro ke saath mein sab nikari se Ego groep sterke jonge mannen die grootste deel van elkaar vertrokken namen ook andere gelovigen om beurten plaats aan de dikke witte touw waarmee de kar werd bewogen tataise jawan jawan jawan jawan london sab ghainche bhaiya aur utataise van ghainche se aur batawe hega het was een salak toch Mahadev Bainat Madhuriya Lili Devdas namens de organisatie aur batawe hega Volkes Bainat heeft ook het uitdelen van prasad een diepe spirituele betekenis prasad is de genade van heer het voedsel wordt eerst aan hem geofferd en wat hij terugkrijgt dat zijn de genade mensen तो एक बार में आप सबको बहुत बहुत बधाई है रथ यात्रा के मालूम ना है दिन हाँख में कब निकलेगा लेकिन वो निकलेगा जरूर कल हमें इस कौन से कांटेक्ट हुआ है और उसके बारे में कांटेक्ट हुआ है वो सब जोर तोर से शुरू करेंगे यहाँ पर भी रथ यात्रा निकालने के आप लोग जानो हैं स्केप स्ट्रास से रथ यात्रा निकलते हैं लेकिन वहाँ पे सब बेसिक में फॉर बॉइंग में से आज दैट क्लियर इस ze dat doen. Gisteren heb ik contact gehad met de voorzitter van ISKON. Dus dat gaat wel gebeuren. Dus dat gaat wel gebeuren in Den Haag. तो हमारी जनता हम और आगे को अपना समाचार लेकर चलते हम चलते हैं प्रेसिडेंट सिमोन के जेनिफर सिमोन 22 तारीख के वुसदाग के जुली के ऊपर ट्रैक होएगा इंग्लैंड जाए भैया हाँ बोले बड़ी संतोखी ये घूमत रहा बोले घूमे संतोखी जा है जो देश देश जाता सबके बोले हैगा बोले सुनो पर ऐसे करे जा है लेकिन सिमोन भी जा जनता भी होकर बारे में बोले हैं बोले जा बके कुछ ब्रेक ना करे हैं तो 22 तारीख को इंग्लैंड जा है बोले जा है बतियाई हूं पे ऑटवेकलिंग फंड सुरीनाम से इकोनॉमिक मारे हु जा है इंग्लैंड में बतियाई भैया और बोले द वर्क बसुक फिन प्लास ऑफ आउटनोटिंग फन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टेल एंड मा डील आउट फन इंस्पानिंग फन द रेगिंग फन द इंटरनेशनल पार्टनरशिपन टू फर्स्टर्कन एंड न्यू इन्वेस्टिंग मोगलकेडन टू बफोर्डरन तो अब देखो कौन सी ब्रेक करे भैया जाए कि सिमोन इंग्लैंड में तो ये बात है हमारी जनता
सिमोन के बारे में। अब देखो भाई, हम जाएला इतालिया में, और इतालिया में भैया, इतालिया में बड़ा हड़ताल भइल है। इतालिया में एगो मरकान के सिपाही दागी से मरकान समान बेड पुलिसी ऑप्ट्रेड ऑफिस इतालिया ना दूर फन मरकान समान बेड पुलिसी ऑप्ट्रेड स्को तो ऑप्ट्रेड कैसे को मरकान के आदमी पर गे वहां पे बड़ी हड़ताल भइल है। बोले ऑफ लेडन फन मरकान समान सिपाही बोलेगा इन बदवांग वेर कहौदन एन ओम हेल्प्स मेक द मेंसर रेक्ट एक्टिविस्टन इन ओपोजिशन पार्टी एसन ऑफ हेल्ड्रन ook zijn betogen de straat opgegaan. Ik er bane mee. Ego heega Abdurrahman Fakir 42 jaar ke. Obole 5 barisse u Italië mee rehe he. Bole is actuar ke. Bolo wala mee. Bolo marge he. बोले को वीडियो में सब धरी सेगा कि दुई को सिपाही ओके कैसे जमीन पे पटकी से खरंत वर खोदन। बोले है रूप मेर मांस हेल्प हेल्प। अब बोले दैट इज नी खरूत तरवेल अखेंतन ऑफ हिम सेटन। अब बोले को एम्बुलेंस में दे वर्कन। बोले तू कई के ताके है कि फकीर स्टॉप में बवी किंग। बोले विंडन द अखेंतन सेन हेक्स एंकल्स ऑन एलकार। अब बोले है का कुछ गोड़ हाथ बांधे रहा। इटालियन से मीडिया मेल्द करे है बोनस की पुलिसी हानिर खबेल उम्दर फकीर से अग्रेसिव खद्रूख एन खपरकेद आउटो हाथ बस्कादे द अखेंटन सौदन टेकन हिम। Ambulance personeel hebben gezegd, de man is een psychisch kritiek doorgemaakt. Leden van de regering hebben een handel van de politie verdedigd. OM is in onderzoek gestart, mensen te iemand te wegen. Engeland, ke bare me. Italië, ke bare me, sorry mensen. Dat is Italië, ke bare me, hamari janta. भाई हम जाइला ऑस्ट्रेलिया के ओर। एगो औरत के भैया फिर लिंग खबोर भइले फिरन देर तक यारख। एगो औरत के फिर लिंग लड़का भइल है बेबी पाई से 28 वीक के स्वांगर रहा एन फिर दाखन एन हाथ अल फिर केंद्रन के चार गो लड़का और रहा और चार गो फिर पाई से हो गया 8 गो भैया। अलेक्सा बेंडाल एगो माई है और इस स्वांगर भइल ला बोले स्कॉट दैट बोले है फिर लिंगन बे ऊपर 15 मिलियन स्वांगरस्कापन फॉर कॉमन फीलिंग 15 मिलियन आदमी में से एगो औरत फीलिंग खबर करे है। और बतावे है इस ऑन खबर दैट सेल्फ द placenta delen de moeder en haar man hadden al kinderen en bole ego raha 1 en 10 jaar oud daar ouders waren in noro forward josep suris natuurlijk of char ladka paiga baby pas geboren meisje hebben de naam meisje raha bhaiya pas geboren meisje ook een naam hai emily harriet Katharina en Alexa kregen. Alexa vernoemd naar begeleider Bendal, die het prachtige eerbetoon vindt. De baby's blijven op de neontale intensivistair care afdeling van het ziekenhuis tot dus voldragen. Ze maken het volgens Bendal. Wat eigenlijk ik er maar meer. Ze hebben kostenpijzen gaan, medische kostenpijzen, reizen, dagelijks levensonderhoudpijzen, busjepijzen met 10 of 12 zitplaatsen. Orbataige, de actie heeft al meer dan 66.000 Australische dollar, dat is 41.000 hebben ook er gaat harissen. In de Maxima MZ is de Veldhoven is in mei ook een feeling geboren. Oh, bataille gaye hai. Het ziekenhuis zei dat het niet eerder hebben meegemaakt, mensen. To char ladkan, char go baby paise. Pas geboren, ahme jana, charo meisje, bhaiya. Charo behin hai. Imeila Harriet, ya pas geboren meisjes, to meisjes hai. Imeila Harriet, Katharina en Alexa. हां दोस्तों, तो बधाई हो यहां से भी कि चार चार बीवी आप लोग जानो भैया। फुटबॉल में स्ट्राइड भइल है
सब कोई बहना देखी मा फिर हम बोली हम बताई दे और उड़ा स्पाया से और एंगलान तो त्वेर केर खेल ले रहा हूँ माँ एंगलान जीत गए है मार अर्जेंटीना खेली से और वो खेली से का स्पाया से और यहाँ पर बताए आप लोग जानो 8-0 से अर्जेंटीना हार गए है और उनसे वर्ल्ड कंप्यून स्पाया हो वर्ड में से यहाँ पे बताई गई है लियोनेल मेसी हैवन ओक अंदर अर्जेंटीना स्पेलर फ्रांस से laten horen naar de nederlaag tegen Spanje en in de WK finale 1-0 Rodrigo de Paul slaat terug naar de critici en complotdenkers terwijl Leonardo Pardes zijn ruzie met de Spanjaarden negeert mensen. स्पोर्ट के बारे में छोटा मैं आपको बता दिए है कारण कि पूरा दुनिया तो ये खेल लाइव देख चुका होगा तो जोनी बोले अब तो के हम का बताई तो ये सब बात है ये सब समाचार आपको हम सुनाते हैं हमारी प्यारी प्यारी मीठा मीठा जनता भैया एक बस चौफेर क्रैक 3 years 3 months के जहल पाई से एक बस चौफेर भाई तुलन जानो एक बारे ऑन तक कलर को मिंदर यार स्कूलीर के बारे में एक बारे में आप लोग के बताई देली मैं अब पता मिला ले 3 years के जहल ये रमिया पाई से और एक बारे में मिंदर यार ख दी अन सोरग वाक्साम है वास टू फॉरड्राउड सो हैवन सो हैवन मिस ब्रेक ऑन तक द हैंडलिंग सो हैवन कंप्लीट और बोले advocaat Chandra Algu kon er geen sprake zijn van één kind dat een zorg van een buschauffeur was toevertrouwd. Zij stelde dat de taak van een buschauffeur slecht is om scholieren veilig naar school te brengen. और मी जाए को अंतक कलरा और ये जहल पाई से यहाँ बताए गए हैं बोले नहीं कह यार ख स्कूलीर हीव के स्टॉप ये बतावे दा फरकात गाफ आन दैट हर क्लाइंट द हैंड इन द ब्रूक फॉर अ 9-year-old स्कूलीर हीव के स्टॉप मार बतोगते दैट इट गीन स्प्राके वास फॉर अंतक volgens haar zou de jongen tijdens geval hebben gelachen en had bij de buschauffeur als een vriendelijke persoon ervaren die heeft de jongen bij de politie verklaard. Ook zouden er volgens de verdediging nooit meer klachten zijn geweest voor in de school op omgeving zijn volgens de advocaat ook er waren mee bolle he bolle grenzen zijn overschreden or je me toen ja nee ik nu sta niet raha ik er foto bij raha of ze maar film manai ke er waren mee dhar de ise to 3 years ke jahl je me paise hamare janta dekho advocaat esat ka bolle he bolle koros policy sirina नाम लेक स्वार खेस्तलक सी बोले सलाम के सिपाही जो नहीं अर्फकार बोले ऐसा बोले हैगा बोले सर नाम के सिपाही बोले खेस्तलक मुड़ी नक्कमा है सबके ही को ऐसा बोले अर्फकार में एको अर्फकार बोले को प्रोग्रामा में और बोले हैगा conclusie aan de hand van de vele schandalen die Sipahi kregen, bolle sterke arm de afgelopen periode verwikkeld is geraakt, ki verdamping, bhaiya, pata na mile Sipahi, haat se verdamping, paisa chal ja, sona chal ja, drugs chal ja, kwek chal ja hai, aur Colombiaanse drugs figuur, Sipahi, humne inhe ko chhod de, bhaag ja hai, chhod ke jahalm se, tot meer da 15 Sipahi pakdaan hai, एक बारे में अर्फकार बोले हैगा बोले क्वाद ने एरखर हुए हैं मैं इनसे बंदत क्लोप ओक दसेक ओक नाम लेने फोरख न्यूज बस लेट फन बले स्वाकर और बोले गहेम इन कमिटे जनरल तो बस प्रीकर वार दूर अलस ओ गहेम ब्लेव कोरस is ziek, maar de beloofde transparantie is geheel zoek. Isabaat, SAS, bole hega advocatoa, o bole VHP parlementariër Cedric van Samson bole he, bole Surinaamse gemeenschapke bole in alle openheid geïnformeerd te worden over de onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kweken waren mee, abbe patana he, ar kweken karen.
का बोले इतना मछली मर गए है तो लो जानो कैसे साथ के पुलिसी बिरो में से को बड़का कोलंबियान से फिकी रहा जो दृक्ष के बारे ऊ निकल के भग गए है। अब भग गए की सबनो के निकाल दे भैया पैसा फेंके हुई अख्तर फैफ तक यार कोलंबियान से अरेस्तान योर्की इल्जेर अरीसा ओर्टेगा रात के ऊ निकल के भग गए है और बोले सेलन हैस विस्ट ऑन स्नापन हर खात ओम अखन फन पुलिसी इस्ते क्लासे एसका एंड टू aspirant agent BJ zij zijn door de afdeling interne tuchzaken के बारे में यहां बताएगा ook पकड़ान है तो ये बात है हमारे जनता तो सिपाही के जो हुआ विश्वास ना भैया तो दिसवा में तू का करे जयो भाई जे तो के बचाई उही लुटेड़ा हुई ये है। सोचो भैया आप लोग जानो है एक न्यूज आप लोग के और हम दे रही फिर से हम बताया निखर फैफ तक के यारक बुरू भैया ऑफिशियल फरदाग फन मोर्ट ऑप 23 यारक योनाथन पिनास अंटवर्प में दगा वल भैला तो लोग जानो है कर बारे में बुरु शुक्रवार के अपी फॉर द रेक्टर गईल है और एक के काबुले पकड़ के बंद करी से फुल उपक हेक्टनिस ब्राइफ में से तो ये बात हुआ है अंटवर्प में दोनों में झगड़ा भैले 23 यारक एटवास का स्टाफ और बोले गैला द सिचुएशन गैला आइट प्रातक करे में तो जिस एन आइट द हैंड खलूपन वर्ड विसलिंग बोले सो एर एन क्लब सेन आइट खदील वार ने स्टीफन एस अ स्कॉट हैवन खलोस्ट बोले द कोकल ट्रॉफ पिनास इन ओमकीफ फाइन सेन ऑक्सल बोले है द हेल्प फॉर द प्रोबेयर द ओकेरियन मेयर करे के मारू आदमी बच मर गए है अपे कर बारे में सकवा कितना दूर जाई आप लोग को हम जैसे रहेंगे हम बताएंगे हमारे यारो हमारे जनता। तो आप लोग को अभी हम और बताएंगे हम आप लोग को एक गीत सुना दी तो अभी हम आ जाएंगे मस्ती भरा है समा।

दोस्तों एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, तो पूरा घंटा हमारा हो चुका। तो हम जाते हैं भैया एक दुख भरी समाचार यहाँ पे। बहिन बिचारी गुजर गए सुरीनाम देश में और सब गए उसका मट्टी लेने को मर्तेवारियों में। तो बहुत दुख की बात है, जब उसका लाश वहाँ से लेकर अब जाना चाहते थे लोग, बस उसके भाई जो है, उसके भाई भैया ग्लेन जो है इस्तीदार नाम लिखा सख्त में से गिर गए वहाँ पर है। सख्त में से दूर ध्रुव खाई नती लग। अब जैसे ओके एम्बुलेंस पे ली गई है, एम्बुलेंस आयल है, तो ब्लैक भाई के ओकर भाई भी गुजर गए भैया। तो अब जब भाई भी मर गए और बहन तो मर गए रहा, तो ओकर लाइक रानू के फिर सफर मारतवारियो में धर दी से, कारण कि अब उजाई न सके है, भाई भी गुजर गए है। तो फैमिली बहुत दुख में है। बोले साहब बस लो उतन ओम द एयर फॉर फॉर रानू एंड ग्लेन लातर दी से भी खसाम लगते हौदन परिवार की। ये परिवार जो जिसमें जिसके घर में इतना बड़ा दुख है, रेडियो फाहन के तमाम टीम आपके दुख में शामिल है फैमिली। तो ये बात है। ईरान में भैया और अमेरिका के लड़ाई हुए देर तक, दो दिन अमेरिका से अनफॉलन में से और ये बातचीत हो रहा है। ईरान और अमेरिका के लड़ाइया बहुत जबर है दोस्तों। कब इमोई हुई भाई पता ना है, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। अब देखो भाई देना बहंदल काल्पनिक वैत ओम क्रिमिनल फरमोखन अफ तपकन देना बहंदल करे है। जितना आदमी क्रिमिनल से पैसा बनाई से सरनाम में सब चाहिए उस सबके बसलाख करे के है वैत फोर्स तेल मुद ओफर है मेल मोकल कहित के इवन ओम फरमोखन दो दोर क्रिमिनलिटेट इस फरक्रेकन अफ तनीमन ओन खदाख वार है शेख बफिन। बोले कर बारे में एनडीपी के बोले इंग्रीड कार्ता

इससे धनी भइल है। देखियो कितना भारी भारी घर है भैया, हाँ श्रीनाम में। ओ कल गए जइयो भैया तो के सुना दे एका 10,000-15,000 डाला जितना सकवन है गा सब वही बिल में घुस जाए जहां से निकल रहा। श्रीनाम के करप्शी के बारे में हैप्पी खीन हुई वोट में से वन श्रीनाम है हैवस करप्शी वियतनाम लेक अंति करप्शी वेखरार मा है वेर खीन मेटर में से जुली वेटा अलमाल हु en wat het is, over maar de grote kruptelingen wat het is, die heb je overal in Suriname. Tot vandaag heb je geen één van ze in de achter de tralie gezien, mensen. Dus ik heb natuurlijk geen goede woord ervan. Manoret Bolle, je ziet verlies geen grip of veilig. Manoret Bolle, UCC verlies geen grip of veiligheid. Te bija Manoret John Hanis Manoret Bolle he. Bolle grip na laas bij de Oehik Edmilun etra churi kare he. Bija okar batia betre hem na batai. Sinder verhoging van minimum uurloon biedt wrokkomaans weinig verlichting. Minimum loon was hem aan chalai se se naam me. 52,47 na 61,25 hectarische minimum loon was se naam me. Chariga admilo ke mabole ekko verlichting na nika up i verhoging wang bare me sunder bole hegan हमारे जनता खैर फ्लाइट के सिपाही पुलिसी गायाना के भैया ना खैर फ्लाइट के गायाना के सिपाही पकड़ी से आसीसी भैया बसलाख जो सुरीनाम से वास्कस मोकल दर गायाना आसीसी गैला सर नाम से गायाना में तो हुआ पकड़ा ने इन 20 ग्राम फरमुदलक आसीसी हैवन आन खतरोफन इन सेन क्लीडिंग द फरदाख्त वास कोर दार फॉर पेस्पीड बूथ ए सुरीनाम गearriveerd. Volgens de politie vond de ontdekking plaats bij de quarantaine Berwisch mee. Toen hij Springland mee dus toe. Toen ja, bij Washington, Pakistan, Qatar, Egypte, mange hega bemiddel kere Pinochet gevuren. Door Amerika's VS euro en Iranse hoe bole 10 roj ke tijua ban kar bole kar bare mein hum log batiyaya. To 3 des bole Pakistan, Qatar aur Egypte bole he staak het vuren van 10 dagen te werkstelling tussen Iran en Amerika. New site bole hega bole anonieme bronze aile tijua bole afkoelingsperiode. Tijdens deze periode zouden de landen verder moeten praten over het permanent akkoord. Amerika zouden een voorstel overwegen dat voorzitter heropening van de straat van Hormuz, maar er is er ook rekening mee houden dat de onderhandelings mislukken. Het alternatief is een verdere escalatie van de oorlog in samenwerking met Israël. Bolle, de Amerikaanse president Donald Trump zou nog geen keuze hebben gemaakt. VS stuurde de afgelopen dagen om grote schaal tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio en ook Israëlse leger bereid zich voor op een nieuwe uitbreiding van conflict. तो ये बात है भैया और रुसलान हुआ पे इंग्लैंड के मोंडिंग पे सबन उफन करे के शुरू करी से और रूसी से मारीनेस के भीफ इन हीफ्ट एन आर्टिलर उफनिंग गदान फॉर द ब्रिटिश कस्ट बोले हैगा ब्रिटिश मिनिस्टर फॉर डिफेंसी बोले है स्किप वर्ग स्कैड्यू डू द ब्रिटिश मारनीर बोले है स्किप फुट जोन 40 नोटिस अ मेल 74 किलोमीटर टेन साइड ऑफ द साउथ इंग्लिश स्टेट बोले हैगा प्लेमोंट स्टेनर ओवरिंग दी सो 30 मिनटन ड्यूरन हर गेबर्डे नीट इन द टेरिटोरियल वाटरिंग ऑफ अ अमेरिकन इकर मारे में इंग्लैंड बोले है किसी जुआ कैसे है कैसे ना। एक औरत भैया जाए के वही ने बॉस ब्रुक पर से कूद गए हैगा पुलिसी फिर लीगल फ्लैश ग्रामासोन इन द ऑटो ब्लैक बारी और ते ग्रामासोन वो पी के तब कूद ले भैया जो ने सीकर है तू मर जाए। एक औरत है अतवार के वही ने बॉस ब्रुक में से ग्रामासोन पी के वो कूद गए हैं क्वार्ट ओवर 5 इन द ऑक्टन में से बरख पाई सेगा school toe ik er waren mee. Toen betaalde je hega voertuigen stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurszijde uit het voertuig. Ze rende vervolgens naar de vangrail voordat hij kon aanspreken. Zag hij dat ze zich achterover liet vallen en van de brug sprong. De
getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw afhankelijk in de richting

इसी गीत से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी आदाब। आज आप लोग को हम सिर्फ ओल्ड रात के सोहाना सफर का गीत हम आपको सुनाएंगे कि अगर जब आप सोते हैं या कुछ रिलैक्स करते हैं तो ये सब गीत आप सुनकर और इसमें अपना यानी कि खायुली खुद खनीतमें से ओल्ड इज गोल्ड।

लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। तो कुछ मिली जुली गीत आपको हम आज सुनातेंगे हमारे यारो। तो हम चलते हैं अकियो के झरोके की ओर। तो अकियो के झरोके में क्या होता है, आओ सुना जाए।

आंखियों की झरोके से एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है। इस फिल्म में सचिन ने और रंजीता ने काम किए हैं हमारे दोस्तों। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला गीत की ओर, चोरी हो गई है। और चोरी किसी को दिल हो जाते हैं, चोरी किसी को पैसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और बात है।

नींद की चोरी हो गई रात और रात के बोले है सपना निनिया चोरी हो गई क्यों सूत ना पावे इतना प्यार हो गया है कि सपने क्या और बोले है रात के निनिया बोले वो चोरी हो गया भैया तो इतना प्यार करना कि रात की जो निनिया है वो भी उड़ जाए। उसके बाद हम चलते हैं एक फिल्म के नाम है मूवी का नाम है कल की आवाज नहीं कहती हूं एंट्री नहीं कहता कई फिल्म है और एक हिट सॉन्ग है फिल्म का नाम है कल की आवाज तुम्हारी और गीत को किसने गाया है आओ देखा जाए दोस्तों। इतना बात है कि इस गीत को इस फिल्म में काम किया है अमृता सिंह और धर्मेंद्र जी काम किया है और आओ सुना जाए ये कौन सा गीत है।

और कल की आवाज मूवी का नाम है और इस फिल्म फिल्म के नाम है कल की आवाज निगदित निगंत का ये जोंग है जो आपके लिए हमने चला दिया तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहते झलक रही है। हमारे दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। तो आपको हम बता दें तो हम चलते हैं इस गीत की ओर। मेरे दिल ने जो मांगा नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। फिल्म के नाम है रखवाला। निकटी होंदत एनन जीवन तक का ये गीत है और यानी कि मूवी के नाम है रखवाला। मेरे दिल ने क्या आपको दिल ने जो मांगा है उसको मिला है या नहीं मिला है आओ सुना जाए।

मेरे दिल ने और जो मांगा वो मिल गया, क्या आपका दिल जो मांगा है उसको क्या मिल गया है। हमारे दोस्तों, हमारा यही आशा उम्मीद है, दुआ है, प्रार्थना है कि आपका दिल जो मांगते हैं उसको बहुत जल्द मिल जाए, इसलिए कि इस प्यार से मेरी तरफ जब देखोगे तो सब कुछ आ जाएंगे। द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यग्निका फिल्म चमत्कार।

0: जी।
1: और इस प्यार से, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो भैया, नहीं मुझे प्यार तो जरूर हो जाएगा। टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानोल का याग्निका, फिल्म के नाम है चमत्कार के बात। चलते हैं और अगला गीत के ओर, अपनी अपनी मोहब्बत की, अपने मोहब्बत को कभी ना मारो और उसे कभी कोई दुख न दो। नाइटिंगेल लता जी और किशोर दादा के आवास में इस गीत को हम चलाते हैं। मूवी का नाम है लैला, लैला और मजनू का जो है।

और दीवाने को पत्थर से कभी मारना नहीं चाहिए, तो इस गीतों से मुझे याद होता है कि कोई जमाना में मैं भी 16 बरिश के था। और क्या आप भी कभी 16 बरिश के थे? अगर जो कभी 16 बरिश के थे तो आपके ये गीत सुनना चाहिए और खूब ठीक से सुनना चाहिए और अपने आप को लेके चलो चलो जब तुम 16 बरिश के थे और उस समय पे 16 बरिश के जब तुम थे तो उस जमाना में उस समय पे आप क्या थे, इस गीत से आओ सुना जाए।

और दोस्तों शलाम ही शलाम के ओर हम चलते हैं। एने तेरे नीले नीली आंखों का और ये जोंग है फिल्म के नाम जैसे यहां पर हम देख रहे हैं। तो यानी जाने अनजाने नीखते होंगे इन सीवन का और पद्मा श्री मोहम्मद नाई दिन गई लता जी का ये जोंग है।

आज हमें जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते या गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

ओ नीन के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

और अनोखों अन अन अखियों की झरों की बात हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और चाहे ठंडा लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहुन आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

हमसे और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।

इस तरह से हमारे जिंदगी में शामिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएं। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

मुझे प्यार करते हैं तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप।

अजीब सी एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी यार साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका याग्निक क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग वन जॉनी नंबर वन।

कर दिया। और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नैतिकेल लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो जरूर बता देना।

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर जो आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Oh yeah, movie के नाम क्या है? मेरे ख्याल से भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं. आओ सुनाइए कौन सी नंबर ये है.

और ऐ दिल मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

तो जरूर कुछ होगा। मूवी के नाम से नागिन का ये सॉन्ग सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं सुनने वालों, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम बहुत खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, समय के अनुसार शुभ शकुन के सपने भी होते हैं और अशुभ शकुन के सपने भी होते हैं। शुभ शकुन के सपन, दिन में हिरण वानर को देखना, दोपहर में नीलकंठ मुर्गे को देखना, रात्रि में उल्लू और पिंगला को देखना, परंतु स्त्रियों के लिए इसकी विपरीत है। यात्रा शगुन ही शुभ, राजा के दर्शन के लिए गृह प्रवेश के समय, पर्वत पर चढ़ते समय, वन प्रवेश समय, नदी पार करते समय। क्रिया दीप शगुन शुभ शकुन है यदि वाम या दक्षिण दिशा में जाएं, विनाश है यदि आगे या पीछे जाएं। द्वार नामक शेष शकुन यदि बाएं भाग वाला शकुन, बाएं और दाएं भाग वाले शकुन दाएं स्थित होकर शांत भाव से शब्द या चेष्टा करें। अनेक क्रिया करते शकुन अतिक्रमण करके चला जाए बंधन और घात से भय।

जब कोई जल पीता दिखाई दे तो वर्षा होती है, जब कोई चरवाहा घास चराता गाय को दिखे तो चोरी का भय होता है, जब हम किसी को मांस खाता देखते हैं तो शरीर में चोट लगती है, जब हम किसी को अन्न खाता देखते हैं तो प्रेमी से मिलन होता है। सुनने वालों, वृक्ष के ऊपर मध्य जड़ में शकुन, जब हम किसी वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी या किसी जानवर को देखते हैं तो उसके भी अच्छे शगुन होते हैं, जैसे जब हम किसी वृक्ष के नीचे हाथी को बैठता देखते हैं तो अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, घोड़े को भी जब हम बैठा देखते हैं तब भी अच्छा शगुन होता है। रथ पर चढ़कर किसी का आगमन हो, जब हम किसी को देखें कि कोई रथ में चढ़कर आ रहा है तो उसका भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, किसी लंबी वस्तु कमल पत्र पर चौखट पर शकुन, नौका और पालकी में चढ़कर किसी का आगमन, जब हम किसी को नाव में बैठा देखते हैं और कोई पालकी में किसी को लेके जा रहा है या किसी की डोली जाती पालकी में तो वो भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, चंद्र नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या वाले का गमन करते समय यदि बायां स्वर चल रहा हो तो उसके बाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। सूर्य नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या करने वाला गमन के समय यदि दायां स्वर चल रहा हो तो उसके दाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। यदि रिक्ता स्वर चल रहे हो तो बाईं और दाईं दोनों ओर होने वाले शकुन निष्फल होते हैं। शुभ

शुभ स्थान में शुभ शकुन सुनने वालों, जैसा स्थान होगा उसके प्रभाव से भी शकुन अच्छे या बुरे होते हैं। ऊंचे मनोहर स्थान में, पवित्र भूमि में, जल भरे सरोवर के निकट, गोबर से लिपी जगह में, धान के खेत में, हरी घास के ऊपर, राजमहल, घुड़साल, गौशाला, मंदिर, धर्मस्थल, आहार करते समय। सुनने वालों, अगर ये सब चीज़ें हमें कहीं पे भी दिखें तो उसका मतलब है कि शुभ शकुन के आसार दिखाई देते हैं। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं, तो गीत के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे।

शुभ स्थान में शुभ शकुन अगर होते हैं सुनने वालों, तो अशुभ स्थान पर अशुभ शकुन भी दिखाई देते हैं। जैसे ऊंचे स्थान में मरे हुए शरीर पर, सूली पर, शमशान में गधे के ऊपर, भैंसे के ऊपर, सुअर और ऊंट के ऊपर, सर्प की बामी पर, बामी में जहाँ पर सर्प सांप रहते हैं, सूखे पेड़ पर, उखड़े वृक्ष पर, जलती लकड़ियों पर, पत्थरों के ढेर पर, हड्डियाँ या मल के ढेर पर शकुन रोगी बूढ़ा दीन हो। ये जितनी भी बातें हैं सुनने वालों, अगर ये सब दिखाई दे तो समझो अशुभ शकुन है।

दाई बाई ओर के शकुन, जो दक्षिण अंग को स्पर्श करे वह शकुन सफलता देते हैं। जो शकुन पुरुष के लिए दाहिनी और शुभ होते हैं वही स्त्री के लिए बाई ओर शुभ होते हैं। स्त्री संज्ञा बाई, पुरुष संज्ञा दाई। स्त्री संग बाई ओर शुभ होता है। पौध की पिंगला, कोकला, छिपकली, सुकरी, छुचुंदर, ये सब जानवरों के नाम हैं। पुरुष संज्ञा दाई और शुभ, कौआ, कबूतर, तीतर, हंस। बाई दाई गति के शकुन, इनकी बाई और गति श्रेष्ठ। श्रीखंड, खजूरी, रूरू, बंदर, श्रीकंठ, चाश, ये सब जानवरों के नाम हैं सुनने वालों।

नाम लेना, सुनना, देखना शुभ। सुनने वालों, कई चीज़ों के नाम लेना भी शुभ होता है और उन्हें सुनना भी शुभ होता है और देखना तो और भी शुभ होता है। जैसे बकरी, नेवला, इनकी ध्वनि शुभ होती है और इनके दर्शन भी शुभ होते हैं सुनने वालों। जैसे रीच, वानर, लेकिन नाम लेना अशुभ। रीच और वानर का नाम लेना अशुभ समझा जाता है लेकिन इनको देखना शुभ समझा जाता है सुनने वालों। विषम संख्यक दक्षिण में शुभ, नेवले, पक्षी, हिरण। बिल में निवास करने वाले, यानी जो लोग बिल में मिट्टी के नीचे घर बना के रहते हैं, वह यदि बाईं ओर होकर गमन करे तो शुभ है। गमन से पहले बात के शकुन, जो शकुन गमन से पहले होता है वही शकुन गमन के बाद हो तो शत्रु का भय होता है।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जो जानवर बिल में रहते हैं और जो जिनका नाम लेना और सुनना भी शुभ समझा जाता है और उनको देखना भी शुभ समझा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दिन रात में विचरते शकुन, जो दिन में विचरते हैं यानी कि जो चीज़ें हमें दिन में दिखाई देती हैं, बगुला, बंजुल, कौवा, चकवाक, कोयल, मोर, गिद्ध, पौधकी, वानर, कपीजल, तोता, शिखरा, बटेर, गधा, ये सब जानवर भी हैं और पक्षी भी हैं, उनके नाम हैं सुनने वालों। और जो रात में विचरते हैं, जो रात में दिखाई देते हैं, वो है पेचक, घुघू, घुघू मीन्स उल्लू, छिपकली, चमचेड़ी, लोमड़ी, खरगोश, जो दिन रात्रि में विचरते हैं, जो दिन और रात दोनों में दिखाई देते हैं सुनने वालों, वो है मनुष्य, नेवला, बिल्ली, बकरी, गाय, मृग, सिंह, हाथी, सर्प, कोयल, सारवत, हंस और सुअर। विभिन्न दिशाओं में मिलना शुभ। पूर्व में घोड़ा सफेद वस्तु, दक्षिण में मांस शव, पश्चिम में कन्या और दरी, उत्तर में ब्राह्मण, साधु और गाय। सुनने वालों, यानी विभिन्न दिशाओं में जो हमसे मिलते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। जैसे वह पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, हमें घोड़ा मिल जाए, सफ़ेद वस्तु कोई देखने को मिल जाए तो वो शुभ मानी जाती है, और दक्षिण की तरफ जाएं, अगर मांस और शव मिल जाए वो भी शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर जाएं, कोई कन्या मिल जाए, दरी मीन्स जैसे एक गलीचा होता है, कारपेट, वैसे एक दरी होती है, अगर वो दिखाई दे, कोई सिर पे उठा के लेके जा रहा है, तो वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में जाएं, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई साधु मिल जाए और गाय मिल जाए, वो भी शुभ मानी जाती सुनने वालों।

हर दिल को खुशी से भरपूर कर देना, बस इतनी रहमत मेरे हजूर कर देना। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं।

रामचरितमानस तथा शकुन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिन शकुनों का वर्णन विभिन्न अवसरों पर किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह के अवसर पर अयोध्या से बारात के प्रस्थान के समय जो शुभ शकुन प्रकट हुए वो इस तरह से हैं। सुनने वालों, बनई न बर्तन बानी बर्ता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, चारा चापू बाम देसी ले, मनहु सकल मगल कही दे। तो जब ये शगुन हुआ तो उनको नीलकंठ गायें दिखाई दी रस्ते में। सुनने वालों, दहिन काग सुख सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। तो इसका उनको रस्ते में न्योला में नेवला दिखाई दिया। सुनने वालों, सनुकुल वह त्रिविधि बिहारी, इस शब्द का अर्थ है कि उनको गोद में एक औरत बालक लेते हुए दिखाई दी। सगर सोबल अवकार नारी, जल से पूरित घड़ा देती एक स्त्री दिखाई दी। लोवा फेफे दर्सु दिखावा, एक श्यामा पक्षी दिखाई दिया। सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दी। मृगमाला फिर दाहिनी आई, इस शब्द का अर्थ है फिर उनको एक मृग हिरणों का झुंड दिखाई दिया। मंगल गंजन दीनी दिखाई, छेम करी कह छेम विशी, छेमकारी पक्षी, एक पक्षी का नाम है। सुनने वालों, रास्ते में जब बारात जा रही थी राम जी की तो उनमें भी उसमें तब उनको छेमकारी ये पक्षी दिखाई दिया। स्वामवाक सुत्रु देखी, सन्मुख आयुधि अरुमीना, फिर उनको एक औरत दही लेती जाती हुई और एक औरत मछली लेके जाती हुई दिखाई दी। कर पुस्तक दो वीप प्रवीणा, फिर हाथ और दो दिखाई दिए। सुनने वालों,

रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर प्रकट शकुन। सुनने वालों, जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तब काफ़ी सारे शकुन दिखाई दिए, जैसे सुनत राम अभिषेक सुहावा। जब राज तिलक हुआ बजे घर घर अवध बधावा, तो अवधपुरी में शहनाई बजी। राम सिए तनु शकुन जमाए, फर्क ही मंगल अंग सुहाए, यानी कि उनके शरीर के अंग फड़कने लगे। भरत मिलन का सूचक शकुन, जब भरत से मिलन हुआ तो उसके भी सूचक हैं। पुलक सब प्रेम परस्पर कह ही, भारत आगमन सूचक अहि। भये बहुत दिन अति बकेसरी, शकुन प्रेत भेटे प्रिय केरी। करदूषण के लिए अंगहीन सूप नखा अमंगल की सूचक थी।

श्याम घटा देखत नभ केरी, ताहम वासम धनु मनो उमेरे। यानी कि पंचवटी में शुभ खादी आगे कर लेती, अशुभ रूप ज्योति नशाहीनी। के शूर्पनखा ने जो कुछ किया वो सब कुछ अविनाश का संकेत था सुनने वालों। राम ने सुवेल पर्वत शिविर से रावण का अभिमान चूर करने के लिए एक बाण छोड़कर लंका में पर्वत शिखर पर नृत्यशाला में बैठे रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल गिरा दिए, जिसे कोई नहीं जान सका। कमस न भूमि न करत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कोई नैन न देखा। सोची सब निज हृदय विचारी, अशकुन भयो रावण ही भारी।

रावण के हाथ से हथियार छूट पड़ते हैं, रथ से योद्धा गिरते हैं, हाथी घोड़े भयंकर शब्द करते हुए साथ छोड़कर भागते हैं, गीदड़ गधे गिद्ध भयानक शब्द करने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं, उल्लू पक्षी भयानक बोली बोलते हैं।

दूसरी बार रावण जब युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो अशकुन होते हैं जिन्हें रावण ना मानकर युद्ध के बाजे बजाने का आदेश देता है। चलत हो ही तो ही अशुभ भयंकर, बैठी गृद उड़ही शिरन पर, भयाऊ काल वश काछू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। राम रावण युद्ध का संवाद त्रिजटा से सुनकर सीता ने मन में जब राम वियोग का दुख हुआ तो यह शुभ शकुन हुआ। जब अति भयो विहर अर्धाहु, फरेक्यु वाम नैन अरु बाहु, शकुन विचार धरे और धीरा, अब मिली हृदय कृपालु रघुवीरा। सुनने वालों, अब मैं गीत की ओर बढ़ती हूँ और गीत के बाद फिर आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाती हूँ।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जब रावण युद्ध के लिए जाने लगा तो बहुत सारे अशकुन हुए और उनको रावण ना मानकर युद्ध के लिए चला गया और उसने बाजे बजाने का आदेश दिया। तो फिर त्रिजटा जी से बात सुनकर सीता माता इतनी खुश हुई और राम वियोग का दुख वह भूल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। राम वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने पर उनके आगमन की कोई सूचना ना मिलने से सभी चिंतित थे। उस समय भरत को शुभ शकुन प्रकट हुए। भरत नयन भुज दक्षिणा फर कही बरही बार, जानी शकुन मन हर्ष अति जागो करण विचार।

एक विचार सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि जब कोई छींकता है तो उसका उसको बुरा भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। वो दोनों कारणों से सही भी है और नहीं भी सही। एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। अपनी छींक महा अशुभ होती है। अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भये हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है। कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी समुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दाहनी द्रव्य विनाशे। पीठ पाछले सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी।

संघनी, पेनस सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक तथा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या, विधवा, धोबीन, वैश्या, शूद्र की छींक विशेष अशुभ होती है। असान, शयन, शौच, दान, भोजन, औषधि सेवन, विद्यारम्भ और बीज बोने के समय, युद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। छींकत नाइए, छींकत खाइए, छींकत जाइए सो, छींकत पर द्वारे ना जाइए चाहे लाख गरज भी हो। इसका मतलब है सुनने वालों कि नहाते हुए छींक आ जाए, खाते हुए छींक आ जाए, सोते हुए छींक आ जाए तो सही है, पर अगर किसी के द्वार पर जाए छींक आ जाए और लाख गरज हो तब भी नहीं जाना चाहिए।

सुनने वालों, जब हम सबको छींक आती है तो उसका फल भी मिलता है, और छींक आने पर कई कार्य हैं जो हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। गमन करना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कार्य में बाधा आती है। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न होता है पर वासी के बाईं ओर अशुभ मानी जाती है। कार्य करने जाना, खरीद में लाभ, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ तो उसमें विघ्न होता है। व्यावसायिक कार्य, व्यापार वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित कर देना चाहिए। मरीज द्वारा दवा लेना, शीघ्र ठीक हो जाता है।

तुम अपनी जड़ों को नीचे पहुंचा दो, प्रकृति तुम्हारे फूलों को आकाश में पहुंचा देगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభా నిర్విధినం కురు మే దేవా సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరూ మిల్నే కా మౌకా నహీ మిల్ పా రహా అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ ఫావన్ రేడియో కే సభీ సునే వాలో కో హార్దిక్ సే అభినందన్ కర్తే హువే ఖాస్ కర్కే హమారే బహన్ ఔర్ లక్ష్మణ్ జీ जो आज यहाँ माला माल कर दिए डिबिया के डिबिया मिठाई कॉफ़ी और फ्रॉइड के साथ, तो उनको हार्दिक से अभिनंदन करते हुए जैसे कि इच्छा है। और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शेर शायरी के साथ शांता जी, और फिर उसके बाद में हमारे मास्टर जी भी उपस्थित हो गए हैं पैनल के पीछे। तो शांता जी कुछ कहते हैं, फिर आगे हम ले जाते हैं कार्यक्रम मास्टर जी के साथ।
1: धन्यवाद संजय जी। तो मैं कहूँगी कि जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। लिफ लो इसरार्स। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतनी बार मुझे मौका मिली है आपको नमस्कार कहने को। तो स्वीकार कीजिए एक बार फिर शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम नमस्कार ज्योति का प्रकाश।
2: बहुत ही सुंदर शब्दों में शांता जी ने अपना परिचय अपने मुखार बिंद से प्रस्तुत किया है। फाउन हिंदुस्तान रेडियो के सभी सुनने वाले श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार। इस बार भी हम अपना कार्यक्रम लेके ज्योति का प्रकाश में इस बार लेके आए हैं गंगा में विसर्जित अस्थियां कहां जाती हैं, इस बारे में बातचीत रहेगा। और साथ ही साथ बीच बीच में बहुत ही शांता जी के पिटारे से सुंदर से नगमे और उनके साथ सब लोग इंजॉय करेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्यों ना संजय जी, जो लोग उदास बैठे हैं उनके लिए कुछ किया जाए।
0: जरूर राजेंद्र जी, जो उदास अभी बैठे हुए हैं घर से, तो उनके लिए जो गीत हम सब हर सप्ताह चलाते हैं और वो गीत को हम सब प्लेयर पे इस समय पे रख चुके हैं। और शांता जी कुछ आज और कुछ लेकर आए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी हम सबको और आज काफ़ी बातें हैं राजेंद्र जी, ये मैं कह सकता हूँ आपके साथ। तो क्यों ना हम तेरा राम जी करे बेड़ा पार की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
2: जरूर

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो मन तो उदासी नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं संजय जी आप? जब राम जी बेड़ा पार कर ही रहे तो मन क्यों उदासी हो?
1: मन उदास
0: न चाहे हो, जब राम जी बेड़ा पार करेंगे तो मन उदास हो ही नहीं सकता।
1: हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ पूछने के बात है ही नहीं राजेंद्र जी।
2: सिर्फ विश्वास करने के
1: बस विश्वास करना है। और जैसे कि शांता जी भी कह रहे हैं कि विश्वास करना है। और राजेंद्र जी, जैसे आज हम सब का कार्यक्रम विषय है कि बता दो आप विषय, क्योंकि हमारे खोजी सेना जो है ना, जैसे आपने कहे थे,
0: विषय है कि गंगा में विसर्जित अस्थियां जाती कहां है,
1: कहां जाती है,
0: कहां जाती है?
1: तो ये इसके बारे में, तो
2: गंगा में विसर्जन अस्थियां,
0: विसर्जित
2: अस्थियां,
1: राजेंद्र जी
2: अस्थियां का
1: मतलब,
2: मतलब
1: थोड़ा थोड़ा
2: बोले तो
1: बता दो राजेंद्र।
0: अस्थि मतलब हड्डी,
1: हड्डी,
0: हड्डी की जो अस्थि हमारे मनुष्य की जो हड्डी है,
2: हाँ?
0: जब ये पूरा वो कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा बच जाती है तो वो विसर्जित करते हैं गंगा में।
2: अच्छा,
0: वो जाती कहाँ आखिरी, जब देखो तो गंगा तो एकदम निर्मल ही निर्मल।
2: देखो राजेंद्र जी,
0: जी
2: मैं सच कहूँ, अस्थियां मैं सोच रही थी ये बॉडी,
0: हाँ,
2: मर जाने के बाद ये बॉडी अस्थि कहते हैं, पर आप तो इतने अच्छे से समझा दिया कि अस्थियां हड्डियों के कहते हैं, कि जलाने के बाद जो बचा है हड्डियां,
1: हाँ।
2: वो हड्डियां गंगा में विसर्जन करे तो उसका क्या होता है,
0: जाती कहाँ है,
2: ओ जाति कहाँ है, हाँ,
1: क्योंकि विसर्जन तो होता है ना,
0: विसर्जन, हाँ, हाँ, तो होता है।
2: अच्छा,
1: पर राजेंद्र जी गंगा की ओर बढ़ने से पहले हमें तो ये जानना चाहिए, क्योंकि अब तो ये मालूम हो गया है कि अस्थिया के मतलब क्या है, अस्थिया के मतलब क्या है इसका मालूम हम सबको हो गया है।
0: हाँ।
1: और ये भी है कि हम लोग हॉलैंड में भी अस्थिया को विसर्जन करते हैं ना,
0: हाँ।
1: यहाँ पर स्केफनिंगा पे, कहीं रोटरडाम में, और अब तो ऑफिशियल भी बन गया है एक रोटरडाम में,
2: अच्छा,
1: अस्थिया विसर्जन करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऑफिशियल नहीं था। और यहाँ पर खास करके लोग कहते हैं ना राजेंद्र जी कि कभी कभी कहते हैं कि हाँ, एक गोरे लोग करते हैं
0: जी,
1: कि पेड़ के किनारे जा करके और अपने अस्थियों को विसर्जन करते, कहते कि हाँ वो डरते थे और वो पानी से डरते थे और उसका इच्छा था और पेड़ के पास जाकर को विसर्जन करने को। तो यहाँ हॉलैंड में भी ऐसा होता है।
2: अच्छा,
1: पर राजेंद्र जी इंडिया में कैसे होता है गंगा के सिवाय?
0: हाँ, जहाँ जहाँ जहाँ गंगा, गंगा एकदम पतित पावनी देवी है, और जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ तो लोग पूरी बॉडी को गंगा के किनारे लेके ही वो जलाते हैं, लेकिन उसके बाद वहीं से वहीं विसर्जित कर देते हैं। लेकिन और जगह जहाँ दूर करके वहाँ पे जला के बॉडी को, फिर जो फूल है, फूल बोलते हैं उनको, जो राख और हड्डी बचती है उसको फूल बोला जाता है, उसको एक पोटली में बांध के और एक घड़े में रख के गंगा में ले जाते हैं
2: जी,
0: वहां से ले जाते हैं गंगा में,
1: वहां से,
0: हाँ, तो विसर्जन करते हैं गंगा में।
1: तो एक पोटली में होता है, पोटली कहते हैं एक एक कपड़े के बना हुआ, जैसे आपका
0: बना हुआ, अरे एक घड़ा होता है मिट्टी का, तो उस पोटली में घड़े के अंदर रख के पोटली से बांध के फिर उसको लेके जाते हैं विसर्जन करने के लिए।
1: ऐसा? शांता जी आपको पता था ये बात?
2: हाँ, हमने देखी फिल्मों में तो पता है, तो जैसे राजेंद्र जी बताते हैं तो मुझे को ये नजर आता है। और यहाँ पे सब लोग धरते हैं उरन, उरन,
1: उरन कहते हैं उसे,
2: उरन नेदरलैंड्स में उरन कहते हैं।
1: तो राजेंद्र जी हमें तो अभी चलना है, आज जो हम सब का विषय है,
0: हाँ।
1: कि गंगा में विसर्जित करने वाले और अस्थिया को क्या होता है, अभी उस ओर हम सबको बढ़ना है। क्यों ना पिटारा खोलते हैं?
0: हाँ, पिटारा पे जरूर चलते
1: हैं। पिटारा खोलते, पिटारा से निकालते, देखते हैं शांता जी क्या तैयारी करके लाया है।
0: हाँ शांता जी, बहुत ही सुंदर जो गीत है, भजन है, खिलौना माटी का है।
1: खिलौना माटी का, तो चला देते हैं
0: जरूर।

0: खिलौना माटी का। राजेंद्र जी, किसी ने कहा कि किसने मिट्टी से पूछा कि तुम इतने ठंडी क्यों रहते हो, ना?
1: मिट्टी से?
0: किसी ने मिट्टी से पूछा कि तुम मिट्टी तो है पर इतने ठंडे क्यों रहते हो? तो मिट्टी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना है, उसे घमंड और गर्मी किस बात की है, बात की ना?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो राजेंद्र जी, आज का विषय कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियां क्या होता है, उसके कहां जाते हैं। अभी तो आप चलाने वाले हैं वो, पर शांता जी भी कुछ लिख रहा है मेरे ख्याल से। शांता जी, ये प्रश्न होता है कि हम सब हॉलैंड में अस्थिया को विसर्जन भी करते हैं, रोटरडम जाते हैं और या अलग अलग जगहों पे, और जाकर के अस्थिया विसर्जन किया जाता है ना। आपको पता है सूरीनाम में कब से और पहला जो दाह संस्कार हुआ था, इसके बारे में आपको कुछ पता है?
2: पहला दाह संस्कार? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल की आपने, मुझे पता नहीं।
0: नहीं पता? राजेंद्र जी, आपको पता? नहीं पता।
2: मैं तो खुद जानती हूँ, मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरे माँ बाप मेरी को लेकर गई थी वैखनाशेई।
0: हाँ,
2: तो पहला बार जो हमने गई थी और देखी थी।
0: तो शांता जी, वैखनाशेई शायद ये ख्याल भी होगा आपका कि कैसे वहाँ पहुँचे होंगे, रास्ता कैसा था उन दिनों?
2: हाँ, कच्चा रास्ता था,
0: बहुत कच्चा रास्ता था,
2: शांति पासी,
0: एकदम शांति पासी। राजेंद्र जी, आपको पता है कहाँ वैखनाशेई बनाया गया सूरीनाम में?
1: नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक।
0: अभी नहीं देखा
1: ना?
0: तो क्वाटा के दाम आप नहीं जानते भी
1: ना?
0: क्वाटा के दाम से जाना पड़ता है। क्वाटा के बारे में तो सुने आपने ना?
1: क्वाटा भी नहीं सुनेला।
0: लिफोर्नो खाली? तो लिफोर्नो के सिवा और शहरों है सूरीनाम में, और एक होता है क्वाटा। तो क्वाटा के दाम से निकलते हैं बस दर्दर है, जैसे पास होते हैं तो आ जाते हैं
1: भिंडी दाम।
0: तो मिस्टेक हो गया शांता जी। थोड़ा लाइव प्रोग्रामों में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है राजेंद्र जी। वैसे तो कहने के देखा जाए राजेंद्र जी की भारत में, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सब नाम बदल दिया, तो ये तो मैं तो बस छोटा काम किया कि बस ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि अभी हम आपसे कहे ओकरो दाम, तो ओकरो दाम का समझ आपके आएगा या नहीं? ये तो नहीं आएगा ना?
1: ना।
0: तो भिंडी, तो ये तो आ जाएगा। तो बस मैंने ट्रांसलेट हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि ये पता है कि नेखन शस्तक में, और वहां बनाया गया समुन्द्र के किनारे, हाँ, एरस्त दाह संस्कार श्रीमान उदय सिंह वर्मा जी का, और वहां पर किया गया। बहुत तकलीफ से वहां पहुंचे लोग, और बहुत तकलीफ से वहां पहुंच करके, और अभी ये बात को वहां का और ज्ञान नहीं था कि कैसे और दाह संस्कार को, और यानी कि सब व्यवस्था जैसे आजकल होता है, आजकल 8 और दाह संस्कार एक ही दिन में वैखनाशेई पे कर दिया जा सकता है ना, उतना कैपेसिटी हो गया, उतना वहां का वातावरण बना दिया गया है वहां पर, उतना ज़्यादा और गाड़ी को पार्किंग के सुविधा हो गया सब कुछ। पर वो समय के बात है, और नेखन शस्तक के बात है, जो वहाँ पहला बार ये बनाया गया सूरीनाम देश में दाह संस्कार किया गया, तो बड़ा मुसीबत से वो कार्य को किए गए थे,
2: इसलिए वो आज तक प्रसिद्ध है।
0: जरूर प्रसिद्ध है। हाँ। पर आपका बटन ऑन नहीं है शांता जी, तो आपने कहा कि वो आज तक प्रसिद्ध है।
2: हाँ, वो आज तक ही प्रसिद्ध है।
0: जरूर जरूर। हाँ। और आज हमारे देखा जाए कि सूरीनाम में और कितना दाह संस्कार होते हैं, और जाकर के वैखनाशेई से, और वहाँ पर पहुँचने के लिए भी जो रास्ता आदि बना दिया गया है, तो अब बहुत सुपास हो गया हम
2: हाँ,
0: सबके लिए।
2: जी, वो तो बात है इस।
0: और पर आज का विषय जो है कि गंगा में जो किया जाता है अस्थिया को, उसका होता है क्या? तो राजेंद्र जी,
1: जी
0: क्यों ना पहले हम एक गीत चला लेते हैं।
1: जरूर,
0: क्योंकि पिटारा तो फुल है।
1: हाँ, जो गीत के बोल है वो यही है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई।

0: देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान तो बहुत बदल गया है, आप संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे, इंसान कितना बदल गया?
1: मुझे तो नहीं लगता बदला।
0: तो आप बताओ कुछ।
1: शांता जी आपको लगता है इंसान बदल गया?
2: इंसान तो बदला नहीं है, क्योंकि अभी सभी को दो आंखें, दो कान है, दो नाक है, एक नाक है, एक मुंह है।
1: राजेंद्र जी, जैसे शांता कहते हैं ये तो बॉडी का और पहचान दे रहा है, पर देखो राजेंद्र जी ऐसे है कि त्रेता में था मंत्रा, मंत्रा था कि ना,
0: मंत्रा था,
1: और अब है मंत्रा कि नहीं?
2: आज भी है,
0: आज भी है।
1: और द्वापर में था सुकनी,
0: सकुनी मामा,
2: सकुनी
1: आज भी है कि नहीं?
0: आज ज्यादा हो गए।
1: तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला।
0: हाँ नहीं, उस समय इंसानियत ज्यादा थी, उस समय एक सकुनी थे आज बहुत हो गए।
1: हाँ
0: उस समय एक मंथरा थे आज बहुत मंथराएं हो गई है, तो ये सब बदला है।
1: तो त्रेता में वही बात था और द्वापर में वही बात था, और देखो कलयुग में भी यही बात है कि हम जन्म लेते हैं ना, तो हम हमारा जन्म होते हैं, जबकि हमारा जन्म होते हैं कोई 1.5-2 किलो के होते हैं ना, जब बेबी होता। और हमारे मरने के बाद हमारे और अस्थिया, हमारा दाह संस्कार होता है, बस अस्थिया और पोटली में डाल के, यहाँ पर शांता जी ने कहा किस में डाल के देते हैं?
2: नीदरलैंड में एरन कहते हैं।
1: तो एरन में डाल के देते हैं, तो वो भी तो 1.5-1.5 किलो के हो जाता है
0: बस उतना।
1: तो हमारा जीवन है क्या?
0: हाँ जीवन
2: मुट्ठी भर राख,
1: मुट्ठी भर राख, वो जितना लेकर आए थे वजन उतने लेकर जा रहे।
0: हाँ
1: तो हमारे जीवन में हम चतुराई, हम यादा प्रकार के और अपने चलाकी किए, रंग बिरंगी कार्यों को किए, और अंत में बस उतने बन के चले जाते हैं
0: बस।
1: तो राजेंद्र जी इसमें आपका संदेश क्या है? और क्योंकि अभी तो हम लोग के छलांग लगाना, और राजेंद्र जी गलती से बटन ऑफ नहीं करना, पीछे देखो उंगली उठा दिया मैडम
0: जी।
2: क्योंकि अभी ने आपने सवाल की ना, तो उस पे मुझे ये बात आ गई है, तो जरूर से मैं कहूंगी कि ये जिंदगी और शरीर, जिंदगी और शरीर है संजय जी, दबी है मौत के एहसान में, ये जिंदगी और शरीर दबी है मौत के एहसान में, तू भुला बैठा है जीवन अपनी पहचान में।
1: वाह देखिए राजेंद्र जी अभी अभी इन्होंने लिख दिया और सुना भी दिया।
0: हाँ बहुत बढ़िया।
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आपका संदेश इसमें क्या है राजेंद्र जी? क्योंकि आप जब कहीं जाइए ना
0: जी,
1: और सूरीनाम में जैसे होता है, तो सूरीनाम में और पहला वाला बड़ा मुसीबत से हुआ था ना, जो हमने कहा कि नेखती नेखना शस्त्र में,
0: और कौन से उस सन में हुआ था?
1: 1959
0: पहली बार दाह संस्कार हुआ
1: सूरीनाम, और जाकर के समुन्द्र किनारे, और कौन दाम से वहां जाए थे शांता जी?
2: ओकरो डाम
1: हमने तो गलती कह दिया था, बिना
0: भिंडी नाम बोल दिया
1: पर वहां जाकर के राजेंद्र जी, और बहुत हमारे धन्य है हमारे पुरखों के जिन्होंने ऐसा और जाकर के हमारे लिए सूरीनाम में बनाए और ऐसा व्यवस्था किया, और आज अब जाकर के जैसे कि शांता जी भी कह रहे थे कि वहां हमारे अब एक और बन गया है सारा मक्का में।
2: हाँ कैक पे वो शबीर इशाक,
1: हाँ,
2: शबीर इशाक के दाह संस्कार जो वहाँ पे बना गया है, बनाया गया है, और निकेरी में भी है ना सही दैक पे,
1: निकेरी पे भी है
2: सही दैक पे,
1: और वहाँ पे भी है, सही बात। राजेंद्र जी जब देखा जाए, जब उस समय पे धीरे धीरे लोग जानने लगे कि कैसे उसे और बनाया जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए कि एक शरीर जो जा करके जल सके पूरा तौर से ना, तो वहाँ पर निकाला गया, और हमारे जो पुरखों ने ये सोचे कि प्रयोग किया जाए वलाबा हौत। शांता जी आपको पता है क्या है वलाबा हौत?
2: वलाबा हौत? हाँ, ना।
1: वहाँ एक लकड़ी होते है राजेंद्र जी, उसे कहते हैं वाला बहुत, और उसको बनाया जाता था जो गाय आदि पोसते थे ना, तो उसके गाड़ करके और उसे तार लगा दिया जाता था।
0: ओ, समझ गए।
2: प्रिकल द्रात।
1: हाँ, तो गाय बाहर नहीं जाते थे। तो
0: प्लांटेशन।
1: क्या कहते हैं उसे?
0: प्लांट। बाड़ा, बाड़ा।
1: हाँ, बाड़ा। मुझे नहीं पता बाड़ा क्या है। घेर दिया गया, घेरने।
0: घेरा।
1: हाँ, तो ऐसा हुआ कि वो ये लकड़ी लोग प्रयोग करने लगे, और ये लकड़ी में काफी तेल होता है। ये लकड़ी एक ऐसा लकड़ी है जो कभी नहीं सड़ता। लकड़ी जो आज लगा दिया जाए और जमीन से और घेर दिया जाए, तो उसका तार दो बार बदल देना पड़ता है। तार कुछ 20 साल चलता है, बदला जाता है। पर ये लकड़ी जमीन धस जाता है, ये लकड़ी को लोग खोद करके निकाल के और ऊपर करके और फिर दोबारा इसे अवतार लगाते हैं।
2: तो वो लकड़ी वैसे ही ताजा रहता है?
1: तो ताजा नहीं, उसमें
2: सड़ता नहीं,
1: सड़ता नहीं,
0: मजबूत रहता है,
1: बड़ा मजबूत होता है। इसी लकड़ी के बारे में राजेंद्र जी, मुझे आज मैं एक व्हाट्सएप पे देख रहा था, और उसे देख करके मुझे ये ख्याल आया कि हमारे सूरीनाम देश में जितना इलेक्ट्रिस्पाल है ना, वो भी वालाबा हाउत को बनाया जाता है, क्योंकि वो भी सड़ता नहीं।
2: अच्छा।
1: और वही हाल है कि ऐसा देखा जाए, सुबह मैंने देख रहा था एक व्हाट्सएप बरेख में, जिसमें भारत में जैसे यहाँ होलांत में ना सभी और इलेक्ट्रिस्पाल मेटल के होते हैं
2: यहाँ पे। हाँ,
1: तो भारत में कहीं कहीं भी जो इलेक्ट्रिस्पाल होते हैं ना, तो उसे पकड़ लो तो बस, और इलेक्ट्रिक मार देते हैं लोग, कितने शॉक मार देते, कितने लोग हर साल में गुजर जाते हैं
2: भारत में।
1: भारत में।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक अगर आप देखोगे तो आप भी वो लफड़े में पड़ जाओगे।
1: तो आप ध्यान देना, क्योंकि हमने आज सुबह अभी देखे है व्हाट्सएप बरेख में, और देखा कि कैसे एक नौजवान और वो पॉल जो मेटल का था पकड़ लिया और उन्हें झटका मार दिया, और बस क्या हुआ उसके बारे में आज का विषय है ही नहीं। हमारा विषय ये है कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियाँ, उसके बारे में हम सब अभी सुनने वाले हैं दोस्तों। और ये बात है शांता जी की, जब ये बात सबको जान गए कि कैसे और जा करके वहाँ हमारे सूरीनाम में और अस्थि तथा दाह संस्कार किया जाता था, और होलांत में भी, होलांत एक देश है जहाँ पर एक अच्छा तरीका से और यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता ना, ये बात ना है कि सूरीनाम में ठीक नहीं है, सूरीनाम वाला अपना जगह उससे बढ़िया नहीं है, और यहाँ होलांत में जैसे कि हम सब क्रेमाटोरियम होते हैं।
2: हाँ।
1: तो ऐसा एक क्रेमाटोरियम सूरीनाम में भेजा गया
2: जी,
1: यहाँ होलांत का, और यहाँ से गए सूरीनाम में नेखंतीफायन नेखंतक में वहाँ पर ले जाकर के लगाया गया। तो उसके बारे में अभी कुछ और हम सुनाने वाले हैं, क्योंकि वो भी बड़ा गंभीर और समस्या हो गए थे राजेंद्र जी सूरीनाम में।
0: जरूर, कर्म सेवा सत्कार का है, बहुत ही सुंदर

0: बहुत ही सुंदर जो कर लो सेवा सत्कार, सेवा सत्कार चाहे सब लोग करना ही चाहिए। जब भी कोई मरता है मैं उनके साथ मरघट जाता और मरघट पर जाकर दो हैरानी की बातें मुझे हमेशा दिखाई पड़ती। उधर आदमी जल रहा है और लोग बैठे संसार की गपशप कर रहे हैं। इनको याद भी नहीं आ रहा कि यह मौत तुम्हारी भी मौत है, यह घड़ी तो ध्यान की थी, यह तो बस कर सोचने की थी, यही तो विचार की थी, तो विचार करते रहो।
1: राजेंद्र जी, इस बात पे तो मुझे दिल है कुछ और कहने का।
0: जरूर
1: शांता जी, ऐसा हुआ कि आप कभी गए और वैखनर से ही पे गए?
2: हाँ।
1: तो देखे कि वहां पर अब दाह संस्कार हो रहा है, वो आग ही लगते हैं।
2: हाँ।
1: आग लगते हैं तो मुझे आपको ये ख्याल नहीं आया कि एक ना एक दिन तो हमें भी उस प्रकार से जलना है, और हम ये संसार के जीवन में जी रहे, संसार के मेला में जी रहे हैं, और क्यों हम इस संसार के मेला में जीते जीते औरों से जल रहे हैं? राजेंद्र जी,
2: वो भी होता है।
1: हाँ। कभी ऐसा नहीं हुआ?
3: हाँ।
1: क्योंकि कभी कोई ऐसे यहाँ भी हमारे कार्यक्रम में भी फोन करके कहते हैं कि भाई हमारे भाई बहन मुझसे जल रहे,
2: वो अज्ञानता है।
1: और ऐसा ऐसा होता है क्योंकि हमें ऐसा रहना है, हमें ऐसा रहना है कि ये ख्याल रखना, इसे हम अपने रोज अपने जीवन में ना लेकर चले कि हमें एक ना एक दिन मरना, जो समय आएगा तो वो तो आएगा ही आएगा। वो हमारे लिए तो ब्रह्मा ने और हमारे जीवन यानी कि हमारा जन्म भोग और मृत्यु का वो तो कर दिए।

0: जन्म भोग हमारे खुलक और हमारी मृत्यु का और निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी कहावत है ना, तो वो तो निर्णय है, पर हम क्यों औरों से जलते हैं? हम इस पे ध्यान दे और हमारे राजेंद्र जी की ओर हम सब बढ़ेंगे फिर कार्यक्रम। राजेंद्र जी, पर अभी तो हम सब छलांग नहीं लगा पाए असली विषय के ओर।
1: जरूर लगाएंगे असली विषय की ओर। अभी हम पहले
0: न्यूज और कमर्शियल के बाद और सभी सुनने वालों के साथ हम सब फिर मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हम सब जो आज का विषय है कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियों को होता है क्या। तो राजेंद्र जी, पहले न्यूज और कमर्शियल की ओर।
1: जरूर। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को विषय की ओर बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि बात चल रही थी गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं। तो बढ़ते हैं इसी विषय की तरफ। पतित पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है।
0: पतित पावनी गंगा को क्या कहा जाता है राजेंद्र?
1: देव नदी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है और मान्यता है कि गंगा ही हरि विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी है। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है।
0: ऐसा? गंगा में स्नान करने से सभी मनुष्य का पापों नाश हो जाता है।
1: सभी पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तो बहुत पूरी दुनिया के लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, और गंगा केवल भारत में ही है।
0: वहां स्नान करने से सब पापों का नष्ट हो जाएगा।
1: सब पापों का नष्ट हो जाता है, ऐसी मान्यता है।
0: मान्यता है क्योंकि लोग अपने मनमानी करते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद गंगा में स्नान करने से और जाकर के पाप करो और जाकर के धो लो, तो ये तो नहीं हो सकता ना।
1: ऐसा नहीं हो सकता।
0: आपको वहां तक पहुंचने, वहां पहुंचने से पहले आप खुद ही सुधर जाएंगे, तभी वहां पहुंच पाएंगे। तो शांता जी, आपने गंगा में स्नान किया?
2: हमने तो की कई बार,
0: और जा करके खूब स्नान किया,
2: और वहाँ पर भी खुश नसीबी की बात है, गौमुख यहाँ से गंगा के उत्तरीन होता है, शुरुआत होता है
0: जी
2: हिमालय में, वहाँ पे ऊंचा पे, वहाँ पर जाकर भी हमने स्नान की। बड़ा सौभाग्य की बात है।
0: ये जरूर सौभाग्य की बात होता है राजेंद्र जी, क्योंकि ऐसा है कि लोग चाहे या ना चाहे,
1: मानो तो गंगा और न मानो तो बहता पानी।
0: राजेंद्र जी, ये बात है कि अभी तो हम सब वो वृतांत सुनाने वाले थे सूरीनाम के।
1: हाँ।
0: और सूरीनाम में जो बनाया गया नेखदक में वो औद्धाक संस्कार के जो सोफी रत्नोसरात में ना, आपको तो नहीं पता सोफी रत्नोसरात कहा ना?
1: नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता।
0: अच्छा, तो उसे मैं अपना भाषा में नहीं कर पाऊंगा।
1: हाँ।
0: तो बस यही कह देता हूँ कि वहाँ बनाया गया 1995 में, और वहाँ जब बना करके सब तैयार कर दिया गया ना, अलखावा एक बदराइफ होता है, वो इलेक्ट्रिकल सब चीज वहाँ जा करके सब तैयारी हो गया
1: जी।
0: तो अब वो अगोर रहे थे कि कौन पहला और अपना आपको वहाँ दाग संस्कार करवाएंगे। लोग डरते थे क्योंकि उस समय मैं सूरीनाम देश में थे, और लोग डरते थे कि हाँ कहीं अभी और पूरा शरीर ना जरे तो पहला होना चाहिए।
1: वो इलेक्ट्रिकल वाले की बात कर रहे हैं?
0: ये इलेक्ट्रिकल वाला, वो सूरीनाम में एक ही बना है ना सफीरत मोसरात। तो ऐसा हुआ वहां पर 95 में श्रीमान गरीब जी का और पहला दाग संस्कार किया गया, पर वो दाग संस्कार ऐसा हुआ कि गाड़ी लेकर गए वहां ना, तो गाड़ी को कह दिया गया था कि भाई ठहरो, अभी जाना नहीं यहां से, क्योंकि अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ तो हो जाएगा मुसीबत। तो गाड़ी वाला और वहाँ अगोर रहे थे, और सब अब पंडित जी आकर के सब कार्य को कर चुके, तो अब वो और यानी कि जो लाइक केस में होते हैं ना, वो अंदर धरते हैं, तो रखा गया और अब उसे ऑन करने का, जैसे यहाँ पर बटन दबाते हैं, तो वहाँ पर ऑन करने को हुआ, तो वो दबाते हैं बटन पर ऑन नहीं हो रहा। तो अब हुआ मुसीबत, अब उन्हों कोशिश किए पर ऑपरेटर थे और उन्हें टेक्निकल के बारे में थोड़ा कम जानकारी थे, तो फ़ोन किया गया और जो फिरमा जो जो मिस्त्री वाला अलखावा था तो उन्हें आते आते डेढ़ घंटा और लग गया। और जब वो आकर के पहुँचे तो वो देखे और दबाए हमें, क्योंकि मैं वहाँ था तो दबा कर उन्होंने देखा, तो देखा कि आग तो लगा पर इग्निशन के लाइट जो होता है ना, तो लाइट वो बल्ब जल गया था। तो उसके कारण बड़ा आशंका था और हम सब वहाँ थे और बड़ा ये था कि अब क्या होगा। पर फिर भी नेहती फैन नहीं हद तक से वहाँ पर और दाह संस्कार होने लगा, और यानी कि जो जैसे हॉलैंड में होते हैं। और फिर देखा जाए राजेंद्र जी कि ये इस समय एक चीज और हो गया है जो भारत में मैं गत दिनों देखे हैं, भोपाल भोपाल शहर में ऐसा चीज बना दिया गया है कि लकड़ियों से दाह संस्कार नहीं किया जाता, अब बना दिया गया है गोबर के लकड़ी बनाया जाता है
1: कंडा।
0: हाँ, अब वहां मशीन बना दिया गया है, मशीन बना दिया गया है कि गोबर के लकड़ियों से, गोबर से बनाया जाता है लकड़ी और उससे और जाकर के दाह संस्कार किया जाता है। जितना लकड़ी पहले कहा जाता है कि पहले लगता था उसका आधा गोबर से और उसमें उतना शक्ति होता है कि दाह संस्कार हो जाता है। तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते, तो फिर हम अपने और विषय के आगे बढ़ाएंगे।
1: जरूर।

0: बंदे किस पर करे गुमान, तू है दो दिन का मेहमान। बहुत ही सुंदर जो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है उसकी कोई सराहना नहीं है। बढ़ते हैं अपने विषय की ओर आगे।
1: कैसे बढ़ूँ?
0: जरूर बताइए।
1: बढ़ना है, विषय को बढ़ाना है।
0: हाँ।
1: पर ज़्यादा मिठाई को खा लिया।
0: हाँ।
1: और हमारे बड़े बहन ने मिठाई डिब्बा के डिब्बा ला करके रख दिया। वैसे तो हमें इतना खाना नहीं था। बस राजेंद्र जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं,
2: इसलिए हाँ, तुम्हारा हाँ। शब्द जो है वो मीठे मीठे निकलता है राजेंद्र का भी।
0: जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कथा है। एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने वैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, प्रभु मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, गंगा जब साधु संत वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे।
1: राजेंद्र जी, ये अब समस्या ऐसा हो गया है कि इसे थोड़ा हमारे हिंदुस्तानी सरनामी में कुछ इसे और बताइए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात यही हो जाता है ना।
0: हाँ, महत्वपूर्ण बात है कि जब सब लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि हमारे पाप धुल जाए, तो गंगा चिंतित हो गई कि ये सब लोग पाप धुलने के लिए यहाँ आते, तो मैं कैसे ये सब
1: कैसे मैं पवित्र हूँ,
0: मैं कैसे इनको पापों को सब में पाप मेरे पे धुलते, लेकिन मैं इनसे कैसे रूबरू होंगी? तो फिर वो भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में गई और उन्होंने पूछी ला वहाँ कि ये लोग सब आते पाप धोने के लिए और मैं कैसे इनका बोझ उठाए। तो फिर विष्णु भगवान बोले कि जब साधु संत स्नान करने के लिए आएंगे तो तब स्वयं वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
1: ये है, यानी कि सबसे मूल्य बात ये है कि जब साधु संत वहां पर स्नान करने को जाए,
0: साधु संत और वैष्णव लोग जब वहां पर
1: वैष्णव लोग
0: जाए तो अपना आप सब पाप धुल जाएंगे।
1: ऐसा तो ये बात है आज का विषय का, ये एक मूल्य बात हुए ना,
0: मूल्य बात है।
1: और राजेंद्र जी, और क्या है इस वृतांत में?
0: गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि इसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए, लेकिन यह अस्थियां जाती कहाँ हैं? ये चीज बताएंगे आपको इस सुंदर से गीत के बाद।
2: मृत्यु के बारे में ये कहना चाहती हूँ, अभी जैसे हमने सुना, अभी हमारी प्रोग्राम जैसे चलती है,
0: हाँ।
2: मृत्यु के लिए बहुत रास्ता है ना, मरने के लिए बहुत रास्ता है, पर जन्म लेने का सिर्फ एक, वो माँ।
0: हाँ,
1: तो ये तो बड़ा गंभीरता बात बता दिया शांता जी ने।
2: हाँ, मुझे ऐसे लगा कि बताना चाहिए, तो इस पे हम भी, क्योंकि हम कई तरीका से मर सकते हैं।
1: हाँ, सही बात।
2: और जन्म लेना सिर्फ एक ही है, माँ के गर्भ से।
1: राजेंद्र जी, शांता जी ने अपना वृतांत को सुना ही चुके हैं और गीत जो आप धरने वाले हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत रखने वाले आप।
0: मत बुरे कर्म कर गोरख धंधा, इसी अवशेष में हम क्यों ना एक सुंदर सा जो बुरे कर्म कर बुरे बंधी, उस गीत की ओर बढ़ते हैं और सब लोगों को पसंद आएगा।

बुरे कर्म कर बंदी, चाहे बुरे कर्म न कोई करे, सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। तो बात हो रही थी कि गंगा में विसर्जन